0: हीरालाल योगी जी जयपुर से। सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान मुझे एक मानसिक बीमारी है, मतलब उसमें ज्यादा सोचना हो जाता है, मतलब किसी भी चीज को।
1: सबको है,
0: ये इन्होंने लिखा कि मैं तो
1: सबको है, ये तो अपनी मन की कह रहा है सबको। किसका मन एकाग्र शांत ब्रह्माकार है? किसी साधक कोई उपासक कोई महात्मा का है? नहीं, इसका काम है ये चंचला ही मन कृष्ण, अर्जुन जी कह रहे ना भगवान से, ये बहुत चंचल है। एक क्षण में बंबई कलकत्ता, मतलब इससे बढ़कर कोई रफ्तार वाला है ही नहीं। वायु को भी समय लगता है, जैसे यहाँ से वायु प्रवाहित हो तो बंबई पहुंचने, ये एक सेकंड में पहुंच जाएगा। बहुत चंचल,
0: ना चाहते हुए भी गंदी बातें मन बार बार लाता है।
1: बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमारी बात समझो। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन की गंदगी नष्ट की जा रही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये भगवान का नाम धुलाई कर रहा है, सामने वो सब आते चले जा रहे हैं। ये नहीं मानना कि ये मेरे मन में जा रहा है, ऐसा नहीं। ये मेरे मन की गंदगी बाहर निकल रही, क्योंकि महाबली भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जिभ्या में है। अब वो अंदर सफाई कर देगा। नाम जपते जपते हृदय पावन हो जाता है, उसी पावन मन में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं। नाम काहे को जपने के लिए कहते हैं? तुम्हारी सोच को रोकने के लिए। जो तुम ग्लानि में, चिंता में, नाना प्रकार के भविष्य की कल्पनाओं में जल रहे हो, उसी के लिए तो सत्संग कर रहे हैं। क्या आप समझो, तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला, पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं, तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा राधा राधा राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले, समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। विश्वास मानो, जैसे उसमें एकादश स्कंद में भागवत में कहा है, एक एक कवल जैसे भोजन पाया जाता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होती है। ऐसे जो उपासक भगवान नाम जपता है, एक एक नाम संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, ये साथ होता है। पर जैसे कई दिनों का भूखा उसे एक कवल खवा के रोक दो तो उसको जलन बढ़ जाएगी, ऐसे ही अगर हम थोड़ा भजन करके रोक देते हैं तो हमारे अंदर जलन पैदा हो। थोड़ा डट के भजन करो, थोड़ा आधे पेट भोजन आवे तब स्वाद मिले। खीर क्या, पकौड़ी क्या, कई दिनों का भूखा हो खीर पकौड़ी थोड़ी देख रहा, पहले तो भर रहा है। ऐसे हमको भजन करना है। और मन में जो गंदी बातें आती वो आएंगी और बढ़ के आ जाएंगी, वो बाहर से नहीं आती, ये जन्म जन्मांतरों से अंदर। कई बार कहा है, आज के वैज्ञानिक इतनी बड़ी चिप बनाते हैं, 350 घंटा का सामग्री होती है ना, और ये भगवान ने बनाया ये चिप मन, कितना बड़ा है कोई नहीं जान सकता। कोई वैज्ञानिक आज तक बताया? कोई एक्सरा अल्ट्रासाउंड, कोई सूक्ष्मदर्शी कि मन, ये देखो ये मन है, ये सूक्ष्म शरीर है। वैज्ञानिक केवल स्थूल शरीर का, कभी जीवात्मा को कोई देख पाया सूक्ष्मदर्शी से? नहीं ना। हाँ, ये नाम पूरी चिप है जिसमें जब से सृष्टि रची है तब तक की सामग्री भरी है। ये अलौकिक सीसी कैमरा है मन। देखो ना, बैठ गए वो पूरी फिल्म चालू कर दी, अब राधा राधा राधा वो डिलीट होती जा रही है धीरे धीरे धीरे धीरे। तभी पतंजलि जी महाराज बहुत सिद्ध योगी हुए हैं, उनका दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत लंबे समय तक आदर के साथ यदि निरंतर नाम जप किया जाए तो सब पापों का नाश करके हृदय में दृढ़ भूमि अर्थात भगवत प्रीति प्रकट कर दे। अब अपने लोग दो चार नाम जप किए फिर देखते हैं कि समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसी समय किसी प्रारब्धवशात परिवार के किसी की आयु पूरी हो गई चला गया तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी। भैया हो कहां तुम, अमर लोक में हो क्या, मृत्यु लोक में हो? कितनी आयु तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। जब जिसका नंबर आएगा जाना पड़ेगा, जो कर्म का भोग है भोगना पड़ेगा। कमाई कर लो, इस समय बैठ के रोने का समय नहीं है कि हाय ये हो गया वो हो गया। आगे बढ़ो, बहादुर की तरह आगे बढ़ो और ऐसी कमाई करो कि फिर कभी इनके लिए रोना ना पड़े। भोगों के लिए चिंताएं, दुख, अशांति, कोई भी सुखी नहीं है। बिना हरि शरणम के कुछ भी कर लो, कोई भी हो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारी चिंता तुम्हारा भय दूर नहीं होगा। नाम जप करो।
0: इनका जो ऑर्डर है ना, जिस ओसीडी कहते हैं, काफी जनों को आजकल ये वो है, उसमें उसके अंदर जो उसके अंतर्गत डर, शंका, शोक, चिंता, महाराज जी ये हमने इसलिए कहा था, आपने बोला प्रभु का आश्रय ले लो, तो जो जो इसमें लक्षण बताए उसके विपरीत, जैसे इसने लगा डर, तो आप बोलते निर्भय हो जाओगे, निशंक हो जाओगे, निशोक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, प्रभु की शरणागत।
1: हाँ देखो, हम लोग जो है जो भगवत मार्ग के पथिक है, हमने मन को पढ़ा है, हम कोई डिग्री तो बाहरी प्राप्त नहीं किए, जैसे PhD और डिग्री आपको दिखाएं, जीवन भर बाल्यावस्था से इसी को पढ़ा, इसी को देखा है, हर एक हरकत इसकी देखी है, और गुरुजनों के प्रताप से किस युक्ति से इसकी हरकत को कैसे रोकना है, तब ये बहुत कठिन, मन को रोकना बहुत कठिन है नहीं? हाँ देखो, आप तो स्वस्थ हैं फिर भी डिस्टर्ब हैं, इसका मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, इसीलिए डिस्टर्ब है। इसकी दवा भगवान है, शारीरिक दुखों की निवृत्ति, मानसिक दुखों की निवृत्ति, लोक लोकांतर के समस्त भोगों से एकमात्र भगवान, ई परलोक सकल सुख पावत, उसको समझ लो। मतलब सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़े दिन जब के देखना, अगर अभी तुम्हें डॉक्टर बता दे तुम्हारी दोनों किडनी फेल, तो क्या हालत होगी जानते हो, क्या हालत होगी, मतलब जीना अच्छा लगेगा ना मरना अच्छा लगेगा। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के मार्ग, केवल ये थोड़ी कि प्रवचन कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, सही अगर तुम्हें स्वस्थ होना है तो एक उपाय है, भगवान की शरण हो जाओ, नाम जप करो, बुरे आचरण त्याग दो, भोजन अच्छा सात्विक भगवान को अर्पित, अभी कुछ दिनों में शांति मिलने लगेगी। दवाइयों से अगर बहुत बिगड़ा तो थोड़ा सहयोग ले लीजिए, डॉक्टरों के पास जाके सहयोग ले लो, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता है ना, नहीं तो सच्ची कहते हैं अगर हमारा चिंतन ठीक हो जाए और हमारा शरीर कष्ट में तो कोई परवाह नहीं। देखो दवाइयों के द्वारा जब मन को चेतना शून्य कर दिया जाता है तो अंग प्रत्यंग में शल्य क्रिया होती ना, ऑपरेशन, क्या फर्क पड़ता है, अगर यही मन आनंद में बेसुध हो जाए प्रभु के चिंतन में तो शरीर में क्या फर्क पड़ता है। पर ये बातें लोकवत समझ में नहीं आएंगी, ये नहीं समझ, ये अध्यात्म है, ये है सत मार्ग, और यहां जो कुछ भी सब असत है, अब यहां जो कुछ भी करोगे उसकी असत ही है वृत्ति। हम आपको सबको बार बार ये कहते हैं, भूल नहीं,
2: भूल नहीं,
1: बख्शेंगे नहीं कर्म। हाँ जो न्यायाधीश है हरिश्वरण हरि, वो माँ की तरह कृपा करे, वो बख्श देंगे। हम तो हम स्वर्ग पापे भ्यो मोक्ष श्याम, अब सत्य वचन सुनो, सत्य मार्ग में चलो, कोई परेशान, कष्ट में होते हुए भी हमें कष्ट नहीं है, तो ये कला क्यों ना सीख लो यार। अभी पता चल जाए कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, दिल तुम्हारा कमजोर हो गया, तो हालत क्या होगी आपकी, और ये सब होगा क्योंकि नाशवान शरीर कोई ना कोई तो मृत्यु का कारण बनेगा, तो इतने बहादुर बन जाओ, पता चलना है कि इसको छीन लिया जाएगा तो पहले ही तो इससे राग खत्म कर दो, हे भैया ले ले जाओ, हरिशरणम हरिशरणम राधा राधा राधा। अब भाई अध्यात्म ही दुखों की जड़ को मिटाने वाला है, और अब ये समझ में आ जाए तो समझ लो। देखो जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है, ब्रह्मचर्य प्राण और मन तीनों एक का तारतम है, अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत आनंदित सोच कराने वाला, निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच कराने वाला, और प्राण संयमित महाबली, स्थूल प्राण वाला उसके बल थोड़ी होता है, जिसका प्राण सूक्ष्म होता है उसमें महाबल होता है। ध्रुव जी ने अपने प्राणों को सूक्ष्म करके रोक लिया तो विश्व की प्राणवायु रुक गई, तभी तो भगवान तत्काल आ गए। समझो आप मनुष्य जीवन प्राप्ति किए यार, थोड़ा तो समझो तुम कौन हो, थोड़ी साधना में उतरो अभी तेजस्वी हो जाओगे, दूसरों को मन को शांत करने वाले बन जाओगे, सातरत्य लोकांतरित, हे भाई अब ना भजन करोगे ना सत्य में चलोगे तो दुर्दशा तो होगी, कर्म का फल तो मिलेगा ही। किसी को भय लगता है, किसी को आगे भयावह चिंतन हो रहा है, कोई ऐसा घबराहट पैदा हो रही, कागज में लिख लो तुमसे पाप बन गया है, कोई ऐसा पाप बन गया जिसका दंड अभी तुम्हें मिला नहीं, वो तुम्हें जलाएगा और भुगाएगा, वो भुगाएगा, कोई भी नहीं कहता। प्यार किया है प्रभु से, इससे थोड़ी प्यार किया है शरीर से, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो तुम हमारे प्यारे नहीं, आग लगाओ, चाहे जितना कष्ट दो तो आपका ही नाम निकलेगा आपके लिए। तो प्रेम तो बहुतों से करके देख लिया, शरीरों से, एक बार नाम से प्रेम करके देखो, एक बार प्रियालाल से प्रेम करके देखो, अभी निहाल हो जाओगे। पर हम लोग जैसा आपने कहा कि ये तो पहचान रहे हैं, प्रेम का नाटक करते हैं, पर असली प्रेम की तरफ नहीं पहुंच पाते। नहीं तो आप में ही है जिससे प्रेम कर ला कितना भी कोई तुम प्रेमी बनाओ, आपसे दूर ही है, शरीर तो दूसरा है ना, आपके ही अंदर वो बैठा है जो महाप्रेमी है। नाम जप करो बच्चा, भगवान का आश्रय लो, आहार विहार ठीक करो, कोई नशा मत करो, उचित गृहस्थी में उचित ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उचित, उसमें कोई नैष्टिक ब्रह्मचर्य की बात नहीं, उचित ब्रह्मचर्य रहो बस, जो कहा है उसे सुनो समझो, ठीक है। हाँ, प्रश्न करने की जरूरत नहीं, तो प्रश्नों के तो तारतम्य चलते हैं जी।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
11: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456551 या 9707-06-575।
12: ईहा रेडियो रिमझिम 90.4। अब समय हो गई बा राउर स्वास्थ्य के और बेहतर करी वाला प्रोग्राम आपन दी आपन देखवाल के। और हम है राउर दोस्त दीपाली, तो सबसे पहले स्वीकार करी हमार भोजपुरिया नमस्कार, सुप्रभात। श्रोता लोग, रउआ तो जानते बानी कि ई कार्यक्रम में हम लेके आवेनी रउआ खातिर कुछ हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। ता ऐसने कुछ नुस्खा के साथे बानी हम, ता चली शुरुआत करी हम अपना कार्यक्रम के। ता दोस्त लोग, सबसे पहले जानल जाई चिकना और तैलीय त्वचा के घरेलू उपचार। घिग्वार में त्वचा में बढ़ल होकर चिकनाई के सोखे के विशेष गुण होला। नींबू और मुल्तानी मिट्टी में त्वचा के संकोचन करे के शक्ति होला और ये त्वचा के स्वच्छ भी रखेला। की एगो कोमल पत्ता लेके ओकर रस एक चम्मच के मात्रा में निकाली आ फिर ओई में एक चम्मच नींबू के रस और उतना ही मात्रा में मुल्तानी मिट्टी डाल के पेस्ट बना ली आ ई पेस्ट के चेहरा पर भली प्रकार लगाई और 10 से 15 मिनट ऐसन लगा रह दी। बाद में एकरा के ताजा या गुनगुना पानी से धो दी।

तैयार करे खातिर एक चम्मच गुलाब जल में दो चम्मच तुलसी के हरा पत्ता के ताजा रस मिला के चेहरा पर लगाई और 15 से 20 मिनट लगा रहे दी। बाद में चेहरा के ठंडा ताजा पानी से धो दी। ये मिश्रण त्वचा खातिर एक प्रकार से रसायन के काम करेला, तैलीय ग्रंथि पर प्रभावी है और ये मरल होकल कोशिका के नया जीवन भी प्रदान करेला।

त्वचा की तिल चिकनाई के कम करेला, जबकि एकर पीला भाग सूखा और खुश्क त्वचा खातिर फायदेमंद है। अंडा में पाए जाए वाला सेलेनियम तत्व फ्री रेडिकल्स के निकाले के अलावा छिद्र में खिंचाव भी पैदा करेला।

चम्मच सफेदी के चेहरा पर 15 से 20 मिनट लगाए रहती। आ बाद में ईलिप के पानी से धोती। भुना होकर मक्का मृत कोशिका निकालेला, जबकि दूध एगो उपयोगी क्लींजर के काम करत होकर त्वचा के पोषण करे के अलावा एके गहराई तक साफ भी करेला। आधा कप दूध में 1 से 2 मुट्ठी पॉपकॉर्न डाल के हाथ से मसल दी और कड़ा हिस्सा निकाल के फेंक दी। अब एकर पेस्ट बना के गला और चेहरा पर लगाई। ये पेस्ट के 15 से 20 मिनट लगा रह दी। फिर पानी से चेहरा और गर्दन के धो दी।

तीसरा और चौथा दिन के बाद कैल जाए तो त्वचा में व्याप्त तैलीय तत्व बहुत हद तक कम होखे लगी। नींबू के रस और शहद के प्रयोग से त्वचा के तैलीय तत्व अच्छा तरह से त्वचा से बाहर निकल जाला। आधा चम्मच ताजा नींबू के रस में एक चम्मच शहद डाल के मिला ली और फिर ये मिश्रण के चेहरा पर लगावे के बाद 15 से 20 मिनट तक लगा रहे दी और बाद में ये ताजा पानी से धो दी। अब चलिए दोस्त लोग जानल जाओ शुष्क त्वचा की देखभाल। सप्ताह में एक बार चेहरा पर उपटन जरूर लगाएं। तेज धूप में बाहर ना निकली और सूर्य के किरण से त्वचा की रक्षा करी, काहे कि सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण त्वचा की हानि पहुंचावेला। ऐसन आहार के सेवन करी जेमे विटामिन ए बी सी और डी पर्याप्त मात्रा में पावल जात होके। दूध और दूध के उत्पादन के भी प्रयोग करी। साबुन के प्रयोग कभी कभार ही करी। एकरा स्थान पर बेसन या आटा के प्रयोग करी।

केमिकल पावे के कारण त्वचा की रोम छिद्र बंद हो जाला। साथ ही यदि मेकअप भी गहरा कर लिया जाए तो कोड़ में खाज के समान स्थिति हो जाए। इसे कभी भी गहरा मेकअप ना करें। तो दोस्तों चली जानल जाओ शुष्क त्वचा के उपचार के बारे में। केला एगो सर्वसुलभ और सस्ता फल है जिमे कॉपर आयरन कैल्शियम एवं फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए बी सी और डी पावल जाला। एकरा प्रयोग से त्वचा चिकना मुलायम और लचीला तो बनेला ही, साथ ही त्वचा के पूरा तरह से सफाई भी हो जाला।

पका होखल केला अच्छा तरह मत के उसमे एक चम्मच शहद मिला के गर्दन पर लगाई, जैसे रहुआ मालिश करे नी। मालिश नीचे से ऊपर की ओर करी। 15 से 20 मिनट तक लगा रहे के बाद उबाल के ठंडा

टमाटर लेके मैश करी और उसमें एक चम्मच मलाई डाल के अच्छा तरह मिला दी। ई पेस्ट के 10 से 20 मिनट तक चेहरा पर लगावे के बाद चेहरा सुसुम पानी से धो दी।

मा प्राय सब मिनरल औरी विटामिन टमाटर में मौजूद होला। केवल विटामिन बी और डी के मात्रा नगण्य होला। एके प्रयोग से हानिकारक फ्री रेडिकल्स समाप्त हो जाए।

पाई जाए वाला मॉइस्चराइजिंग तत्व त्वचा के सुंदर और मुलायम बनाए रखे में मदद करेला। ई उपाय सप्ताह में 2 से 3 बार करी।

और चुकंदर की पेस्ट तैयार करके ओकरा के चेहरा पर लगा के 15 से 20 मिनट तक लगा रहे दी। फिर पानी से चेहरा साफ कर ली। बम्बू गोशा यानी नाशपाती ना और सेब के 2-2 चम्मच पेस्ट तैयार करके उसमें आधा चम्मच शहद मिला के और ये मिश्रण के चेहरा पर लगाई। जब तक वो सूख न जाए लगा रहे दी। फिर एकरा के पानी से भली प्रकार साफ कर ली।

सेब में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्व पावल जाला, जेमे चमड़ी के खुश्की दूर करे के अद्भुत क्षमता होला।

0: आज खातिर बस इतना ही। ता हमरा ई आशा ना पूरा उम्मीद बा कि ई नुस्खा से रउआ बहुत खुश होखे और ई नुस्खा के जरूर अपनाए। ता अब आपन दोस्त दीपाली के दी जाए की अनुमति आ रखी रउआ आपन सौंदर्य के ख्याल आजमाई ई सब नुस्खा के। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और

0: होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: और नटराज डांस कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं नितिन एंड संजना। गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू नितिन, हमने कर दिया, हम जीत गए।
3: इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ऐसे अवार्ड तो बहुत मिले हैं।
2: अरे इतनी अकड़ क्यों है तुम्हें, इस शहर में आने के बाद पहला अवार्ड है मेरा।
3: यू मीन हमारा, और मुझे कोई अकड़ नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा कंपटीशन है, इतना भी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है।
2: तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है, मैं जा रही हूँ।
4: हाय, आर यू संजना?
2: यस
4: आई एम सैम। यू नो मैंने आपका डांस देखा, आप बहुत अच्छा डांस करती है।
2: थैंक्स।
4: वैसे डांस के साथ आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं।
2: थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हैं।
4: यू नो हम सब डांसर्स जो है ना, आज शाम को मिलकर एक पार्टी कर रहे हैं, क्या आप आओगे?
2: पार्टी? ओके, मैं नितिन से भी पूछ लेती हूँ।
4: एक्चुअली आप मेरे साथ पार्टी में क्यों नहीं चलते? आई मीन आई कैन पिक यू अप।
2: ओके
4: ओके मैन, सी यू। यस, लड़की तो पड़ गई।
2: नितिन तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी।
3: क्यों, क्या हुआ, तुम्हें तो बात नहीं करनी थी ना मुझसे।
2: अरे वो छोड़ो ना, मैं तुम्हें एक एक्साइटिंग न्यूज देने आई हूँ।
3: अच्छा क्या न्यूज?
2: मुझे एक लड़के ने पार्टी में इनवाइट किया है। ये शहर तो कमाल ही है यार, एक कॉम्पिटिशन क्या जीती, अब सब लोग मुझे पार्टीज में इनवाइट कर रहे हैं।
3: एक मिनट, फर्स्टली एक लड़के ने तुझे पार्टी में बुलाया, और सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तुम उस पार्टी में नहीं जा रही हो।
2: क्यों नहीं, मैं शहर से नहीं हूँ तो पार्टी में नहीं जा सकती हूँ क्या?
3: संजना तुम इस शहर में नहीं हो, तुम नहीं जानती इन सब पार्टीज में क्या होता है।
2: अरे मैं जानती हूँ, और इसीलिए सेफ्टी के लिए मैं सैम के साथ जा रही हूँ, अकेले नहीं जा रही हूँ।
3: सैम? ये सैम कौन है?
2: वही जिसने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है।
3: संजना आर यू सीरियस? तुम दो मिनट के लिए एक लड़के से मिली और वो सेफ हो गया तुम्हारे लिए, और तुम उसके साथ पार्टी में जाओगी?
2: अच्छा लड़का है वो, उसको मेरा डांस भी पसंद आया।
3: संजना ये शहर है, तुम्हारा छोटा सा गांव नहीं कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले।
2: अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम बस जेलस हो क्योंकि तुम्हें किसी ने पार्टी में इनवाइट नहीं किया है, पर मुझे किया है।
3: आई गिव अप। कुछ लोग ना आग में हाथ जलने के बाद ही समझते हैं कि वो कितनी गर्म है, बाद में मेरे पास मत आना रोते हुए।
2: हाँ हाँ नहीं आऊंगी और ना ही मैं रोऊंगी, मैं गांव से आई हूँ तो तुम मुझे कुछ ज्यादा ही भोला समझ बैठे हो ना, अब से मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ।
3: नहीं नहीं मैं खुद ही चला जाता हूँ यहाँ से, और ये अवार्ड भी ना तुम ही रखो।
2: हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम क्या हमारी बातें सुन रहे थे?
4: अरे तुम लोग इतनी जोर से बात कर रहे थे, मैं क्या करता।
2: मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ, अगर हमारी बातें नहीं सुन रहे थे तो मेरी तरफ क्यों देख रहे थे?
4: बस तुम्हें देखकर एक कहानी याद आ गई, इसीलिए देख रहा था।
2: कहानी? कैसी कहानी?
4: तुम्हारे हाथ में जो नटराज की मूर्ति है ना, उसके बारे में।
2: ये तो मुझे अवार्ड में मिली थी।
4: हाँ तुम जानते हो नटराज के बारे में?
2: ऑफ कोर्स, ये नृत्य के भगवान है, और मैं ये भी जानती हूँ कि नटराज भगवान शिव का ही एक स्वरूप है।
4: अरे वाह, तो उनके पैर के नीचे कौन दबा हुआ है ये भी जानती हो?
2: पैर के नीचे? ओह ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये तो कोई बौना जैसा लग रहा है।
4: हाँ
2: हाँ, तो छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे घर तक छोड़ दोगे? ये नितिन किसी काम का नहीं है।
4: हाँ छोड़ दूंगा, बैठो।
2: गुड। अच्छा आप बताओ क्या बता रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्या स्टोरी है इसकी और नटराज उस पर क्यों खड़े हैं?
4: बताता हूँ, कई युग पहले अपस्मरा नाम का एक वामन था। अपस्मरा अज्ञान का प्रतीक था, और वो अपनी शक्तियों का बहुत दुरुपयोग करने लगा था।

0: महादेव, महादेव।
1: क्या हुआ इंद्रदेव, क्या हुआ, कोई संकट है?
0: अपस्मारा महादेव, अपस्मारा। सारे कष्ट उसी के कारण है महादेव।
2: ऐसा क्या किया उस वामन ने?
0: वो सारे देवों पर आफत बनकर खड़ा है देवी। वो देवों को अपनी शक्तियाँ भूलने पर मजबूर करता है महादेव, और उससे देव अपना कार्य सफल नहीं कर पा रहे।
3: नारायण नारायण।
1: अरे नारद मुनि, आइए, आपका भी कोई संकट है?
3: अपस्मारा ही मेरा संकट है ईश्वर।
2: अभी अभी इंद्रदेव उसी के बारे में बात कर रहे थे, क्या आपके साथ भी उसने कुछ?
4: देवी आप तो जानती ही हैं, मैं विष्णु भक्त हूँ और मेरी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं रहती, पर उस वामन के कारण कुछ क्षण के लिए नारायण जाप भूल गया था महादेव।
0: अगर इसका कुछ नहीं किया तो एक दिन घोर अनर्थ हो जाएगा महादेव।
1: आप मुझसे क्या चाहते हैं?
0: महादेव आप अपस्मारा के इन दुष्कर्मों का अंत कर दें बस।
1: किंतु इंद्रदेव आप जानते हैं ना कि अपस्मारा मारा नहीं जा सकता।
0: क्यों महादेव, क्यों नहीं मारा जा सकता अपस्मारा? आपके लिए क्या संभव है महादेव?
1: इंद्रदेव हटना करें और समझने का प्रयास करें। यदि अपस्मारा मारा गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। बिना कोई मेहनत, प्रयास और श्रद्धा के पूरे संसार में ज्ञान बढ़ जाएगा। ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। मैं ये कदापि नहीं कर सकता।
2: और अगर ये ज्ञान किसी दुष्ट मनुष्य ने पा लिया तो इससे भी बड़ा अनर्थ हो सकता है।
4: महादेव मैं भी आपसे उस वामन को मृत्यु दंड देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर आप उसे रोक तो सकते हैं।
2: आप कहना क्या चाहते हैं नारद मुनि?
1: मैं समझ गया नारद मुनि, आप क्या कहना चाहते हैं।
4: मैं भी आज्ञा लेता हूँ महादेव। नारायण नारायण।
1: इंद्रदेव आप चिंता ना करें, अपस्मरा आपसे किसी कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकेगा, आप निश्चिंत रहिए।
5: मैं अपस्मरा हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता।
1: अपस्मरा संभल जाओ। अपस्मरा
5: तो महादेव आपने भी सुन लिया मेरे कर्मों के बारे में।
1: तुम्हारे दुष्कर्म देवों के कार्य में बाधा डाल रहे हैं अपस्मरा।
5: हाँ तो इस बात का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता भोलेनाथ।
1: अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे हुए हो तुम अपस्मरा। यदि तुमने ये सब बंद नहीं किया तो तुम्हें उसका फल भुगतना होगा।
5: नहीं महादेव, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ईश्वर कि आप भी मेरा अंत नहीं कर सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब क्या कर सकते हैं आप है?
1: तो ठीक है अपस्मरा, अब जो भी होगा वो केवल तुम्हारे अज्ञानता के कारण होगा।
5: ये रोशनी, ये क्या हो रहा है?
1: अपस्मरा तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके बहुत बड़ा पाप किया और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा।
5: ये क्या, ये क्या?
1: ध्यान से देखो मेरी ओर।
5: नहीं, नहीं, ये नटराज स्वरूप, मैं मारा नहीं जा सकता। मैं महादेव छोड़िए, छोड़िए मुझे, आप मुझे नहीं मार सकते। मेरी मृत्यु हो गई तो अनर्थ हो जाएगा।
1: जानता हूँ मूर्ख, इसलिए तुम्हें मृत्यु से भी बड़ा दंड मिलेगा।
5: क्षमा।
1: तुम सदा के लिए मेरे पैर के नीचे दबे रहोगे। ना तुम्हारी मृत्यु होगी और ना तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर पाओगे।
5: कृपा करें मुझ पर, कृपा करें।
1: तुम भले ही अज्ञानता के देव हो, किंतु मुझे अज्ञानी समझने की भूल मत करो अपस्मरा।
6: जो नटराज की मूर्ति तुम्हारे हाथ में है ना संजना, वो इसी सीन का डिपिक्शन है। शिवजी ने ज्ञानी और अज्ञानी, मतलब इंटेलिजेंस और इग्नोरेंस का संतुलन बनाए रखा।
2: ये कहानी तो मुझे पता ही नहीं थी। तो शिवजी ही हम सबको ज्ञान देते हैं। काश थोड़ा ज्ञान उस नितिन को भी दे देते। मिलवा दो जरा शिवजी को उससे।
6: शिवजी तो हर इंसान को दूसरे इंसान से मिलवाते हैं, जिससे कुछ सीख भी सकते हैं और जिसे सिखा भी सकते हैं। कभी वो हमारे माता पिता के रूप में होते हैं, तो कभी गुरु के रूप में, या कभी कभी वो दोस्त के रूप में भी होते हैं। और सारे इंसान मिलकर प्रयास और मेहनत से ज्ञान पाते हैं। पर कभी कभी जब वो ज्ञान पाने में सफल नहीं होते तो स्वयं शिवजी को ही आना पड़ता है।
2: वैसे देखा जाए तो जब से मैं इस शहर में आई हूँ, नितिन ने ही मेरी मदद की है। ये कॉम्पिटिशन में भी उसी के कहने पर पार्टिसिपेट किया था।
7: वैसे निशा, आपके डांस के जैसे आप भी बहुत खूबसूरत है।
6: अरे वो देखो, ये तो वही लड़का है ना जो थोड़ी देर पहले तुमसे बात कर रहा था।
2: हाँ, ये तो सैम है। ये तो मुझसे भी ठीक ऐसे ही बात कर रहा था। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अच्छा सैम, ये लाइन और कितनी लड़कियों पर यूज की है?
7: संजना, तुम ना? नहीं, कोई लाइन नहीं है। अरे निशा, निशा कहाँ जा रही हो यार?
2: शर्म आनी चाहिए तुम्हें सैम।
7: अरे यार, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा था तो बड़ी खुश हो रही थी। अब ये मत बोलना कि तुम इतनी भोली हो कि तुम जानती ही नहीं कि इन पार्टीज में यू नो क्या होता है।
6: लड़कियों से तमीज से बात करो सैम।
7: अबे तू कौन है, बीच में क्यों बोल रहा है?
8: ये क्या हो रहा है यहाँ?
2: नितिन, मुझे लगा था तुम चले गए।
8: पागल, तुम्हें इस बदतमीज के साथ ऐसे ही छोड़ देता। और तुम सैम या जो भी हो, इससे पहले कि तुझे मार पड़े ना, भाग यहाँ से।
2: नितिन, आई एम सॉरी, तुम सही थे। मैं तो गांव से आई हूँ, कुछ नहीं पता है मुझे।
8: आई एम सॉरी टू, मुझे ना तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें आराम से समझाता तो लड़ाई होती ही नहीं। तुम्हें अभी पता नहीं तो क्या हुआ, पता चल जाएगा ना। और मैं भी तो हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। वैसे ये कौन है?
2: अरे हाँ, पूरी कहानी सुना दी, पर तुम्हारा नाम क्या है?
6: मैं नील हूँ।
8: थैंक्स यार फॉर स्टैंडिंग अप फॉर संजना। वैसे तुम करते क्या हो?
6: मैं ट्रैवलर हूँ।
2: और एक अच्छा स्टोरी टेलर भी। थैंक यू नील, तुम्हारी स्टोरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया।
8: पर तुम जा कहाँ रहे हो?
6: वही, ज्ञान बांटते हुए भोलेनाथ के धाम अमरनाथ। आप दोनों भी आइए, मिलते हैं। हर हर महादेव।
9: Rebel without a cause can only cause you destruction. ज्यादातर जवानी का खून गर्म होता है और ऐसे में अपने दोस्त लोग, बड़े बुजुर्ग कुछ समझाते हैं तो उनकी बात को समझने का भिड़ू, हर बात को उल्टा नहीं लेने का, वरना लाइफ उल्टा। किसी की बात मान लेने से कुछ छोटा नहीं हो जाता। कहीं तो सुना था, जिसने अपनों की बात नहीं मानी वो बंदा सबसे बड़ा अज्ञानी। अब तेरे को क्या बनने का है ये तू सोच, क्योंकि शिव ज्ञान का भंडार है। शिव अज्ञानता से बाहर निकलना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
10: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
12: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
13: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
12: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
13: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
12: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
13: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल माया क्लासिकल में पीडीएफ, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8869 73।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।

0: रात कभी कभी।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने थामे मां भवानी के दरबार में की पूजा अर्चना। जीवन रक्षक और जन सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। गोपेश्वर कॉलेज में छात्रों ने दिया धरना। प्रसव के दौरान महिला की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का हुआ शंखनाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री बिस्कोमान भवन में लगभग 2:30 बजे के आसपास पहुंचे। इसके बाद वहां से सीधे बाई रोड मुख्यमंत्री का काफिला थावे मां भवानी के दरबार में पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। मुख्यमंत्री थावे मां भवानी के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से थावे माता का पूजा आराधना किया। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का थावे मां भवानी के दरबार में आगमन हुआ था। वहां स्थानीय पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से माता की पूजा आराधना कराई। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला वहां से चनावे जेल के पास पहुंचा, जहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमि का उन्होंने निरीक्षण किया। थावे प्रखंड के चनावे जेल के समीप ही मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का चिन्हांकन किया गया था। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने वहां भूमि का निरीक्षण कर अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री वहां से सीधे गोपालगंज पहुंचे, जहां नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर में हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता YV गिरी के घर उनके माताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहां भी जिले के तमाम पदाधिकारी और पार्टी के नेतागण मौजूद थे। मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने वहां वरिष्ठ अधिवक्ता के माताजी को श्रद्धांजलि दी। फिर वहां से सीधे उनका काफिला बिस्कोमान भवन पहुंचा और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा वो पटना के लिए रवाना हो गए। आज मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी, दंडाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए थे। लगातार डीएम और एसपी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी गण मॉनिटरिंग कर रहे थे ताकि पूरी सक्रियता से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके और पदाधिकारियों तथा पुलिस बलों की मुस्तैदी से मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। समाहरणालय के सभा कक्ष में आज जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर समाहरणालय में कार्यरत कर्मियों के लिए आपातकालीन जीवन रक्षक सहायता एवं जन सुरक्षा के संबंध में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसका आयोजन डॉक्टर अभिषेक रंजन, निदेशक सक्षम हॉस्पिटल, फाउंडर एवं श्रीजी सेवा ट्रस्ट गोपालगंज के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन रक्षक सहायता उपलब्ध कराने तथा जन सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। कार्यशाला आज दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें कई पदाधिकारियों और समाहरणालय के अधीनस्थ कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हथुआ के गोपेश्वर कॉलेज में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि अपनी समस्याओं को लेकर लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी के नेतृत्व में छात्रों ने आज पूरे दिन कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा
5: कि सामने जो है धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है, क्या कुछ मांगे हैं?
6: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही छात्रों के साथ खड़ी रही है और आज कॉलेज महाविद्यालय प्रशासन से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शैक्षणिक समस्याएं इतनी है, जिसको लेकर के हम सभी आज गोपेश्वर महाविद्यालय में धरना पर बैठे हुए हैं। जिसमें ये चीज है कि अभी 26 से 30 का जो सत्र का मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है और उसके बाद भी उसका एडमिशन हो गया, यानी उसका मेरिट लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुआ, छात्रों को पता नहीं चल पाया कि कितने मार्क्स पर किसका एडमिशन हुआ है। दूसरा चीज ये है कि 2019 सेशन से लेकर के 2022 सेशन तक के छात्रों से डिग्री का पैसा लिया गया, लेकिन महाविद्यालय में अभी तक उन छात्रों को डिग्री नहीं उपलब्ध कराई गई और विश्वविद्यालय स्तर पर जाने पर उन लोगों को कहा जाता है कि आपकी डिग्री महाविद्यालय में दी जाएगी। ऐसे में उन सभी छात्रों की आगे की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है, साथ ही उसका मेरिट लिस्ट टीआर नहीं जारी हो पाया है। 2019 से लेकर के 2022 तक के सेशन का टीआर नहीं जारी हो पाया है। इसके साथ साथ महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, कई ऐसे विषय हैं जिसमें शिक्षक नहीं है, छात्र आते हैं और छात्र आकर के महाविद्यालय से वापस लौट के चले जाते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम सभी आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये हमेशा से ही हम सभी कई आंदोलनों में, विश्वविद्यालय स्तर के आंदोलनों में, महाविद्यालय के आंदोलन के स्तरों में कई बार हमने मांग किया है कि जो महाविद्यालय में जो भी छात्राओं की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति हर हाल में की जाए, चूंकि छात्र दूर दराज से पढ़ने के लिए महाविद्यालय में आते हैं, उनके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था, इन सब चीजों की व्यवस्था महाविद्यालय में हर हाल में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा ही आंदोलन करने के लिए तैयार और संघर्ष करने के लिए थे। ऐसी व्यवस्थाएं अभी किसी भी महाविद्यालय में नहीं है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में ऐसी व्यवस्थाएं अभी नहीं है। मेरा नाम नवीन, विभाग संयोजक, सीवान, गोपालगंज।
4: आज गोपालगंज के चिराई घर के पास स्थित डॉक्टर मिथिलेश शर्मा के निजी क्लिनिक पर एक प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। शव को एम्बुलेंस से क्लिनिक पर ले जाकर वहां हंगामा करने लगे, जिसके बाद नगर थाना की पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। समझा बुझा कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मरीज को क्लिनिक से एम्बुलेंस में सदर अस्पताल भेजा गया और सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत बता दिया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। आज शहर के मिंज स्टेडियम में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा कार्यक्रम का शंखनाद हुआ। इस दौरान तमाम पदाधिकारीगण, कई विद्यालयों के बच्चे और भारत स्काउट तथा गाइड के जिला इकाई की टीम मौजूद रही। इस कार्यक्रम में एसएस बालिका और वीएम इंटर कॉलेज तथा डीएवी मध्य विद्यालय और डीएवी उच्च विद्यालय के साथ ही अन्य विद्यालयों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्काउट गाइड की टीम ने मार्च पास्ट करते हुए इस तिरंगा यात्रा को और भव्य बना दिया। बताया जा रहा है कि राम रतन साई उच्च विद्यालय जादवपुर और उचका गांव उच्च विद्यालय गोपालगंज की बैंड टीम भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिका भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में स्काउट गाइड के छात्रों ने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत गुड़ उत्पादन के लिए विभिन्न क्षमताओं तथा 5 से 20 और 21 से 40 TCD क्षमता को लेकर इच्छुक निवेशक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सरकार के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। गुड़ इकाई गोपालगंज जिला की भोरे, कटिया, विजयपुर और पंचदेवरी प्रखंडों के अपरंपरागत आरक्षित ग्रामों में स्थापित किया जाना है। लघु गुड़ इकाई 5 से 20 TCD क्षमता की स्थापना पर पूंजी लागत 50% या अधिकतम 6 लाख रुपए तथा मध्यम 21 से 40 TCD क्षमता गुड़ इकाई की स्थापना पर पूंजी लागत का 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए दान के रूप में भी दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए ईख पदाधिकारी गोपालगंज एवं सहायक निदेशक ईख विकास गोपालगंज के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कुचायकोट थाना के भाटुमा में 2 पटीदारों के बीच आपसी मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर निरीक्षण करने के बाद जख्मी लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में भर्ती कराया, जहां घायलों की स्थिति सामान्य नियंत्रण में बताई जा रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों से प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस ने कांड दर्ज किया है। साथ ही इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से राहुल तिवारी, पिता स्वर्गीय चंदेश्वर तिवारी और दूसरे पक्ष से प्राथमिकी अभियुक्त अजीत तिवारी, पिता कामेश्वर तिवारी, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब दोनों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। माधोपुर थाना की पुलिस ने चीटिंग के एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी गोल्डन पांडे, पिता रामायण पांडे, साकिन बेलसण, थाना माधोपुर का निवासी है। इस आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, साथ ही इसमें आवश्यक अनुसंधान भी किया जा रहा है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने चोरी कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी वजीर हुसैन, पिता रियासत हुसैन, साकिन हरपुर, थाना कुचायकोट, जिला गोपालगंज का निवासी है। इस आरोपी पर चोरी का मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नई दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर पार्टी के अन्य सांसद भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान सांसद ने अन्य जदयू सांसदों को नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद और जदयू सांसदों के साथ ही नीतीश कुमार जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। इस अवसर पर बिहार के विकास, जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, संगठनात्मक गतिविधियों तथा पार्टी को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर उन्होंने सार्थक चर्चा की। सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार जी का दीर्घ राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक दक्षता, दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत हैं। उनके मार्गदर्शन में जदयू के सांसद बिहार की जनता की आकांक्षाओं एवं जनहित से जुड़े विषयों को संसद में मजबूती से उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। सांसद ने कहा कि जदयू के सभी सांसद एकजुट होकर बिहार के विकास, जनता के कल्याण तथा राज्य के अधिकारों से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और जन प्रतिनिधि के लिए ऊर्जा एवं प्रेरणा का स्रोत है। सभी सांसदों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने थावे माँ भवानी के दरबार में की पूजा अर्चना। जीवन रक्षक और जन सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। गोपेश्वर कॉलेज में छात्रों ने दिया धरना। प्रसव के दौरान महिला की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का हुआ शंखनाद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
13: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
14: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
15: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-97-06-575।
16: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
17: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
16: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
17: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
16: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
18: मुंबई के CST स्टेशन से हर दिन हजारों लोग इस शहर में एक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं। किस्मत अगर मौका दे तो काम मिल जाता है, और ना दे तो कुछ टाइम मेहनत करके लोग वापस घर का रास्ता पकड़ लेते हैं, और कुछ सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं कई सालों तक बिना रुके, इस इंतजार में कि कभी तो किस्मत चमकेगी। इन सब के बीच साल 2000 में मुजफ्फरनगर के एक छोटे से कस्बे से एक ऐसा आदमी मुंबई आया जिसने स्ट्रगल करने की परिभाषा ही बदल दी। उसने न सिर्फ किस्मत को बल्कि इस इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी अपने घुटनों पर ला दिया, और आपको सुनाऊंगा एक ऐसे ही स्ट्रगलर की कहानी जो आज फिल्म स्टार बन गया है। ये है मेरी कहानी में, आज मेरे साथ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
19: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और यह है मेरी कहानी। बचपन तो जो है मेरा वो एक गांव में ही बीता, बचपन के मतलब यंग एज तक गांव में ही था, और फार्मर फैमिली थी हमारी, किसान लोग थे, और परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई 2 बहनें। सरकारी स्कूल में पढ़े, और फिर गांव में इतना ज़्यादा फैसिलिटीज तो थी नहीं, लाइट्स वाइट्स ये वो सब, और पूरा जो टिपिकल एक गाँव होता है वो अभी भी है।

0: थोड़ा सा डल किस्म का था मैं, मतलब इतना कोई शार्प स्टूडेंट नहीं था, थोड़ा डल था। पतंग वतंग उड़ाना, ये कंचे वंचे खेलना, ये थे हमारे गांव में, तो वही गेम खेलते थे। और पतंग का शौक था भयानक, मतलब पतंग लूटने का और पतंग उड़ाने का बहुत शौक था बचपन में। मजेदार बचपन था वैसे। उस वक्त पे अपने खेतों में जाना, नदी में नहाना, दूसरे के खेतों से जाके फ्रूट्स वगैरह ये जो होते तोड़ ओड़ के खाना, ये सब इस तरह की चीज, इस तरह बीता पूरा बचपन एक्चुअली।
1: कहानी जारी है और ये कहानी है।
0: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये है मेरी कहानी।
1: एक फार्मेसी स्टोर में काम करते करते नवाज एक्टिंग की गलियों तक कैसे पहुँचे, उन्हें ये चस्का लगा कैसे, वो भी इस कदर कि काम काज घर द्वार सब छोड़कर वो एक्टर बनने के लिए निकल पड़े, आइए जानते हैं।
0: यार दोस्त ने किसी ने नाटक दिखा दिया, प्ले देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार आई थिंक ये वो चीज है जो मैं करना चाहता था लेकिन पता नहीं था। तो फिर प्लेस देखने शुरू किए और बहुत सारे प्लेस देखे, तब जाके कॉन्फिडेंस आया कि ज्वाइन किया जाए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं रुकना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। क्या करना चाहता हूँ ये मेरे दिमाग में, जब प्ले देखा तब लगा कि यार ये चीज़ है जिससे मैं पूरी जिंदगी बोर नहीं हो सकता। तो तब मैंने शुरू किया कि अब मुझे थिएटर ही करना है जिंदगी भर तक, लाइफ पूरी लाइफ मैं अपनी इसमें वक्फ कर दूंगा, इसमें ख़त्म कर दूंगा अपनी लाइफ। बड़ौड़ा में प्लेस देखे, बड़ौड़ा में फिर ज्वाइन किया, फिर दिल्ली में आया, दिल्ली में आके फिर कोई एक प्ले थिएटर ग्रुप था वहाँ पे, वो ज्वाइन कर लिया। थिएटर में, सो हिंदी थिएटर में तो बिल्कुल ही पैसा नहीं था। हालांकि जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था और जॉब कर रहा था तब तक मेरे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब अपने शौक के काम करना शुरू किए जिसमें तब से बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई। आप चूंकि कहते हैं ना कि खुजली तो आप ही की है, आप ही को मिटानी पड़ेगी, आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता था कि यार मेरे पास पैसा नहीं है क्या करूं। तो कह देते यार तू अच्छा खासा जॉब कर रहा था, पैसे की तो कमी नहीं थी, तूने ही तो डिसाइड किया, तूने ही तो चुनाव किया इस फील्ड का, इस चीज़ का, तो आप मर तू ही, जो भी तुझे देखना तू देख। तो इसलिए कि मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता था, बट करते रहे, कभी किसी प्ले से मिल गया थोड़ा बहुत पैसा तो अपना कुछ दिन चल गया, नहीं तो वही उधार की जिंदगी चल रही थी टाइप में।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
11: कहानी दे कहानी।
12: एक्टरों का ड्रीम होता है कि भाई NSD जरूर करें, है ना? तो मेरा भी ड्रीम बन गया कि NSD करूंगा, तो ट्राई किया उसका और हो गया हमारा सिलेक्शन। और जैसे सिलेक्शन हुआ, वहाँ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि चलो अब मेरे खाने के जो वो थे, लाले पड़े हुए थे, वो अभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैस है, हॉस्टल है, तो खाने पीने की कुछ चिंता नहीं रही थी वहाँ पे NSD में। और हर महीने आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी, तो बहुत अच्छी लाइफ गुजरी वहाँ पे 3 साल।
13: कहानी जारी है और ये कहानी है।
12: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये है मेरी कहानी।
13: नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलने के बाद किस्मत ने नवाज की जिंदगी में असली ड्रामा शुरू किया। गैंग्स ऑफ वासेपुर, बदलापुर और मांझी जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों से आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके नवाज, NSD से निकलने के बाद एक वक्त पर पैसे की किल्लत के कारण बिल्कुल सड़क पर आ चुके थे।
12: NSD के निकलने के बाद थोड़ा सा सेटबैक हो गया था, वो इसलिए कि NSD में तो खाने के लिए भी मिल रहा है, हॉस्टल भी है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब जब आप फील्ड में आते हैं, पास आउट होने के बाद जब फील्ड वर्क करना शुरू होता है, आप रियल ग्राउंड पे आते तब चारों खाने चित हो गया। तो तब कुछ ना कुछ करना तो था, तो स्ट्रीट प्ले करने शुरू की। तो स्ट्रीट प्लेज में होता था कि जैसे कोई सरकारी कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी का कोई ऑयल है ना, तो उसको बेचते फिर रहे हैं। मतलब एक स्किट तैयार करके, छोटी छोटी स्किट तैयार करके उसको, जैसे बस अड्डा पे, रेलवे स्टेशन पे, आज़ाद मंडी है, तो ऐसी ऐसी जगहों पे जाके उसको वो करते थे एडवर्टीजमेंट। मतलब एक स्किट बना के उसको प्रमोट करते थे, प्रमोशन करते थे उसका। तो ये काम किया जिसमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, ये था। चार साल तक ये काम किया मैंने वहाँ दिल्ली में स्ट्रीट प्लेस की। हर दिन रोज जो है तीन तीन चार चार शोज करने पड़ते थे, तीन तीन चार चार शो करके आता था। तब तक जब तक वो चलता रहता था, पैसा होता था, वो खत्म हो जाते थे शोज, फिर अपनी कंडीशन में आ जाते थे। पैसे की बिल्कुल मारा मारी हो गई यार, पैसा है ही नहीं, कई साल हो गए, क्या करें, चलो भुखमरी में तो क्या करें, हालत ख़राब है ही, तो दिल्ली बॉम्बे चले जाते हैं, शायद वहाँ कुछ अच्छा हो जाए, ये सोच के बॉम्बे आया था। जान पहचान थी, कुछ सीनियर एक्टर थे, दोस्त थे जो ऑलरेडी आ चुके थे, उन्हीं के साथ आके ठहरा। एक एक रूम में पाँच पाँच लोग रहते थे, तो किराया कम पड़ता था, 250 रुपये के आसपास पड़ता था। तो मैंने 250 रुपये तो दे ही देंगे यार, तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता 250 रुपये महीना भी नहीं दिया जाता। तो जब कई चार पाँच छः महीने हो गए, तो जो मेन बनता था, जिसने डिपॉजिट दे रखा था घर का, उसने बोला भाई बोरिया बिस्तर बांध लो। ना क्यों, अरे पाँच महीने हो गए किराया नहीं दिया तूने, ये तूने, ठीक है तुम बोरिया बिस्तर लेके किसी दूसरे के दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो गए, चार पाँच महीने वहाँ निकाले। एंड में उसने भी बोल दिया कि भाई निकल लो जरा। तो ऐसे ऐसे मतलब टोपी पहना रहा था मैं लोगों को।
13: कहानी जारी है और ये कहानी है।
12: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये है मेरी कहानी।
13: आज बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे, ऑन स्क्रीन रोमांस कर रहे नवाज शुरुआत से इतने लक्की नहीं थे। उनके स्ट्रगलिंग डेज में मुंबई आने के बाद जहाँ एक तरफ एक्टिंग उन्हें मौका नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ लड़कियां भी उन्हें मौका नहीं दे रही थी। नवाज की लव लाइफ कई कोशिशों के बाद भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती।
12: मैं सच बताऊं कि मैं जब बम्बई आया था 2000 में आया था मैं, और आने के 5 साल तक भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। बस हाँ, इतना एक्सपीरियंस था लड़की का कि हाथ छुआ था मैंने, बस हाथ छूने का एक्सपीरियंस था बस मुझे। और मैंने ट्राई, ऐसे नहीं कि मैंने बहुत शरीफ आदमी था, मैंने हर बार ट्राई किया, रिजेक्ट हुआ हर, लेकिन उसके बाद फिर ट्राई किया, लेकिन पता नहीं क्या क्या चीज़ अटकी हुई थी कि लड़की को पसंद नहीं आती थी या समझ में नहीं आती थी। बेशरम हो गया था, मतलब भांड हो गया था पूरी तरीके से मैं। आई थिंक मैंने 300-400 शोज किए स्ट्रीट प्लेस के, तो पूरी भांडगिरी आ गई थी। तो उस चीज़ में शर्म नहीं रहती थी, उस चीज़ में कभी शर्म नहीं आई, लेकिन एट द सेम टाइम ये होता था कि जो पर्सनल जो लाइफ थी वो बिल्कुल एम्प्टी होती चली गई। पर्सनल लाइफ में बहुत झिझक थी, पर्सनल लाइफ में किसी से बात करते हुए थोड़ा डर लगता था, और उस घबराहट होती थी जो अभी भी है, अभी आज तक है, वो उसको ओवरकम नहीं कर पाया मैं बिल्कुल।
8: रफ्तार
14: सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके।

0: मंटो एक इंसान।
1: मैंने घंटों पढ़ा है तुमको मंटो, तुम्हारे जैसा बनू करे मेरा मन तो। इन बंदों को सच नहीं दिखता, 70 साल आजादी के सच आज भी नहीं बिकता।
2: अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: हर तरीके से ट्राई किया, जैसे बहुत सारी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपने अपनी चीज को, मैं डायरेक्ट बोल देता था, इस तरह का था कि यार मैं तुम्हारे से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। लड़की को बोल दिया एक दिन मैंने, कहना फ्रेंड तो तू है ही मेरा। मैंने वैसा फ्रेंड नहीं, दूसरे तरीके का फ्रेंड बनना चाहता हूँ। बोले दूसरे तरीके का क्या फ्रेंड होता है? मैंने चलो पार्क में चलो मेरे साथ बताता हूँ। तो पार्क में ले गया, पार्क में जाके बैठी रही वो, हाँ बता। तो मैंने उसके हाथ पे हाथ रख दिया, तो उसने बोला क्या क्या है क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं बस ऐसे ही। बोले कुछ नहीं है बस ऐसे ही, मतलब कल को तू कहीं भी हाथ रख देगा क्या? ये तो इलीगल है। अब जैसे उसने इलीगल कहा तो मुझे तो पुलिस स्टेशन और थाने ये वो सब याद आने लगे। तो मैंने आपसे सॉरी बोला, मैंने कहा आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। उसके बाद थोड़ा और डर लगने लगा, वो डर कभी भी आज तक बना रहा वो साल। लेकिन जब कम हुआ तो तब तक मैंने शादी कर ली थी।
11: और ये कहानी है,
10: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये है मेरी कहानी।
11: जब किस्मत और मेहनत दोनों साथ ना दे तब काम आता है जुनून। शायद ये जुनून ही था जिसने 99 से 2009 तक एक एक दो दो सीन करने वाले नवाज को आज किक, 3, 23 जैसी फिल्मों से सलमान, शाहरुख और अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ऐसा कुछ कर गुजरने का नवाज पहले से ही सोच कर आए थे?
10: मैं तो सोच के आया था मैं काम करता रहूँ, सच बात तो ये है, काम करता रहूंगा, छोटा मोटा जो भी मिलेगा करता रहूंगा जिंदगी। एक्चुअली सर्वाइवल इम्पोर्टेंट था, सर्वाइव करता रहूं मैं, बस वो इम्पोर्टेंट था, उसी की जद्दोजहद में लगे रहते थे। एम सब आया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच के आया था, वो 5 साल में सब खत्म हो गया। सोच के आए थे थिएटर के आए, एनएसडी से हूँ, जाते ही मतलब पलट दूंगा है ना, लेकिन वो 5 साल में खुद ही पलट गया। छोटे छोटे सीन करने से, मुझे रोल करने से फायदा हुआ कि लोगों की नज़र में, जो फिल्म इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर फिल्म मेकर्स थे उनकी नज़रों में ये होने लगा, यार ये बंदा कोई है जो एक सीन करता है बहुत अच्छा करता है डायरेक्ट में, उसको बुलाओ दो सीन दो। तो दो सीन मिल गया, बस अपना ड्रीम यही था, यही चाहिए था, इसी के लिए बॉम्बे आए थे। दो सीन मिल गया, हो गया काम अपना। तो फिर सिलसिला दो दो सीन का चलने लगा, और फिर 8-9 साल में जाके 3 सीन मिले, 3 सीन का धंधा शुरू हो गया। 3 सीन से फिर इत्तेफाक से 2009 से बहुत सारे फिल्म मेकर्स, यंग फिल्म मेकर्स ऐसे आ गए थे जो अपनी मर्जी की फिल्म बना रहे थे, तब से वो चीज़ें ट्रैक पे आनी शुरू हुई। जिन्होंने 3 सीन देखे हुए थे उन लोगों ने अपनी फिल्म में मेन लीड में लेना शुरू कर। उसी दौरान जैसे पतंग में काम किया मैंने, पीपली लाइव और फिर और दूसरी फिल्में बनती चली गई, वो फेस्टिवल में अप्रिशिएट हो रही थी, और उन्हीं फिल्मों की वजह से एक क्रेडिबिलिटी बनती जा रही थी। बट ये था कि हाँ, वक्त बदल रहा था, समय बदल रहा था, लोगों की सोच बदल रही थी, तो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ मुझे एज एन एक्टर। मुझे सच बताऊं, मैंने ये कैसा महसूस होता है ये इस चीज़ पे अभी तक कभी गौर नहीं किया, मुझे अभी तक भी यकीन नहीं होता टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये मुझे वक्त मिला नहीं। मैं सच बताऊं 2009 से जो मैं बिजी हुआ हूँ अभी तक मुझे टोटल स्ट्रेट वे में मुझे 15 डेज नहीं मिले एक्चुअली, ताकि मैं थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स होके सोच सकूँ कि क्या आपने अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया। ये रियलाइजेशन करने का वक्त मैं सच होता मुझे नहीं मिला। तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं थिएटर, जैसे हम थिएटर में बिजी रहते थे, ऐसे ही मैं फिल्मों में बिजी हो गया हूँ।
11: कहानी जारी है और ये कहानी है।
10: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये है मेरी कहानी।
11: इंडस्ट्री में आज अपनी एक अलग नीश, अपना एक अलग मकाम बना चुके नवाज ने वाकई दशरथ मांझी की तरह पहाड़ तोड़ा है। ये पहाड़ था धारणाओं का कि ऐसा एक चेहरा और ऐसी कदकाठी वाला कोई एक्टर स्टार नहीं बन सकता। उन्होंने बदलापुर के लायक की तरह ही टाइप कास्टिंग की जेल को तोड़ा है और फ्रीकी अली की तरह खुद अपने दम पर अपनी किस्मत लिखी है। ये शायद नवाज की जिद ही थी, पर क्या वजह थी इस जिद की?
10: मैं सच बताऊं, रीजन जिद का ये था कि मैंने अपना काम करने का अपना वो बना लिया था, जज्बा बना लिया था कि मुझे जिंदगी में यही करता रहना है, चाहे छोटा करूं बड़ा करूं, लेकिन जो भी करके आऊं वो परफेक्ट होना चाहिए। उसमें मुझे गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, अरे यार मैंने कैसा काम किया। किसी भी डिस्कवर करता रहूं अपने आप को, अपने अंदर। जैसे NSD में जब ये चीज़ मैंने सीखी कि एक्टर का हमेशा ये होना चाहिए कि जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ, वॉट यू आर, अपने आप को जानने की कोशिश करो। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हो गया कि आदमी कहीं से एक मोटिवेशन मिला कि इंसान के अंदर 1000 कैरेक्टर होते हैं, ज़रूरत है उसको खोजने की, डिस्कवर करने की। तो ये मैंने अपना धर्म बना लिया कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करता रहूँगा, कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश करूँगा, भले एक सीन मिले मुझे। ये मेरा जन्म से अधिकार है, यही मेरा धर्म है। मुझे लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंगली मैं बता सकता हूँ कि जो ओरिजिनलिटी है आपकी वो कभी मिस नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्टर आते हैं और वो फॉलो करने लग जाते हैं चीज़ों को और वैसा बनना चाहते हैं, है ना, उसमें तो आप वैसे ही हो गए, फिर आपके अंदर क्या बचा। मज़ा तभी है जब तक आपका जो पन है वो कायम रखें, है ना। और इतने साल स्ट्रगल करने के बाद एक मेंटली आप सिनिसिज्म ना आने दें अपने दिमाग में, नेगेटिविटी ना आने दें अपने दिमाग में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आई थिंक कभी भी किसी भी स्टेज में मिल सकती है, और तब तक के लिए आपको मेंटली फिजिकली करेक्ट रहना जरूरी है, परफेक्ट रहना जरूरी है।
11: जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुँचने की कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की। ऐसी ही कहानियां करेंगी आपका इंतजार, तो सुनना ना भूलें।
7: कहानी

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर

0: तो श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे विदा ली जाए, तो इन्हीं खूबसूरत गानों के साथ और इन लोगों को एक विदाई देते हुए इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए मुकेश और सायरा को।
1: That's right. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, Ahem News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning, listeners. Have a great day.
0: Namaskar.
1: Namaskar.

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरलीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
5: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
7: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
0: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
5: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
8: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश पे बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
5: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
9: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी उड़ीसा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
11: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
12: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
13: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
14: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोच्चि में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोच्चि सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलु मॉल में और एजीमाला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चोवा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
13: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
15: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
13: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
16: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
13: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट।

0: समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा, नव सृजित डिग्री महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को पीएचडी पूरा करने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और प्रदेश के विभिन्न भागों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया जा रहा है तिरंगा यात्रा और वंदे मातरम के सामूहिक गान का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्ष तक के लिए विस्तारित कर दिया है। इसके लिए 950 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने बीएड कॉलेजों में डिग्री कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। सचिव श्री सोहेल ने बताया कि इस फैसले के बाद मान्यता प्राप्त राज्य के 300 निजी बीएड संस्थानों में अब 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार लगभग 300 हमारे जो स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजेस हैं, अब उसको हम लोग राज्य सरकार बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरण और शैक्षणिक शुद्धिकरण की स्वीकृति दी गई है। इससे 300 और कॉलेज वैसे उपलब्ध हो सकेंगे जिसमें बच्चे बीएड के अतिरिक्त बाकी सब बहुविषयक शब्दों पर विषयों पर डिग्री प्राप्त कर सकेंगे।
0: मंत्रिपरिषद ने 4 नगर निकायों गया जी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए पेट्रोलियम कंपनियों को 10-10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया है।
1: राज्य के 4 नगर निकायों में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार की जो सरकारी वाल कंपनी है IOCL, गेल, HPCL और BPCL को 10 एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए निःशुल्क उपयोग के लिए दी गई है। इसमें जो कचरा निकलता है भीगा हुआ, उससे इसका प्रोसेस किया जाएगा, उससे खाद बनेगा और उससे ऊर्जा उत्पादित होगी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है जो स्वीकृति दी गई है।
0: सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि कैबिनेट ने युवाओं को नए दौर के रोजगार से जोड़ने के लिए 7 निश्चय 3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक विस्तारित कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 430 करोड़ रुपए के व्यय की मंजूरी दी गई है।
2: 7 निश्चय 3 के अधीन जो दोगुना रोजगार दोगुना आय की योजना है सरकार की, उसके अधीन 2026 से 27 से 2030-31 तक अर्थात अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना को स्वीकृति दी गई है और 26-27 के लिए इस पे 430 करोड़ 8 लाख 35 हजार रुपए के व्यय की भी स्वीकृति दी गई है। कुशल युवा कार्यक्रम के अधीन जो गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट का काम युवाओं के लिए किया जाता है, इसके 5 साल के एक्सटेंशन से युवाओं को स्किल मिल सकेगा और उनको रोजगार मिल सकेगा।
0: कैबिनेट ने कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि इस फैसले से 6,436 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रतिवर्ष 2.5 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित होंगे। इसके तहत युवाओं को AI, ड्रोन, सोलर नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, विदेश भाषा और उद्यमिता जैसे भविष्य के कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्यपाल से कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकित वे अभ्यर्थी जो नव सृजित डिग्री महाविद्यालयों में संविदा नियुक्ति में सफल हुए हैं, उनके लिए विशेष निर्देश जारी किए जाएंगे। लोकभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में श्री हसनैन ने कहा कि इन अभ्यर्थियों को अपनी संविदा नियुक्ति के साथ साथ शोध कार्य भी समय पर पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को युवाओं की बदलती सोच और आकांक्षाओं को समझना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद के जरिए उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने तथा उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाने पर जोर दिया है। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
3: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: बिहार पुलिस विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और प्रदर्शन के दौरान AK-47, इंसास और सेल्फ लोडेड राइफल का उपयोग नहीं करेगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सेमी ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल केवल उग्रवाद, आतंकवाद और दुर्दांत अपराध से जुड़े मामलों में किया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार बंद के दौरान सीवान में एक जवान द्वारा AK-47 से गोली चलाई गई थी। इधर राजद ने इस घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 19 अगस्त को राजभवन मार्च की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी तथा विजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश में लोगों में व्यापक उत्साह देखा जा रहा है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि अभियान के तहत तिरंगा रैलियां और वंदे मातरम का सामूहिक गान किया जा रहा है। सुपौल में रेलवे स्टेशन परिसर के पास सशस्त्र सीमा बल SSB की ओर से जैज बैंड का प्रदर्शन किया गया। बल के प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक विजय सिंह के कुशल मार्गदर्शन में बैंड ने मनमोहक प्रस्तुति दी। अरवल जिले में अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में कई वरिष्ठ पदाधिकारी, स्कूली बच्चे और आम लोगों ने भाग लिया। बक्सर जिले में उप विकास आयुक्त निहारिका छवि के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा में जीविका दीदी, स्वयं सेविकाएं और अन्य लोगों ने भाग लिया। इधर पटना GPO में वंदे मातरम संगीत अभियान का आयोजन किया गया। पटना GPO के मुख्य डाकपाल राजदेव प्रसाद समेत अन्य अधिकारियों और कर्मियों ने वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों समेत सभी सक्षम अधिकारियों को अपने अपने जिलों और प्रखंडों के विद्यालयों में तिरंगा यात्राएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण को लेकर पूर्व में लागू प्रतिबंध अब प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग द्वारा जिला समाहर्ता सह जिला निबंधक को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोर क्षेत्र समेत पाटलिपुत्र टाउनशिप के संपूर्ण क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पहले की तरह की जा सकती है। श्री मिश्रा ने कहा कि इस निर्णय से क्षेत्र के भू स्वामियों और आम नागरिकों के बीच बनी असमंजस की स्थिति समाप्त होगी। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्निर्माण कार्य के चलते 29 अगस्त से वाहनों का परिचालन पुल पर प्रतिबंधित रहेगा। इससे पहले पुल निर्माण निगम ने 1 सितंबर से वाहन परिचालन बंद करने का फैसला किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्य समय पर शुरू करने के लिए 3 दिन पहले ही ट्रैफिक रोकने का निर्णय लिया गया है। अररिया जिला मुख्यालय स्थित विद्युत कार्यालय में आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर मेला सह लून मेला का आयोजन किया जाएगा। मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल दरवाजा मोहल्ले से अपहृत बच्चा भोजपुर से बरामद कर लिया गया है। मुंगेर पुलिस ने इस संबंध में 3 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सारण जिला प्रशासन ने हाल ही में संपन्न सिपाही बहाली परीक्षा के दौरान कर्तव्य में लापरवाही और अनियमितता के आरोप में अलग अलग अनुमंडलों में पदस्थापित 6 वीक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अनुशंसा पर की गई है। राज्य सरकार ने सारण जिले के 9 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को शहरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत इन केंद्रों का संचालन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इन केंद्रों पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब खबरें खेल की। बीसी राय राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार जूनियर बालक टीम का चयन 17 और 18 अगस्त को बेगूसराय के बरौनी में आयोजित होने वाले चयन शिविर में किया जाएगा। खेल मंत्री शेषी सिंह ने राज्य के युवा तैराक श्रेयांश यादव को सम्मानित किया। श्रेयांश ने हाल ही में संपन्न 48वीं राष्ट्रीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, हर साल 2,57,000 को ट्रेनिंग, 300 निजी बीएड कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स। हिंदुस्तान लिखता है, रबी मौसम से पीएम फसल बीमा योजना लागू होगी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, केंद्र ने गंगा और सहायक नदियों के लिए तय की नई परिभाषा। गंगा बाढ़ क्षेत्र की परिभाषा से निर्माण मुक्त क्षेत्र हटा। दैनिक भास्कर लिखता है, राम मंदिर के सीईओ के इंटरव्यू खत्म, अब 3 नाम भेजेगी चयन समिति। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में खुलेंगे 598 नए अर्बन पीएससी और वेलनेस सेंटर, 2 रुपए में होगा इलाज। आज अखबार लिखता है, रूस ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का अपना मध्यस्थ बनाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य सरकार ने युवाओं को नए दौर के रोजगार से जोड़ने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम को 5 वर्ष तक विस्तारित किया। प्रतिवर्ष 2.5 लाख से अधिक युवा होंगे प्रशिक्षित। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा, नव सृजित डिग्री महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को पीएचडी पूरा करने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और प्रदेश के विभिन्न भागों में हर घर तिरंगा अभियान का हो रहा है आयोजन। तिरंगा यात्रा और वंदे मातरम के तहत सामूहिक गान का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन 2:00 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
4: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: मनोरमा है।
4: जी जी,
5: गाना सुनना है।
4: जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
5: मेरा नाम पड़ेगा, जानपुर से बोल रहे हैं।
4: अच्छा, कैसे हैं आप?
5: बहुत अच्छे मैम, गर्मी तो बहुत है मैम, आज बहुत दिन खराब हो गया।
4: गर्मी तो है, तो ऐसे क्या हो रहा है अभी?
5: अभी बैठे हैं।
4: खाना वाना हो गया आपका?
5: खाना आपका खाना?
4: जी जी, हो गया। आपकी फरमाइश बता दीजिए।
5: गाना सुनवाइए मैम, जनरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
4: गाना लिख
5: अभी रेडियो रोता को।
4: तो वैसे आप ये रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनते हैं?
5: मोबाइल से सुनते हैं, फ्रेंडली है हमारे घर, रेडियो से भी सुनते हैं।
4: अच्छा, मतलब मोबाइल ऐप के जरिए?
5: नहीं नहीं, रेडियो जो पर मोबाइल, जो मोबाइल में रेडियो होता है ना,
4: हाँ,
5: इससे सुनते हैं।
4: चलिए, बहुत अच्छी की बात है। मतलब कितने समय से सुन रहे थे?
5: उसी समय से चालू हुआ, 2009 5 जनवरी को, जो इसी समय से सुनते हैं।
4: चलिए, बहुत अच्छी की बात है। कैसा लगता है आपको कार्यक्रम?
5: बहुत बढ़िया, हर प्रोग्राम अच्छा लगता है, हर समय समय से। पहले तो 12 बजे बंद हो जाता था ना, 5 बजे खुलता था, अब तो चालू हो गया 24 दिन में और रात में 11 बजे तक भी सुनते हैं।
4: मतलब आप ऑल प्रोग्राम सुनते हैं ना?
5: सब प्रोग्राम सुनते हैं, जब सुनता है, कहीं कोई काम में चले, कोई बातें नहीं, समय रहता है तो जो प्रोग्राम आता है वो सुनता है।
4: बढ़िया, गाना डेडिकेट भी है,
5: बोले हैं सभी को।
4: करते हैं गाना आपका?
5: जी मैम।
4: जी, रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद मैम।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा आ रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम। तो अभी इंतजार खत्म हो गया मैम, फोन तो लग गया। अभी तो फरमाइश का इंतजार रहेगा मैम, तब बजेगा आज कल,
0: कोशिश रहेगा की।
1: जी तो आज फरमाइश है, कुमार सानू का आवाज में है, गाने के बोल है मारे कटारी में मर जाऊं, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
0: ओके ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: धन्यवाद मैम।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBA

0: MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94। जी हाँ, 80 029 94। तो चलिए बढ़ते हैं।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
1: जी अरुणा जी, क्या हाल चाल है?
0: जी बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
1: हम जी बढ़िया, और मैं दिल्ली से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से परेशान है
0: जी। यहाँ पे भी बहुत गर्मी,
1: लेकिन आप लोग एसी में बैठे रहते हैं, हम लोग को धूप में चलना पड़ता है, दिन पूरे दिन रोड पे चलना पड़ रहा है, गाड़ी चलाना पड़ता है।
0: वैसे क्या करते हैं?
1: मैं गाड़ी चलाता हूँ ना यहाँ पे, और आपके रेडियो से गाना भी सुना रहे हैं
0: जी।
1: बहुत गाना भी सुना रहे हैं। हमारे इसमें आरजे लोग आए और हम लोग यहीं पे आए, मतलब आरजे लोग आए कि आज भी हम लोग से प्यार मोहब्बत है, और सभी लोग अच्छे जानते हैं लिखना भी सुनाने जितने सारे अभी जो आप लोग अभी अभी आई है।
0: वैसे आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: जी हेलो
0: जी, जी फरमाइश बता दीजिए अपनी।
1: आवाज का वीक जा रहा है, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। गाना है तेरा पता मालूम नहीं, ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: जी जी बता दीजिए।
1: आप सुन भाई प्यार की दी है, कबाब सुन रहा रेडियो रिंगीन है।
0: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं
1: जी।
0: सुनते रहिए सबके साथ जिम 90.4
1: और कितनी मंगलमय हो।
0: नमस्कार।
2: ये पर्दा

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM
0: नमस्ते। अनिल
1: में। नमस्ते
0: बात कर रहा हूँ छोटू से।
1: जी, कैसे हैं अनिल जी?
0: बस बढ़िया, आप बताइए और आपकी टीम के बारे में बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ और हमारे यहाँ के टीम भी सभी बढ़िया है।
0: आप भारती जी बोल रही हैं ना?
1: नहीं
0: मनोरमा जी बोल रही हैं?
1: जी,
0: जी, अभी मेरा कॉल लगा था, अभी आवाज में डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि कॉल लगा और फिर कट गया, आधा अधूरा बात हो रहा।
1: वो नेटवर्क इश्यू की वजह से कट गया।
0: हाँ,
1: तो
0: तो आज का फरमाइश है हमारा कुमार सानू का सॉन्ग है, बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार।
1: हाँ, वैसे आप दुल्हन गा के सुना सकते हैं।
0: गाना तो बहुत कम गाते हैं लेकिन आप कहिएगा तो थोड़ा सा गुनगुना देंगे।
1: जी
0: बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार, आजा। याद नहीं है उतना अच्छा से, खराब हो गया गाना ही, खराब हो गया पूरा।
1: कोई बात नहीं, आप
0: थोड़ा सा सुने हुए ज्यादा दिन भी हो गया ना, इसलिए तो सोचे कि आज रेडियो पे ही फरमाइश कर रहे हैं इस गाने का।
1: जी बिल्कुल।
0: अब आप गवा दी हमको, अब भारती जी से जब बात होगी वो भी गवाएंगी, सोनी जी आएंगी तो वो भी गवाएंगी।
1: कोई ना, आप बहुत अच्छा गाते हैं इसीलिए बोले।
0: नहीं, गाना बहुत कम गाते हैं वैसे, कभी प्रयास कर लेंगे घर से ही, मतलब उसको रिपीट कर लेंगे, फिर उसके बाद उस दिन हम गा के सुना देंगे बढ़िया से गा।
1: जी बिल्कुल। तो
0: वैसे आप
1: आप
0: लोगों का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है रेडियो रिमझिम पे, और आपसे एक बार बात हुई थी तो वो कॉल बजा नहीं था, और बाकी सब ठीक है।
1: जी, वैसे तो मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं की थी, आज बहुत दिन के बाद कर रही हूँ।
0: आप स्टार्टिंग में जब आई थी, जब आप लोग शुरुआत में जब आप आई थी और भारती जी को भी उसमें योर वॉइस योर चॉइस में लाया गया,
1: जी,
0: उसी टाइम का बात बता रहे हैं।
1: अच्छा, तो कोई मेरी कहीं मिस्टेक नहीं हुई होगी। वैसे तो मैं सारा गाना प्ले की थी,
0: हाँ,
1: अगर आप कहीं नहीं सुने होंगे भी हो सकता है।
0: नहीं रेडियो ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि हम नहीं सुने होंगे, मतलब रेडियो तो मतलब एक सोशल मीडिया का युग होने से मतलब नहीं, वो सब तो बकवास की चीजें हैं। वो अपनी अपनी जो सरकार आ रही है, तरह तरह की स्कीमें ला रही है, रेडियो जो है वो किसी का नहीं है, वो भारत सरकार का ही है, लेकिन उसका और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का ये जवाब नहीं हो सकता, वो अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया।
1: जी,
0: इसमें पारदर्शिता होती है, जो भी चीजें आती है अच्छी ही आती
1: बिल्कुल।
0: है। जी
1: ये अनिल जी, तो अगर गाना उस दिन नहीं बजा होगा उसके लिए सॉरी। और ये
0: अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इसका कोई मतलब दिल पे नहीं लेते हैं हम, अपना ही ना परिवार है, परिवार में सबको रहना है, गलती सही सबसे होता है। जी
1: जी, तो अनिल जी गाना प्ले करते हैं।
0: जी
1: जी
0: थैंक यू।
1: वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
11: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
11: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
11: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6550।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो मैम, कर रहे थे 90.4 एफएम में।
15: नमस्कार मैम।
14: नमस्कार,
15: कैसी हैं मैम
14: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
15: हम भी ठीक है, नाश्ता पानी हो गया है?
14: हो गया। और आपका?
15: मेरा भी हो गया है।
14: बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका नाम?
15: सुनीता देवी।
14: हम तो आवाज सुन के पहचान गए, लेकिन क्या करे, अगला आदमी को भी तो पता चले।
15: जी जी जी जी मैम।
14: वैसे कहाँ से?
15: हाजीपुर से।
14: अब क्या हो रहा है अभी?
15: अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी बैठे हैं, तो इसीलिए सोचिए आज तो आज बुधवार है, आज लगाए कॉल करें। सोमवार को तो नहीं लगाए, तबीयत खराब था। तबीयत खराब था, उपवास से तो सो गए थे।
14: वैसे मौसम भी चेंजिंग हुआ है, इसकी वजह से भी तो।
15: जी जी मैम, दो दिन से तो धूप बहुत ज्यादा तेज हो रहा है।
14: बहुत ज्यादा। क्या करा?
15: और सब बोली है?
14: जी सब बढ़िया। आज की फरमाइश बता दीजिए।
15: जी मैम, गाना तो भूल गए हैं, मगर एक गाना याद आ रहा है, खेसारी लाल का नहीं है, शंकर भगवान का गाना है, रात दिन रानी है, रात दिन राउर बैला दिलाना, वही बजा दीजिएगा मैम।
14: और सुनवाना भी है?
15: जी मैम, आपको, भारती मैम को, सभी भाई और बहनों को सुनाना है।
14: तो आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
15: जी मैम, सब कोई ठीक है। आपकी?
14: जी मेरे यहाँ भी सब कोई ठीक है।
15: चलिए ठीक है,
14: ठीक है। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
15: थैंक यू मैम।
14: रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
15: थैंक यू मैम।
14: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 2 से गोपालगंज।
1: जी, क्या हाल चाल है अरुण जी?
0: बस बहुत बढ़िया है जी। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
1: जी, हम लोग भी बढ़िया हैं।
0: जी, आप लोग, आपका तो ये रेडियो का जो आदमी सुन करके बिल्कुल हमेशा टाइम का इंतजार करता रहता है कि हाँ अभी टाइम होगा, अभी कॉल करेगा, ये प्रोग्राम अभी सुनेगा। बहुत अच्छा है, सुबह का प्रोग्राम भी तो जो है वो आदमी को जिंदगी के लिए एक नया ढाल बन गया है, जो प्रवचन आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हमको गाना सुनना है, अरे मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है।
1: ओके,
0: हेलो
1: जी। और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: जी, सबसे पहले तो आप आए और जितने भी ये फिल्म का दोस्त साथी हैं, जितने भी आदमी सुनते हैं, उन सबको सुनाना। ठीक है
1: जी। तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम तो बस यही है, मौसम जो है मौसम बना हुआ है बारिश का, ऐसे संभावना लग रहा है कि शाम तक बारिश होएगा, क्योंकि ये भादो के जैसा नहीं लग रहा है, एक वार का जैसा लग रहा है। घाम में काफी मतलब वो है, थोड़ा सा भी धूप लगता है ना तो लगता है कि बस चमड़ा सूख गया। सही मौसम नहीं है,
1: ऐसा लग नहीं रहा जैसे कि सावन का महीना चल रहा है।
0: आप ही देखिए ना, बाहर निकलकर देखेंगे तो आपको स्कूल अंदर का अपना बता देगा कि सावन भादो के जैसा नहीं लग रहा है, ये वार के जैसा लग रहा है। वार में जैसा धूप निकलता है ना, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं किया था कि चमड़ा कब सूखता है, तो बताने वाला बताया कि कुवार में। आंसर सही हो गया, यही बात है। तो दुमास लग गया था ना, दुमास लग गया। अगर सीधा सीधा महीना जोड़ा जाए ना तो ये कुवारी है। ठीक है, मैं रंजी गाना सुना दीजिए, आज सुनाएंगे कि कल?
1: कोशिश रहेगा कि आज ही चले। ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
14: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो,
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला, गुना, मध्य प्रदेश से।
16: जी कैसे हैं सुनील जी?
15: बढ़िया है मैडम जी, और बरसात हो रही है और आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
16: अच्छा जी, ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
15: मधुसूदनगढ़ जिला, गुना, मध्य प्रदेश से।
16: अच्छा, तो बारिश हो रही है अभी उधर?
15: जी जी जी, बारिश रात का ही पानी गिर रहा है, अभी पानी गिर रहा है।
16: अच्छा, हमारे तरफ तो बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है।
15: आपके इधर गिर रहा है क्या पानी?
16: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है, धूप निकला हुआ है बहुत तेज।
15: अच्छा, उधर धूप निकल रही है उधर?
16: जी।
15: अरे वाह, हमारे यहाँ तो कल से आपको ठंडा हो गई, हमने पंखा कूलर सब बंद कर दिए हैं, अब तो नॉर्मल है।
16: अच्छा, तो कहीं लोग बारिश से परेशान है, कोई कहीं गर्मी से?
15: जी।
16: तब खाना वाना हो गया आपका?
15: जी अभी नहीं हुआ है।
16: अच्छा,
15: भारती जी बोल रही है? सोनी जी
16: नहीं,
15: मनोरमा जी।
16: जी जी
15: जी, बहुत दिनों में बात हुई है मेरी आपसे आज।
16: जी, और क्या ना, भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी बीच में।
15: तो मैडम जी, पिक्चर का नाम है आज दीवाना मुझसा नहीं कोई।
16: ओके, और गाने के बोल?
15: गाने के बोल है, सारे लड़कों को कर दो शादी, बस एक को कुंवारा रखना।
16: ओके, और गाना डेडिकेट किया?
15: जी जी मैडम जी, सबसे पहले आपको है, भारती मैम को है, सोनी मैम को है, और अपने गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ती है, इन सभी को ये गाना डेडिकेट है, जितने भी ये रेडियो सुन रहे हैं उनको। और ये प्ले कब होगा मैडम जी?
16: पूरा कोशिश रहेगा कि गाना आपका आज ही प्ले हो।
15: जी जी, धन्यवाद।
16: तो गाना प्ले करते हैं ये सबके साथ, रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
15: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिम 90.4 FM में। जी, क्या हाल चल रहा है रेशमा जी?
1: ठीक बा, आप बताए।
0: जी, हमारे बढ़िया बा।
1: तो कक्का कायल बनी नू?
0: हेल भाई ला।
1: हाँ, ये हो गल बा। तब तो ठीक बा।
0: बिल्कुल बढ़िया बा।
1: मुनारवा में?
0: जी
1: संपनी।
0: जी बढ़िया बानी। रुआ ठीक बनी नू?
1: ठीक बनी।
0: चलिए, बढ़िया की बात है।
1: आज गाना सुना दी।
0: बता दी।
1: हारे हारे हम तो दिल से हारे।
0: काई दो लाइन दो गा के बता सकते नहीं?
1: गा के बता दे।
0: बिल्कुल।
1: ज्यादा याद नहीं है, थोड़ा सा याद बा।
0: हाँ हाँ, उतने गई ना।
1: हारे हारे हम तो दिल से हारे। इतना याद है मैडम जी?
0: अभी कोनो बात नहीं की। और ये गाना रवा के ऊपर सुनवाई के भी चाहते नहीं?
1: हाँ, सुन ले, मैं जितना सुनता सब कोई सुनी।
0: चलिए बढ़िया बा।
1: अच्छा मैडम जी, अगले साल गाना तो मना के बजू है ना? सुन ले गाना जन कॉल रहा हूँ, रवा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ना बजू है।
0: शुक्रवार के हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं।
1: शुक्रवार को? शुक्रवार का गिला।
0: अच्छा,
1: जब हम गाना फरमाइश कर रहे हैं। बहुते दर्द दिल प्यारे हो दिल टूटल को जानानी।
0: हम वैसे तो गाना तो सब प्ले कर ले रहे हैं, मत कहीं रुआ ना सुन पाई लेते हैं।
1: कहियो हो सकेला, ठीक है कहा तुम, लेकिन हम चालू करेंगे। काम से चालू करें पास जगह कुछ भी ना वे चालू करेंगे। बस 10 मिनट आगे पीछे हो जाएगा काम में रहने का।
0: हाँ वैसे ना,
1: तो जैसे याद करेगी काम तो होगा, जल्दी चालू करें, फिर आगे चालू करें।
0: अच्छा, चलिए। तो घर परिवार में सबको ठीक बनो?
1: जी मैडम जी, सब ठीक बा। अपन बताए।
0: जी जी, यहाँ पे भी सब ठीक
1: बा। सबको ठीक बा?
0: सबके बढ़िया बा।
1: हम तो सबको ठीक बा।
0: हाँ हाँ, बढ़िया बा।
1: पार्टी में लागल बनी?
0: चलिए ठीक बा। तो और गाना प्ले कर पानी?
1: जी मैडम जी, बजा दे। आज तक बजा दे तो ठीक है।
0: जी जी, पूरा कोशिश रही।
1: हाँ ठीक बा,
0: ठीक बा। सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैडम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: Now pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
6: Pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
8: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: Hey,
7: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
7: सलामुअलैकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम।
7: आज तो बड़ी खुशी की बात है कि एक ही बार कॉल लगाया लोग।
9: जी जी
7: हाँ, नहा करके आए थे। जानते हैं कि आज पट्टी खुला है, एक महीना के बाद आज नहाए है। तो सोचे कि अब तो टाइम नहीं है, लगा कर देखे के लगता है लग गया। बोलिए समाचार, बोलिए अपना।
9: जी सब बढ़िया है,
7: ठीक है ना।
9: जी जी।
7: आज तो घाम हुआ है।
9: गर्मी तो बहुत है।
7: गर्मी है यार, गर्मी है यार, गर्मी में गर्म पानी से गोसल किए।
9: अब क्या करिएगा, जब व्यवस्था दे तो नहाना।
7: और सब सुनाइए।
9: जी सब बढ़िया। आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
7: हमारा नाम है मैनुद्दीन अहमद। पहचानते नहीं है, बराबर करते हैं।
9: जी जी पहचानते हैं, लेकिन हमारे श्रोता लोग तो जाने।
7: हाँ हाँ, मैनुद्दीन अहमद, घर डुमरिया, उसका गाँव थाना में पड़ता है।
9: और सब बढ़िया ना।
7: हाँ हाँ,
9: अभी खाना वाना हो गया ना।
7: हाँ अभी तो खाना खाए।
9: ये बढ़िया,
7: अभी खाना खाए है, सेब खाए।
9: तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
7: हाँ, हमारा फरमाइश ले लीजिए, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पूरी फिल्म का।
9: और ये आप सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
7: हाँ, कब सुनाइएगा?
9: पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे आपका गाना।
7: अच्छा ठीक, वो उतरे तो हमें को बज गया, सुन लू। सुबह भी बज गया, सुन लू, दो बार आ गया। ठीक है,
9: वालेकुम अस्सलाम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4।

0: हेलो।
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: थैंक यू। मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से बोल रहा हूँ। जी, मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भारती जी?
1: नहीं जी, मैं मनोरमा।
0: अच्छा, मनोरमा जी।
1: जी जी
0: जी, अच्छे से कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, सुनते हैं हम। तो गाना हमको सुनना है,
1: बता दीजिए।
0: लास्ट कॉल है मेरा अब शायद।
1: नहीं नहीं,
0: अभी है कॉल इसके।
1: हाँ, कॉल है
0: और गाना है, और थोड़ा गुनगुना कर बता देते हैं।

0: यही गाना है।
1: ओके, वैसे आप अपना नाम क्या बताया?
0: निसार अहमद, लकड़ी दरगाह, जिला सिवान।
1: ओके, तो ये आप गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: पहले तो आपको, भारती जी को और सोनी मैडम जहाँ भी हैं, ये गाना उनके लिए भी है और जितने भी रेडियो इंजिन सुन रहे हैं उन सभी भाई बहनों के लिए और अपने फैमिली के साथ ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
0: थैंक यू
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।
0: थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: फिरोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94 11। जी हाँ, 80 029 94 11। तो चलिए

0: हेलो,
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग 90.4 FM में।
1: जी सर, मास्टर बोल रहे हैं गना से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: हम लोग बढ़िया से, अच्छे से हैं। आप लोग कैसे हैं बताइए।
0: जी, हम लोग भी बढ़िया हैं। लोग
1: बढ़िया हैं, रेडियो रिंगकिंग परिवार सब लोग अच्छे से हैं।
0: जी, सब कोई बढ़िया है।
1: आपके तरफ तो बारिश हो रहा है कि नहीं?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
1: बड़ी धूप कड़ा निकल रहा है।
0: जी, धूप तो है।
1: ये तो पहला कॉल लगा हुआ है।
0: जी, पहला ही कॉल है।
1: जी सर, गाना सुना दीजिए, गाना सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: 8 और 16 मूवी का। आज सुबह जब मैं जगा।

0: गाना मैडम
1: ओके okay, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: जी सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रेंजन सुनने वाले श्रोता है सभी को, और हम लोग थनाओ से रोशन ट्रेलर में सुनेंगे सभी लोग।
1: तो ये आप रेडियो रेंजन को कैसे सुनते हैं?
0: मोबाइल से सुनते हैं,
1: मोबाइल ऐप के जरिए।
0: ऐप के जरिए हाँ, और रेडियो हम लोग का सब थोड़ी बजेगा, पकड़ भी नहीं करेगा रेडियो में।
1: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: हम धनाओ थाना नासिकगंज जिला रोहतास बिहार से, जिला रोहतास हम लोग है।
1: अच्छा चलिए बढ़िया, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी
1: जी, रेडियो रेंजन 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: जी जी, तो धन्यवाद। मैं संजय कुमार शाह, ग्राम बढ़ा मनिया, पूर्वी चंपारण बिहार से।
1: जी, कैसे हैं संजय जी?
0: जी, मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ा तो गर्मी तो बहुत ज्यादा है, गर्मी थोड़ा नहीं कहा जाता है, लोग करल छोड़े हैं।
1: जी जी, गर्मी तो बहुत।
0: जी जी, बाकी हाल खबर ठीक है, बढ़िया है। और कहीं ना रूम में बैठे हैं, आप आ रहे हैं, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब घर पर जा रहे हैं, सब ठीक ठाक है। और सब उधर के मौसम बताइए, उधर इसे गर्मी क्या है, बरसात हुआ है कि नहीं, आजकल होता है कि नहीं बरसात?
1: बहुत है, धूप भी निकला हुआ।
0: जी जी, हमारे यहाँ 50 रोज पहले ही से बारिश भी रुका है, 4 रोज पहले बारिश हुआ था, लेकिन 4 रोज से गर्मी चल रहा है। गर्मी तो उस समय था, लेकिन फिर भी कहने के मतलब क्या है कि थोड़ा पानी गिरला पर थोड़ा राहत हुआ है, थोड़ा राहत रहा, लेकिन फिर भी पानी रुका रुका, फिर भी गर्मी ज्यादा हो गया। प्रकृति के नियम है, चलता रहता है। आज गाना सुना दीजिए,
1: बता दीजिए।

0: संक्रांति।
1: आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
0: जी जी चलिए आप कहती है तो हम लोग थोड़ा गुनगुनाते हैं, लेकिन हम लोग तो गाते आना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी गुनगुना लेते हैं ताकि ट्रैक मिल जाए बढ़िया से, आप लोग उठने में सरल हो। सबसे पहले कुछ मित्र की याद करना चाहता है, सबसे पहले आपको आप रेडियो इंजन संपन्न परिवार को और दोस्त में हो गया शिकारा से मामा शादी जी कुशवाहा जी सोहनी दीपक दास जयभान ठाकरे जूनिया साहब धर्मेंद्र यादव उर्फ मिथुन धनराज प्रसाद कुशवाहा मदन राम भैरवगंजी भैरवगंजे राजेंद्र यादव भाटी सतलाल गौतम उत्तर प्रदेश मऊ से सलार अंसारी मोहम्मद सलार अंसारी बजवलिया का विशेष उनको संगीता हंसमुख हरिंद्र प्रसाद यादव मिकुटा कौशल किशोर प्रसाद जितेंद्र सरकुमार नीरज गुप्ता सुरोज श्रीवास्तव हमारे नाम से देने पर चले तमाम सुनाते हुए अभी आपसे चलेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
11: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
14: Now pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: जी। गाना सुनना चाह रहा हूँ
1: जी। गाना सुनवाएंगे, आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: कमलेश कुमार बलुआ टोला मनियारा फार्म से।
1: अच्छा,
0: गाना सुनना है बुलंद राजा के बाबा धाम का गाना।
1: जी बता दीजिए।
0: बुलंद राजा गाना बाबा धाम के नाम का।
1: कौन सा आवाज कट के आ रही है?
0: बाबा धाम के गाना।
1: गाने के बोल
0: देवघर बाबा के। बुलंद राजा कौन गाना बजाई? नाव का गाना बजाई ना।
1: अच्छा ठीक है, मतलब भोजपुरी में या फिर हिंदी में?
0: बाबा धाम का गाना बोलूंगा ना।
1: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में?
0: भोजपुरी में बजाइए।
1: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है
0: जी?
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं
0: जी।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनते हैं।

0: हेलो
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
0: जी थैंक यू, हम कैसी हैं?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: कोई अच्छी की बात है। वैसे आपका नाम?
0: नेहा।
1: कहाँ से बोल रही है नेहा जी?
0: कासा मुसाफिर।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है।
1: क्या हो रहा था अभी?
0: अभी आराम करेंगे।
1: खाना वाना हो गया आपका?
0: जी।
1: ये बढ़िया। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: सावन मजा न देगी, यही गाना।
1: चूड़ी मजा न देगी, कंगन न मजा देगी। ओके। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: आपको और जितने भी रेडियो रिंगटोन का भी।
1: ओके। वैसे नेहा जी, आप ये रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनती हैं?
0: जी ऐसे सुनती हूँ,
1: गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड की है।
0: जी
1: ये बढ़िया। मतलब कब से सुनते आ गई आप ये कार्यक्रम?
0: 2000।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगटोन का कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: मतलब सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है रेडियो रिंगटोन?
0: माइक वाइज और क्रिसमस फरमाइश।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। तो नेहा जी आपका गाना प्ले करते हैं। जी रेडियो रिंगटोन 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार। अनुमा मैम बोल रहे हैं ना?
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: अपना सुनाइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया।
0: अरे हमारे से कोई गलती हो गया है क्या? मैंने कॉल किया, 312 कॉल किया, दो बार लगा, उसके बाद भी काट दिया गया।
1: नहीं, कॉल कटा नहीं हो क्या ना? नेटवर्क इशू की वजह से कट जाता है कभी कभी।
0: तो सोचते कि कोई भारी गलती हो गई है हमारे।
1: नहीं नहीं है, कोई बात नहीं।
0: बहुत परेशानी होती है कॉल लगाने में, है ना? तो ऐसा लगता है कि बना हुआ घर गिर गया। हाँ, अगर विश्वास न हो तो आप एक बार लिसनर बन के कॉल करके देख लेगा।
1: नहीं, हम
0: इतना परेशानी होती है,
1: तब तक दूसरा।
0: हाँ, 300 बारी आज कॉल किया, अब दो बार लगा, इसके बाद कट गया।
1: चलिए कोई ना,
0: मैं सोचा कि लगता है कोई गलती हो गया है, बोलूंगा कि मैम देखिए हमारी नंबर ही बल कर दो, क्या फायदा।
1: नहीं नहीं, ऐसी बात
0: परेशान। और सब अपना सुनाइए।
1: जी जी, सब बढ़िया।
0: इस बात को अपने दिल से मत लेना, मैं ऐसे बोल दिया, बहुत परेशानी होती है।
1: समझते हैं।
0: हाँ, तो इस बात को आप दिल से मत लेना, क्योंकि किससे कहेंगे, आप ही से कर सकते हैं ना?
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, तो वही बात है। शुरू से आप ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे? शुरू से रिकॉर्डिंग आप ही कर रहे हैं?
1: नहीं नहीं, आज मेरा रिकॉर्डिंग है।
0: गणेश कुमार मिश्रा, दिल्ली। पहचान नहीं रहे क्या? तो मैं ऐसे भी सोचा कि आज लगता है मनोरमा मैम है, इसीलिए क्या बात करने का अलग तरीका है, इसलिए थोड़ी लगता है बिजी ऐसा जा रहा था ना, लग रहा था कि मनोरमा में नहीं है आज।
1: जी जी।
0: क्योंकि आप लंबा बात होते हैं ना। चलिए, आप पहले का भी रिकॉर्डिंग हमारी एक ही हुई है, आज भी एक रिक्वेस्ट ले लीजिए, भोजपुरी ही है। मैं ज्यादा करके भोजपुरी देता हूँ, लेकिन बनिया देता हूँ, कोई अश्लील गाना नहीं। तो आज भी एक है, गोरू राजा का है, गाने का बोल है, खाली तीर्थ कर बी और काम बा, माई बाबू के चरण में चारों धाम बा।
1: ये आप गाना एक बार गा के बता सकते?
0: खाली तीरथ और काम बा, माई बाबू के चरण में चारों धाम बा। बस इतना ही।
1: बहुत अच्छा गा लेते हैं
0: मैम। मैं तो बहुत अच्छा गाता ही था, थोड़ी टेंशन में आजकल जी रहे हैं साल डेढ़ साल से, इसलिए थोड़ी वो नहीं। तो मैं तो गांव में एग्जाम जो होता है ना 24 घंटा का, उसमें मैं गाता था, मेन में मैं गाता, पर पानी की वजह से थोड़ी टेंशन में। तो हम तो गा तो बहुत अच्छा लेते हैं, संगीत हमें बहुत प्रेरणा, संगीत बहुत प्रेम है। इतना मूवी से मुझे प्रेम नहीं है, संगीत प्रेम, संगीत सुनकर मैं रातों भर जगा रह जाऊंगा, इतनी प्रेम है। हाँ, इसलिए थोड़ी सी हमारी बातों पर गौर करना, बहुत परेशानी हो आप लोगों से बात करने के लिए।
1: जी जी।
0: गाने सुनने का माध्यम तो बहुत है, सुन सकते हैं जैसे मर्जी, लेकिन एक आप लोगों के द्वारा जो गाना बजता है उसका एक अलग ही है। तो ये कब तक बज जाएगा
1: ये गाना आपका? कल बजेगा, लग रहेगा कि आज ही बजे।
0: नहीं, पिछला भी आपका एक बार ही है, गाना मेरा सुना दीजिए।
1: गाना
0: आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।
1: चलो, गाना भी करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।
0: ओके।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या खैरियत है?
1: जी बढ़िया, अपना बताइए।
0: मेरा भी अच्छा। आपके तरफ के मौसम कैसा हुआ है?
1: धूप तो निकला हुआ।
0: जी गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: आज गर्मी है। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: हम माझा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, और आपका नाम?
0: मेरा नाम साई पलक है।
1: साई पलक
0: जी,
1: बहुत प्यारा नाम है। तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी आपके पास कॉल कर रहे थे, एकदम बिजी बता रहे थे लाइन, तो क्या कि अभी लगा है कॉल।
1: चलिए, अब कॉल लग गया तो अपनी फरमाइश बता दीजिए।
0: क्या मौसम आया है?
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं?
0: नहीं, मतलब इतना ही याद है क्या मौसम आया है।
1: अच्छा,
0: सुना दीजिए गाना। सर आपको भी डेडिकेट करना चाहते हैं, सभी डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: श्रोताओ, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। नमस्कार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: 1,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रुपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: गोपाल मोटर 27 चेटी गोपालगंज
0: या अभी 92897 14 86 1

0: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939356923।

0: कसमानू खाने
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो समय हो गया है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। और यदि आप हमसे इस शो में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे। और बिल्कुल आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग, जब तक आप सभी जुड़ रहे हैं और गाने के बोल हैं, जरा देख मेरा दीवानापन। तो चलिए बिना देरी किए ये प्यारा सा सॉन्ग प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग जरा देख मेरा दीवानापन, और आप सभी मुझे ज़रूर बताइए कि गाना सभी को कैसा लगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हेलो आरजे भारती मैम जी, आपको लिख रहे हैं आने रेडियो रिमझिम परिवार को दोपहर गुड आफ्टरनून राधे राधे नारा। नया पारा विरई जिला बालोद से बसंत कुमार ठाकुर गीत सुनना चाहते हैं और गाने की बोल पहुंची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती मैम, लाजवाब ओपनिंग सॉन्ग और जरा देख मेरा दीवाना मेरा पागलपन और मेरे भी हाजिरी लगा दीजिएगा, मैं भी जुड़ गया हूँ। और लिख रहे हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोग से मिलने से हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय प्ले थेम गाना सुना दीजिएगा थम के बरस, और डेडिकेट है आयशा प्लीज़। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम एजे है और मैं अयोध्या से हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे पास जो फरमाइश पहुँच हुई है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मैं अनीस यादव विलेज डुमरा यदवंशी टोला सिवान बिहार से हूँ और खान ग्लोबल स्टडीज़ पटना का नीट का स्टूडेंट हूँ। और लिख रहे हैं कि दोस्त का रिश्ता हमेशा खास रहे, हर पल चेहरे पर खुशियों की आस रहे, दूरियां चाहे कितनी भी हो जाएं, दिल में अपनों का प्यार हमेशा पास रहे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ लिख रहे हैं, मैम मुझे भी गाना सुनना है और गाना सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं, तुम्हें देखी मेरी आँखें, और ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ मनीष यादव, सतीश यादव, नीतीश यादव, रौनक यादव, अंकित यादव, अंजलि यादव, नंदिनी यादव, मिष्टी यादव, मिल्की यादव, पूजा राजपूत और आपको भी। और थैंक यू सो मच मैम मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए। तो चलिए आपका गाना बिना देरी किए प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जा

0: रोड गोपालगंज
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो भरोसे का नाम हर राइड के साथ
1: कॉल नाउ 9956 59536 या 9956 57902।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। यदि आप हमसे इस शो में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788891, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज काफ़ी सारे पहुँचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है आपका चॉइस, और ये मैं कह रहा हूँ। और यहाँ मेरे पास तीन दोस्त लोग हैं, और रोहित सोनी, सुहन सोनी, और ये लोग भी कह रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है आपका और चॉइस लाजवाब है झकास। और इसी के साथ हम तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आज फिर किसी का गम अपना बनाने को जी करता है, किसी को दिल में बिठाने को जी करता है, आज दिल को क्या हुआ खुदा जाने, बूझती हुई शाम फिर जलाने को जी करता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश मिश्रा दिल्ली से, और

वार्ड नंबर 1 से, और गुड आफ्टरनून सभी को बोल दीजिएगा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके तरफ से सभी को मैंने गुड आफ्टरनून बोल दिया है। और इसी के साथ हमारे पास जो कि मैसेज पहुंचे वाले कर रहे हैं, हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपका कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ जो कि फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम एजे है और मैं अयोध्या से हूँ, और मुझे गाना सुनना है आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग ने बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुना, आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे अभी मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिखते हैं कि हेलो मैम नमस्ते, मैं रवि कुमार तिवारी दिल्ली से, तो मुझे भी गाना सुनना है और प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते, नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार सिंह गुलाब गोपालगंज से, और हमें गाना सुनना है, लिंक भेज दिए हैं, सुनना है।

सबसे सुनाना है सबसे पहले उत्तम सोनी सन्यासी रंजन बाबा संदीप भाई और मुकेश भाई को सुनवा दीजिएगा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं मोतिहारी से पुट्टू भाई, और खुशी समीर को दुआ प्यार और एक गाना सुना दीजिएगा। और छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं हाय प्ले थमके बरस सॉन्ग और डेडिकेट है आयंस आयशा को, तो बहुत ही प्यारे सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए गाना को प्ले करेंगे और गाने के बोल हैं थमके बरस, तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हेलो मैम, सरफरोज अली गोपालगंज से, और हम भी जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं मोतिहारी से मजरा आलम मैडम। एक गाना सुनना है और सुना दीजिएगा, और गाने की भूल यहाँ पहुँची हुई है। और मोतिहारी से MD मीनू, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि एक मुट्ठी सरसों हमार कुनवा मोड़ पे पीट पीट के बरसो, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, आप सभी को क्या बात है, आज अच्छे गाने की बारिश हो रही है, और वैसे आज शुरुआत बहुत मधुर संगीत से हुआ था, लगता है उसी का असर है। और सब्जेक्ट बैंक में चोरी, और लिख रहे हैं कि एक शायर नया नया चोर बना और बैंक लूटने गया और कुछ इस अंदाज में चोरी किया। तो लाइन है तकदीर में है वही मिलेगा, हैंड्सअप यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, जो भी अपने ख्वाब हो आँखों से निकाल दो, अपने पास जो भी है इस झोली में डाल दो। बहुत कोशिश कर सकता हूँ तेरी यादों को भुलाने की, खबरदार किसी ने कोशिश की पुलिस को बुलाने की। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और इसी के साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं थैंक्स फॉर रीड दिस शॉर्ट स्टोरी, और जुड़े हैं सोनू सऊदी अरब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, यह गाना धनेश कुमार मिश्रा को सुनाना है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फुल गाना सुनाने का कष्ट करिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं रवि जी, और इसी के साथ चलिए इनके तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनते हैं क्या इनकी वॉइस।
8: भारती मैम, मेरा एक गाना है जो धनेश कुमार मिश्रा को सुनाना है, छोटू राजा का सॉन्ग है, गाने का बोल है, मैं गुनगुना के भी सुना दे रहा हूँ। खाली तीरथे करब की और काम बा, माई बाबू के चरण में चारों धाम बा। अगर ये गाना मिल जाए आपको तो ये गाना सुना दीजिएगा, और नहीं तो लिंक मैं भेजूंगा।

0: अभी हम लोग ने सुना रवि जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग माई बाप के चरणिया में चारों धाम भाव। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती दी, का हाल बा, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत उदास है दिल तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से। तू लाख खफा है मगर मुझे तो देख, कोई टूट गया है तेरे चुप हो जाने से। और बहुत मस्त सॉन्ग है और माई बाप के चरण में चारों धाम बा, और यह गाना सुनकर दिल खुश हो गया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा एक सप्ताह हो गया है क्या? तो नहीं, आपका कल पूरा होगा एक सप्ताह। और जो हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुंची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी स्वामी,
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: हम तो बढ़िया हैं, अपना सुनाइए।
0: हम सब भी ठीक हैं,
1: भगवान का कृपा रहे।
0: कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: आज तो गाना एक सुनना है जी, याद किए हैं क्योंकि सावन का महीना है, तो सोच रहे हैं कि सावने वाला क्या गाना कोई सुने।
0: बता दीजिए।
1: तो एक भोजपुरी फिल्म का गाना है, एक सॉन्ग है कि सावन का महीना पवन करे सो, गिरा रे झूमे जैसे बंधना के।
0: और सॉन्ग सुनाना भी है?
1: अरे जितने लोग जुड़े हैं सब लोग सुने हैं आप
0: जी। तो चलिए, आपका गाना प्ले कर दिए हैं रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, पौन सा ग्राम मड़ई खगड़िया बिहार, हमें भी गाना सुनना है और गाने के बोल हैं ऐ मेरे वतन के लोग। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, राधे राधे पाजी यूपी चौवन से, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैडम जी। और लिख रहे हैं कि अगर समय हुई तो हमरो गाना बाजी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ

और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, आँख उठाकर भी ना देखूं जिससे मेरा दिल ना मिले, जबरन सबसे हाथ मिलाना मेरे बस की बात नहीं। भारती जी नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार। आप भी, आपकी शुरुआत सॉन्ग बहुत अच्छी थी और तब से जुड़ा हूँ, जाम में था, टाइम नहीं मिल रही थी और भेजने की, और जुड़ गए हैं हाजिरी तो बनता है। दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम राजू अली है और मैं ज़िला सिवान विलेज लकड़ी दरगाह से हूँ और मुझे गाना सुनना है, तो प्लीज़ मैम सुना दीजिएगा। और गाना नेम था थोड़ी देर और मूवी है हाफ गर्लफ्रेंड और सॉन्ग का लिंक भेज दिया हूँ, प्लीज़ गाना बजा दीजिएगा। और इसी के साथ बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 91.4 FM बिना देरी किए।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना राज वल्लभ जी की तरफ से गर्लफ्रेंड मूवी का, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का प्यारा सा सॉन्ग थोड़ी देर और ठहर जाओ, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, धनु कुमार मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ और मुझे भी गाना देशभक्ति गीत सुनना है, सुना दीजिएगा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, कहो दिलीप भाई का हाल चाल बाहो। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चिता सिंह और रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, उससे पहले हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश आई हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: हम खावे से राणा जी प्रसाद बोलते हैं। गाना सुने
0: बता दी, कौन सा गाना सुने बा? कौन सा? आवाज और कटकट की आवाज तो सुनाई नहीं खेरे। एक बार और बोल दी। ना ना, एक बार और बोली ना, सुनाई दी और। हेलो,
1: आवाज़

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और रामा जी तो बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश करते हैं लेकिन उनकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी और मुझे सॉन्ग भी सुनाई नहीं दे रहा था क्या बोल रहे हैं, और इसलिए अपने मन से मैंने एक गाना चला दिया। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं प्लीज़ मैम भेज दूंगी तो सुना दीजिएगा। तो जी बिल्कुल भेज दीजिए और बिल्कुल आपको गाना सुना दूंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हे भोले दानी बरसावा पीट पीट के पानी, चौरा में धान रोपल बानी, सूख जाई तो पेट कैसे मानी, काहे कि हम भाते ज़्यादा खानी। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार गुलाब गोपालगंज से और मुझे गाना सुनना है और गाने की यहाँ बोल पहुँची हुई है, कर्मा मूवी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले किया जाए और रेडियो रिमझिम 90.4 FM में इन्जॉय किया जाए इनके गाने को।

और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहा है, मैडम रवा खातिर एक टोकरी शुक्रिया भेजले बानी गाना बजावे खातिर, गाना सुनत तानी, तो गाना सुननी है खातिर यहाँ पे मैसेज पहुँचल बा। जैसे लिखा था नहीं कि नमस्ते भारती जी, जलंधर पंजाब से जुड़ गए हैं, और गोविंद कुमार तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी सन्यासी रंजन बाबा इतना मस्त मस्त मैसेज कहाँ से लाते हैं, ज़रा पूछ के बताइए। और जी बिल्कुल, और लिख रहे हैं यहाँ सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, गांव की पत्नी हो तो एक परेशानी ये है कि अगर रोमांटिक होकर उसकी गोद में सिर रखो तो वो ढील ढूंढने लगेगी। और बहुत ही हंसने वाली शायरी है। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनना है और गाने के बोल हैं, संदेशे आते हैं सॉन्ग सुनना है, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि धनु कुमार जी की तरफ से। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज।

0: संपर्क करें 99-554-97-644।
1: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि ना दिन का पता ना रात का, एक जवाब दे खुद मेरी बात का। कितने दिन हो गए उस यार से बिछड़े हुए, जरा ये तो बता कौन सा दिन रखा है हमारी मुलाकात का। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं पाजी यूपी 54 से, और यहाँ पे ये मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन बाबा को हमारे तरफ से भोजपुरिया प्रणाम बोल दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं देवेंद्र कुमार सिंह जी, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मैम सॉन्ग बजाने के लिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, और लिख रहे हैं क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, लड़कियां भी दुपट्टा उतार देंगी तेरी कफन के लिए। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो
2: हेलो जी, मैडम जी प्रणाम।
1: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: हम नगेंद्र माझी उर्फ दयामान जी आ घर पटौली बद आ ब्लॉक फुलवरिया से बोलते नहीं मैडम जी। क्या समाचार बा अपन?
1: हमनी के तो ठीक बानी सर, रउआ बताई रउआ लो कैसन बानी।
2: अच्छा ठीक बा, हमू ठीक बानी।
1: अच्छा
2: परसों झंडा है 15 अगस्त,
1: तो
2: कारगिल वाला गाना तनी गावा तनी हुआ बजाए।
1: ठीक बा बताई।
2: देशवा के कारण देहले, देशवा के कारण देहले, कारगिल में जानवा, धन धन धन या मोरे देश के जवानवा। देशवा के कारण देहले, कारगिल में जानवा, धन धन धन या मोरे देश के जवानवा। मैडम जी
1: गाना तो बहुत अच्छा गावे नी।
2: सुनी ना ये बजावे के बाद कौन या दिलखी दीदी के गाना हवे कि जो सुनवी हम मोबाइल में, बड़का मोबाइल में सुनवी। हाँ तो ये बजाई जननी
1: और सुनाहूं के बाद
2: सुनी ना सुनावे के बाद सबसे पहले रहुआ के जननी। आ जितना लोग सुनत सब लोग के हम अपन पूरा परिवार के सब सुने। ठीक बा नू?
1: ठीक बा।
2: ठीक बा
1: बजाई। प्रणाम प्रणाम। और गाना प्ले कर दिल बनी रेडियो 90.4 FM में, एंजॉय करिए अपना गाना के।

हम लोगों ने सुना कारगिल से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और कन्हैया दीक्षित की आवाज़ में और देश के दिशवा के कारण दिल्ले कारगिल में जन्मा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि इश्क में बंदा फूट फूट के रोता है क्योंकि इश्क में जुनून होता है, लेकिन दोस्ती में जून जुलाई सब होता है, महीना दिन हो कोई सा बंदा कम से कम चैन से सोता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं ओम साई टेलर राघव जी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि क्या मैम मेरा गाना नहीं बजेगा? तो ऐसा नहीं है, आपका भी गाना प्ले होगा। और यहाँ पे मेरे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती जी, पप्पू ठाकुर कटिया गोपालगंज से। और वक्त लिख रहे हैं कि वक्त बदला, लोग बदले, पर तू नहीं बदला। स्कूल के बेंच से दिल तक का सफ़र नहीं बदला। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ है पप्पू ठाकुर जी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ इंस्टाग्राम के तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैडम जी, क्या हाल चाल है? और मैं महताब दुबई से अब बोल रहा हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, और गाने के नाम है देश रंगीला रंगीला सॉन्ग है, तो सुना दीजिएगा भारती मैम और प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए इनका ये खूबसूरत सा सॉन्ग प्ले करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे।

0: हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939491551 पे।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493456 या 9797076575।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम एक गाना मेरे भी बजा दीजिएगा और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम जी, प्लीज़ लिंक भेज दिया हो तो प्ले कर दीजिएगा। तो कोशिश है कि प्ले की जाए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू मैम आपको शायरी पढ़ने के लिए और दिल से थैंक यू हमारे तरफ से। और लिख रहे हैं कि हमारा भी सॉन्ग है, भेजे हैं, टाइम मिलेगा तो चला दीजिएगा भारती मैम। तो मैसेज करने वाले हैं राघव जी। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, फेसबुक पर एक लड़का है जिसने लड़की बनकर मुझसे रिचार्ज करवा लिया। और लिख रहे हैं कि भाई पैसा वापस कर दे, वो सब्जी के पैसे थे। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी। और इतनी बढ़िया बढ़िया लाइन सही में आप लाते कहाँ से हैं हमें भी बताएं। और हमारे यहाँ अभी तो गोपालगंज में बारिश, हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, उससे पहले थोड़ा तेज़ी हो रहा था। और लिख रहे हैं कि हाय भारती जी कैसी हैं मैम, दही भत्ता से उषा जुड़ी चुकी हूँ और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग है गाने की बोल। और बारिश के मौसम में यहाँ गाना भी सेम पहुँचा हुआ है, चलिए बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश है। और गाने के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। और लिख रही हैं कि प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना टिप टिप बरसा पानी और उषा जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सी गाने की फरमाइश है और लिख रहे हैं कि मरीज ऑपरेशन सही से करिएगा, डॉक्टर ऐसा क्यों कहा मरीज, क्योंकि सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही फ़र्क है, यदि ऑपरेशन सही हो गया तो आप सर्जन और यदि आपका हाथ हिल गया तो फिर मेरा विसर्जन। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, और सन्यासी रंजन जी आपको तो अब चावल की कमी नहीं होगी क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है और आपको चावल अच्छा लगता है खाना तो आप खा सकते हैं, और नहीं होगा तो हम सब भी भेज सकते हैं आपके लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 से गुड आफ्टरनून सभी को बोल दीजिएगा, और लिख रहे हैं मेरा गाना बजा दीजिएगा कि लिख रहे हैं मेरा गाना बजेगा कि नहीं। जी बिल्कुल, आपका भी गाना प्ले होगा और इनकी फरमाइश लिंक के माध्यम से वॉइस के माध्यम से पहुंच हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 से, आज मेरे को वॉइस का टाइम तो हो ही गया है, ज़्यादा ही हो गया है मैम, इसलिए वॉइस भेज रहा हूँ बजा दीजिएगा। और गाने का बोल है, बोल रहा था बोल तूने ये क्या किया, अपने किसान को दिल दे दिया। और सुनाना है सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, और दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को, अख्तरी को, असलम को, फिरोज को, और संताज भाई को, गुफरान को, और जो भी रिम झिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमज़ ज़ैट पर।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करे 85070-32042 पे।
13: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 एफएम। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91। जी हाँ, 9852-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। जी हाँ, 7277-16-6596। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो।
14: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम। हमारे तो ठीक बार हुआ, बताइए रुआ कैसन बनी?
14: ठीक बार, सब रानु जो है बाहर।
13: तो कौन
14: सुना?
13: बता दी
14: सारी लड़के लगा के सर लोग भी जान मारी लड़े पब्ली।
13: और गाना सुनाऊं के बाद?
14: हाँ, सबसे पहले आपका सुनाओ के बाद, जितना जिन जिनके आदमी का सबसे सुनाओ के बाद।
13: तो चलिए और गाना प्ले कर दे, बनी एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
14: ठीक बात।

तो अभी हम लोगों ने सुना खेसारी लाल की आवाज़ में सॉन्ग लगा के फेयर एंड लवली, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आशुतोष मिश्रा, रोशन मिश्रा, मंजू मिश्रा, हम लोग मीरगंज जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं पर पुणे में रहते हैं, और हम लोगों को गाना सुनना था और गाने की बोल यहाँ पहुँच गई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की बोल है थम के बरस, जरा थम के बरस। और मैंने अभी ये सॉन्ग प्ले किया था। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, बेवफा से दिल लगा लिया नादान थे हम, बेवफा से दिल लगा लिया नादान थे हम, गलती हमसे हुई क्योंकि इंसान थे हम, आज जिन्हें नजरें मिलाने में तकलीफ़ होती है, कुछ समय पहले उनकी जान थे हम। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और राघव जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि सुपर सॉन्ग क्या बात है अहमद भाई का। और यहाँ पे मैसेज और उनकी तरफ से यहाँ पे चाय की प्याली पहुंच गई है। तो चाय के साथ मौसम बढ़िया बना हुआ है और पकौड़ा भी खाना अच्छा लगेगा। यहाँ मौसम तो है खाने लायक लेकिन खा नहीं सकते। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास जो इनकी तरफ से गाने की बोल पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि सावन के झूलों ने मुझको झुलाया। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, एंजॉय करते हैं। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और इसी गाने के साथ हमारी मुलाकात अब दोपहर न्यूज़ के बाद होगी आप सभी से। और यहाँ पे जिसके मैसेज पहुँचे हुए हैं और जिनके गाने की फरमाइश आई हुई है, सारे दोपहर न्यूज़ के बाद प्ले होंगे, तो इन्जॉय कीजिए अभी इस गाने को।

0: With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
4: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
5: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957

0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुग ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वी सुब्बू रेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पे एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेटा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneaiar.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रूपये की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र

0: वस्त्र और अंग वस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
1: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है, आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गाँव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
4: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
12: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि आप हमसे इस शो में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत किया जाए, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:50 हो रहे हैं, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कहते हैं हर बार जुबा से हम इशारा नहीं करते, आसमान पर चलने वाले जमी से गुजारा नहीं करते, हर हालात बदलने की हिम्मत है हमें, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। भारती जी नमस्कार, और दिलीप राम दिल्ली से तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ लिख रहे हैं कि हुकूमत वो ही करता है जिसका दिल पर राज हो, वरना यूँ तो गली में मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। और लिख रहे हैं कि राज तो हमारा हर जगह पे है, पसंद करने वालों के दिल में और ना पसंद करने वालों के दिल में। जिसको ये राज समझ आ गया वही हमसे निभा पाता है, धमकियों से हम नहीं डरते, दिल मोहब्बत से मान जाता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है दिलीप राम जी की तरफ से। और इसी के साथ हमारे पास जो कि यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं राम राम भारती जी, और राज गारमेंट पगवारा पंजाब से, और मुझे गाना सुनना है प्रेम गीत मूवी का, और तुम गाने के बोल पहुँचे हुए हैं, और गाना डेडिकेट अपनी वाइफ रिंकी सोनी को करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं आशुतोष मिश्रा, रोशन मिश्रा, मंजू मिश्रा, और हम लोग मीरगंज जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, और मुझे गाना सुनना है, और गाना सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं रखिया बंधाला भैया सावन आइल जिया तो लाख बरिस, और मूवी है लागी नहीं छूटे रामा। तो चलिए बहुत ही प्यारी सी सॉन्ग की फरमाइश है, तो बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना आशुतोष जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा राखी का सॉन्ग, और उन्हीं की तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू मैम, आप भी इंजॉय कीजिए और गाना बजाने के लिए धन्यवाद। तो हमने भी आपके गाने को बहुत ही इंजॉय किया, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम जी, आप मेरा फरमाइश अभी तक पूरा नहीं किए हैं, और क्योंकि मैं 12 बजे से अभी तक कार्यक्रम सुन रहा हूँ और मेरे वाला सॉन्ग बजाई नहीं जा रही है, और बसंत कुमार ठाकुर नयापुरा विरई जिला बालोद से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं आपको बता दूं कि आपके एक गाने की बारी शुक्रवार को है, तो आप अपना गाना शुक्रवार को ही सुन सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, पवन शाह ग्राम मड़ई खगड़िया बिहार से फिर से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: बहुत बहुत
0: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मैं भी बिल्कुल ठीक।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: भोजपुरी सॉन्ग सुनना है।
0: जी, भोजपुरी में कौन सा सॉन्ग?
1: जीरा अगिनिया में घुट के मरी।
0: कौन सा?
1: जीरा अगिनिया में घुट के मरी। हीरोइन नंबर वन मूवी का सॉन्ग है।
0: हीरोइन नंबर वन। और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ, आप सुन लीजिएगा और रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर को।
0: और गाने के बोल एक बार और बता दीजिएगा क्या था।
1: दीरहा अगिनिया में घुट के मरी।

0: हीरोइन मूवी का, हीरोइन नंबर वन मूवी का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दे रहे हैं
1: जी, कर
0: ओके जी। चलिए रेडियो रिमझिम में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश जिला पूरा मुरादाबाद से और शमशाद अली आपके कार्यक्रम में पहली बार मैसेज कर रहा हूँ और आपसे जुड़कर बहुत खुशी हो रही है, और मुझे एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, भोजपुरी सॉन्ग है और लिख रहे हैं कि मुद्दत से दिल में ये अरमान जिंदा है, दौलत से हर इंसान जिंदा है, खुश नसीब है इस दुनिया में वो इंसान भारती जी जिसके मन जिसके माँ बाप जिंदा है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि खता हो गई तो फिर सजा सुना दो, दिल में इतना दर्द क्यों है वजह बता दो, देर हो गई याद करने में ज़रूर, लेकिन तुझको भुला देंगे ये ख्याल मिटा दो। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं फिर से धनेश कुमार मिश्रा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और यहाँ पे जो हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून सोनी मैम, हम भी जुड़ गए हैं और श्याम बहादुर देहरादून से, और हमें भी गाना सुनना है नीलकमल जी की आवाज़ में, और कोई सा भी दर्द भरा सॉन्ग सुना दीजिएगा नीलकमल जी का। और चलिए बिना देरी किए नीलकमल जी की आवाज़ में एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हैं उनके लिए दर्द भरा, एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग नील कमल जी की आवाज़ में, और लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार का हाल चाल बा भारती जी, और लिख रहे हैं गाना बज जाई का और विशाल पांडे हम हूँ बानी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो, हाय, नमस्कार भारती जी, मेरा नाम सत्यनारायण पटेल है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मुझे भी एक गाना सुनना है। गाने के बोल हैं, संदेश आते हैं, और मेरे सारे मित्र भी ये गाना सुनना चाहते हैं।
0: तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, और गाने के बोल हैं, संदेश आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा, पीएम

0: दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि क्या बात है, कार्यक्रम की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है भारती मैम, तो गाना सभी अच्छे अच्छे फरमाइश आ रही हैं, तो शो अच्छे से चल ही रहा है और गाने काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत आ रहे हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं राधे राधे जी, कोई भी गीत शामिल कर लेना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। और गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से, और किशोर सबलिनिया, सावित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया और बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैम टाइम मिल गया तो मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और यहाँ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि विशाल पांडे और मुझे भी गाना सुनना है। और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है, और गाने की बोल है, तुमने जो ऐसे जान दिया हम किसी को जान बुलाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रमझिम 90.4 FM में।

0: लोगों ने सुना विशाल पांडे जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और उनके तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनना है माँ तुझे सलाम और टाइटल सॉन्ग संतोष कुमार पटेल सूरत से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है यार आपका भी और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम प्रणाम, हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम से, हमको भी गाना सुनना है और गाने की बोल है दिल देतानी लेला दिलदार संवरिया हो। और लिख रहे हैं प्लीज़ मैम अपने कार्यक्रम में मेरी भी फरमाइश शामिल कर लीजिएगा। और लिख रहे हैं मेरा गाना आज बजा दीजिएगा मैम, आज मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं न्यू मुंबई वासी में बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज। और इसी के साथ इनकी तरफ से वॉइस मैसेज भी पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: नमस्ते, प्रणाम, आप कैसी हैं? और रेडियो रिमझिम से जुड़े सभी दोस्तों को प्रणाम नमस्ते, हम दिनेश विश्वकर्मा। मेरा फरमाइश है, मैं व्हाट्सएप के जरिए मैं गाने का बोल लिख कर भेज दिया हूँ, प्लीज़ आप अपने कार्यक्रम में मेरा गाना शामिल कीजिए।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग भाई। और भारती दी, आपको गाना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा। तो गाना तो बहुत ही खूबसूरत था, और गाने के तो बोल हैं दिल लेला दिलबर संवरिया। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ उन्हीं की तरफ से मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, भारती मैम आपका आपको और रेडियो रिमझिम के पूरे परिवार को दिल से शुक्रिया हमारा गाना रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। गाना सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, हम दिनेश विश्वकर्मा न्यू मुंबई से। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको गाना अच्छा लगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनना है और गाने के बोल हैं माँ तुझे सलाम, और टाइटल सॉन्ग सुना दीजिएगा, और संतोष कुमार पटेल। तो चलिए बिना देरी किए इनका गाना प्ले करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। तो एंजॉय कीजिए गाने को।

तो अभी संतोष कुमार पटेल जी की तरफ से काफ़ी शानदार गाने की फरमाइश आई हुई थी और गाने के बोल थे माँ तुझे सलाम। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ और भी काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं कि हम आज़ाद अंसारी ग्राम सुखदेव पट्टी से, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी गाना सुनना है। और जहाँ लिख रहे हैं गाने के बोल हैं, जहाँ डाल डाल पे सोनी की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश मेरा। और रहीम आलम नरकटिया बाजार बिहार मोतिहारी जिला से, योगेश कुमार फैशन टेलर नरकटिया बाजार से, और लाल बाबू कुमार पटरा टोली से, और साजद आलम बेंगलोर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं विकास कुमार हरपुर गोपालगंज से, और सॉन्ग है हम तुहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बिता दिले बानी, और प्लीज़ मैम मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश हुई है, चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि आप हमसे इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे, और हमारे पास टाइम भी बहुत ही कम है। और लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, प्रमोद कुमार साहू, और मुझे भी गाना सुनना है और गाने की बोल है, तो मैं तो आज आपको गाना नहीं सुना सकती, आपके गाने की फरमाइश कल मैं पूरी कर सकती हूँ, क्योंकि कल आपकी गाने की एक सप्ताह पूरी हो जाएगी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ जो लिख रहा है कि प्लीज़ मेरा नाम बताइए, प्लीज़ मैसेज के साथ नाम बताइए। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं आर्यन दिया गांव से, और हेलो, मैम बहुत अच्छा लगा सॉन्ग, और सॉन्ग हमारा इन्हें भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहा है कि हैंड पंप से पानी भरते हुए जो मोहब्बत हुई थी, प्रेमिका के बाप ने बोरिंग करवा के जुदा कर दिया, और आज बिजली कटौती ने बिछड़ों को फिर से मिला दिया। भारती जी नमस्कार, और आज सभी गाने सुपर से ऊपर रही, अब आपको जाने की बारी आ गई है, और आपको बाय बाय दोस्त, दोस्तों के बीच रात में मिलेंगे, दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपको सारे गाने अच्छे लगे और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर ने सारे अच्छे गाने की आज फरमाइश किए थे। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, मैं प्रेम मदेसिया पढ़ रौनक कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। और भारती जी नमस्कार जी, कैसी हैं? गुड आफ्टरनून जी, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और भारती जी प्लीज़ हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से शमशाद अली, और आपका कार्यक्रम पहली बार जुड़ा हूँ। और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है। लिख रहे हैं कि गाने की बोल है सनम भूल ना जइयो ससुरा में तू जाके। और लिख रहे हैं कि आप मेरे लिए गाना बजा दो, और नंबर जो जिस पे गाना सुन सकते हैं वो बता दो। और लिख रहे हैं कि मुझे जवाब दीजिए कि इस पे फरमाइश कर सकते हैं क्या। तो जी बिल्कुल, आप फरमाइश कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इनकी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि गाने के साथ थोड़ा गुनगुना लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और लिख रहे हैं कि भारती जी ऐसे ही होता है क्या, द्वार पे बुलाता, द्वार पे बुलाते हो। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं आर्यन और दनियालपुर गांव से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं मुझे भी एक गाना सुनना है, और गाने की जो लिंक यहाँ पहुँची हुई है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेज भी पहुँच रहे हैं, और यहाँ धनेश जी की तरफ से एक चुटकुला पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं सोने में आई भारी गिरावट, पहले लोग 10 घंटे सोते थे पर अब व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के कारण लोग 4 घंटे ही सो पाते हैं। और बहुत ही लाजवाब लाइन है। और इसी के साथ चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले किया जाए, और एंजॉय किया रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जाते जाते सुना दीजिए। और लिख रहे हैं, चांद कहूँ तो छुप जाओगे, दोस्त कहूँ तो छूट जाओगे, गुलाब कहूँ तो बिखर जाओगे, ख्वाब कहूँ तो टूट जाओगे, और चलो आपका नाम जिंदगी रख दूँ मौत से पहले तो नहीं छोड़ पाओगे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और मैसेज करने वाले हैं मुकेंद्र कुमार जी। और यहाँ सभी की तरफ से बाय बाय का मैसेज पहुँच गया है। इसी के साथ श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और लेते हैं आज आप सभी से विदा। और सुनते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग खेसारी लाल की आवाज़ में। सॉरी पवन

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87-894-18744।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के,
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
13: मैं बनूंगा।
14: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
14: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
12: ऑनली ऑन

0: कूला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
5: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रिक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
4: रेडियो रिमझिम।
3: सुनो दिल से।

0: डीजे भवानी आसुजा
1: डीजे वंसी। अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-6551 या

0: मेरी बात तो सुनो।
1: मैं कुछ सुनना, हमारी मांगे हुई।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
12: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.

0: मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया हेलो माय चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
1: जी नमस्ते। हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते,
1: मनोरमा जी बोल रहे हैं ना आप?
2: जी जी
1: जी, गोपाल वेलकम ग्राम ककवासा जिला गुना।
2: जी कैसे हैं गोपाल जी?
1: बढ़िया हैं। और क्या है, स्थिति कल और आज पर थोड़ी धूप सी निकल रही।
2: धूप तो बहुत है।
1: और क्या आपका कार्यक्रम सुनते हैं? और बिहार का मौसम कैसा है उधर का?
2: उधर का मौसम धूप निकला हुआ है
1: जी। और क्या, और आपके कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हम सुनते रहते हैं हम तो आपके कार्यक्रम। जी गाना सुनना है?
2: बता दीजिए।
1: सुनना है माँ फिल्म का, सुनना है बरसात में जब आएगा सावन का महीना, ये वाला।
2: वैसे आपका नाम?
1: और का फिल्म पिक्चर का नाम?
2: जी
1: माँ फिल्म है वो जीतेंदर की।
2: ओके, वैसे आपका नाम?
1: गोपाल ओझा, ककवासा गाँव।
2: और ये गाना जो है आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: हमारे दोस्त है सुनील साहू जी है मधुसूदन गढ़ से।
2: तो आप ये रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं?
1: मोबाइल ऐप से सुनते हैं।
2: मतलब कितने समय से सुनते आ गए?
1: तो गए 4-5 महीने हुए।
2: अच्छा, तो कैसे पता चला आपको रेडियो रिमझिम के बारे में?
1: जी मान लीजिए उसमें ऐप डाउनलोड किया है तो उसमें निकल आया तो हमने सुन लिया, चलाते हैं मुझे।
2: अच्छा, कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम?
1: बढ़िया लगता है रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम, तो हमारे दोस्त भी सुनते हैं, सभी सुनते हैं कार्यक्रम।
2: ठीक है गोपाल जी, तो गाना क्या करते हैं?
1: कर दीजिए प्ले।
2: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: तब तक आएगा जी गाना?
2: पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे।
1: ठीक है।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग,
0: विकास कुमार हिमतापुर से।
1: जी जी, कैसे हैं विकास जी?
0: बढ़िया है जी। हमको से कि आप नाराज हो गए, मेरा फोन नहीं उठा रहे।
1: नहीं नहीं भला, मैं क्यों नाराज होंगी?
0: मैं यही सोचा कि नाराज हो गए होंगे मैडम, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे।
1: नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है।
0: और बताइए मैडम, क्या हाल चाल है?
1: जी सब बढ़िया है, अपना बताइए।
0: बढ़िया है, आप कैसे हैं अभी?
1: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
0: धूप निकल रहा है कि बारिश और इसका मौसम है गोपालगंज में?
1: धूप तो निकला हुआ
0: है। चलिए बढ़िया है, इधर भी बहुत धूप तेज निकला है।
1: अच्छा,
0: बहुत जल्दी आना है गोपालगंज में।
1: अच्छा जी, तो अभी आप कहाँ
0: हैं? अभी तो हम दिल्ली में हैं।
1: अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप?
0: गाजियाबाद में, यहाँ मशीन वशीन चलाते हैं। राइस मिल का रोला बनता है, राइस मिल का रबर रोल। वो जो चावल नहीं बनता है, चावल
1: जी जी,
0: वो राइस मिल का जो राइस मिल में लगता है।
1: अच्छा,
0: उसी में मेरा कंपनी में वही तैयार होता है राइस मिल का।
1: अच्छा,
0: मेरे बगल में एक कंपनी था वो जिसमें से कार्टून आता था। कल परसों इतना दर्दनाक घटना हो गया मैडम, क्या बताए, उसमें आग लग गया।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: गत्ता वाली कंपनी थी, उसमें आग लग गया। उसमें दो तीन लेडीजे हवाई हो गई, एकदम जल गई। बहुत हम लोग का वो सला लग रहा था। उसमें से हम लोग का कार्टून वार्टून आता है ना पेको करने के लिए माल, हम लोग गए थे देखने के लिए एक घंटा काम बंद करके। इसी टाइम लगा था 10-11 बजे का, तो बुझाने वाला गाड़ी आया था बाहर से, बुझा बुझा करके चला गया। उन लोग का हॉस्पिटल ले जा करके भर्ती करा दिया। तो अभी सही है, अभी वो लेडीज जो सही है।
1: अच्छा चलिए बढ़िया, भगवान करे कि सही है।
0: आज तो मौसम बहुत खराब है मैडम, आज बहुत ज्यादा गर्मी है।
1: हाँ, बहुत गर्मी है
0: आज तो। हमारे ख्याल से 40-42 का आप है, 40-38-37-38 का आप
1: उतना ही है।
0: हाँ,
1: क्या ही कर सकते हैं।
0: हाँ वही तो।
1: चलिए कोई ना, आप अपनी फरमाइश बता दीजिए।
0: मेरा आज का फरमाइश है वो देशभक्ति का।
1: कौन सा?
0: मेरे वतन के लोगो जरा याद करो कुर्बानी, यही वाली।
1: ओके, और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: सबसे पहले आप जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं, सब श्रोताओं को, मेरे हिमतापुर में जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको, अपने बच्चे के लिए।
1: ओके,
0: दो लड़की है।
1: जी जी,
0: मेरे दो लड़की है, एक खुशी है, एक अमिता है, एक मेरे लड़का सूर्या कुमार गुप्ता। ये तीनों अमदे को हम सुनवाने चाहते हैं।
1: ठीक है विकास जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है, ओके
1: जी,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 6800-34-48-652 पे।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 11:00 से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग,
0: कैसे हैं मैम?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ मैम।
2: बढ़िया।
0: आज सुना दीजिए, 1976 माई की संतान फिल्म जितेंद्र और रेखा के गीत सुना दीजिए। गीत के बोल रहे हैं
1: जी, बस
0: जी गीत के बोल रहे हैं, पप्पो की मम्मी तो बड़ी निकम्मी, तेरे जान को बच्चे रोते हैं तो खेले रम्मी। हेलो
1: जी, जी एक बार और बता दीजिए आवाज कट
0: गई। गीत के बोल रहे हैं, पप्पो की मम्मी तो बड़ी निकम्मी, तेरे जान को बच्चे रोते हैं तो खेले रम्मी।
1: ओके, वैसे आपका नाम?
0: मेरा नाम है सुधीर कुलकर्णी, जुम्बा जिला देवघर, झारखण्ड से।
1: कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। और गीत पूरा बजाइएगा मैम, बीच में कभी काट देते हैं तो गीत का किरकिरा हो जाता है, मजा ही खत्म हो जाता है।
1: जी जी, वो लंबा हो जाता है ना, तो
0: जी जी थोड़ा पूरा बजाने का गीत का कोशिश कीजिएगा।
1: जी पूरा कोशिश।
0: और डेडिकेट रहेगा सबसे पहले हम आपको, रेडियो रिम के जितने लिसनर हैं, हमारे कुछ फ्रेंड हैं, रोहित कुमार सिंह है, राजीव रोशन है, मदन कौल है, प्रभु कौल है, राजकुमारी कमली कौल, जुगल कौल, इन सब सारे साथ में डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम अभी धूप दे रही है मैम, कड़ाके की धूप दे रही है, जो खेत रोपे हैं वो सब सूख रही है, पंप से या मोटर से सिंचाई करना पड़ रहा है, इस साल खेती की स्थिति बहुत दयनीय है झारखण्ड में।
1: इधर भी वही हाल है।
0: जी जी
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी मैम प्ले कीजिए।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

पप्पू की।

0: कहां से ले दूं।
1: नंगे पांव मेरे कोई चोट नहीं है, इधर तो देखो दादी मेरे तट नहीं।

0: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: कैसी है मैम?
1: जी बढ़िया हूँ, अपना बताइए।
0: हम भी ठीक है।
1: सब क्या हो रहा है?
0: अभी तो आपके पास कॉल लगा रही थी।
1: अच्छा जी, तब खाना वाना हो गया आपका?
0: हाँ हो गया।
1: जी अभी
0: तो मौसम कैसा है?
1: मौसम धूप तो निकला हुआ है बहुत तेज।
0: आज बहुत अच्छा हुआ है।
1: जी
0: तो ठीक है, और सब बताइए।
1: जी सब बढ़िया है। वैसे आपका नाम?
0: मनीषा कुमारी तरह सुंदर से।
1: मनीषा जी आप बताइए, उधर का मौसम कैसा है?
0: इधर भी बहुत तेज धूप हुआ है। बारिश भी अच्छा था, बारिश हो रहा था, अब धूप हो रहा है इतना तेज।
1: खाया कर सकते हो लोग, लग रहा है जैसे कि सावन का महीना। तो फिर आज
0: सुना दीजिए, श्री भक्ति सॉन्ग सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: ओके, वैसे ये सॉन्ग आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: जी मैम।

0: रेडियो से।
1: रेडियो तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी की बात है।
0: मोबाइल नहीं है, छोटा वाला मोबाइल है।
1: अच्छा तो मतलब आप छोटा वाला मोबाइल से सुनती हैं?
0: नहीं छोटा वाला मोबाइल है तो इस बार नहीं सुनाई देगा। हाँ रेडियो से सुनती हूँ, रेडियो खराब हो जाता है तो बनता है फिर से सुनते हैं।
1: अच्छा कोई बात नहीं, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैम।
1: जी सुनते रहे।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बाय मैम।
1: बाय। So

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ 8009294911। तो चल

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बढ़िया वाणी। आपन बताए लोगों का कैसा वाणी?
1: कैसे बन रही
0: है? सब का होता
1: है, बहुत ज्यादा घाम बैठो खेला कर।
0: घाम तो बहुत
1: पेड़ के नीचे नाश्ता बंद हो गयी।
0: हाँ
1: भाई, कई बैठनी
0: है। बढ़िया बात है, वैसे आपका नाम बता दी।
1: नाम तो राकेश भारती बक्सर
0: जी।
1: बक्सर से राकेश भारती।
0: आवाज सही नहीं किया, और एक बार फिर बता दी।
1: बक्सर से राकेश भारती।
0: अच्छा, बता दी कौन गाना सुनेगा?
1: भारती जी बोल रहे हैं। सुनी जी?
0: नहीं, मैं मनोरमा।
1: अच्छा अच्छा, मैं आपका दूसरा आपके बाद दूसरा बात हो रहा है
0: जी।
1: दूसरा बार आपसे बात हो गया
0: जी। जी, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: गाना था पवन सिंह का सनेहिया लगावल बहुत।
0: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: गाना तो गा नहीं सकते है, इसलिए की आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है।
0: कोई बात नहीं है, पर ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: पूरा फैमिली है, हम है और यहाँ पे दस लोग भी है, दलदा जी, पप्पू जी सब बैठे हैं।
0: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: रेडियो 90.4 FM कॉल करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो इंजीनियर
0: जी। गाना सुनना चाहता हूँ
1: जी। गाना सुनवाएंगे। आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: कमलेश कुमार बोलवा टोला मनियारा फार्म से।
1: अच्छा,
0: गाना सुना है बुलो राजा के बाबा धाम का गाना?
1: जी बता दीजिए।
0: बुलो राजा गाना बाबा धाम के नाम का?
1: कौन सा आवाज कट के आ रही है?
0: बाबा धाम के गाना,
1: गाने के बोल
0: देवघर बाबा के। बुलो राजा कौन गाना बजा रही? नाव का गाना बजाई ना।
1: अच्छा ठीक है।
0: बाबा धाम का गाना बोलूंगा ना।
1: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में?
0: भोजपुरी में बजाइए।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है
0: जी?
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं
0: जी।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
3: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
11: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: Hello. हेलो
13: बहुत स्वागत है फिर रंजीम 90.4 एफएम में।
12: अस्सलाम वालेकुम मैडम जी।
13: वालेकुम अस्सलाम।
12: और क्या हाल है
13: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
12: अपना भी बढ़िया है। रहमत अंसारी पिंपरिया से बोल रहे हैं।
13: जी जी, कहाँ से?
12: पिंपरिया से।
13: ये कहाँ पड़ता है?
12: बस आपके जलालपुर के बगल में।
13: अच्छा,
12: चायपुर जलालपुर, उसके बाद पिंपरिया पड़ जाता है। तो मौसम कैसा हुआ मैडम?
13: इधर का मौसम धूप तो निकला हुआ है।
12: धूप निकला हुआ है तो मैं कश्मीर में हूँ, ज्वेल का काम करता हूँ। कश्मीर में हूँ
13: जी। तो कश्मीर में तो ठंडा पड़ रहा होगा?
12: जी हाँ, यहाँ तो ठंडा पड़ रहा है। इस टाइम में आदमी कम्बल ओढ़ के सोता है। हमको एक गाना सुनना था।
13: बता दीजिए।
12: गाने का बोल है, राजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल दे करार है। और ये गाना मैं रेडियो सुनने वाली सोता है, आप सबको सुनवाना चाहता हूँ।
13: तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: इसलिए दिल से धन्यवाद है भारती जी, बहुत बहुत नहीं ये कैसे हैं
1: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैं रामविलास अद्वा बोल रहा हूँ, बीतुलबगहा पूर्वी चंपारण।
1: कहाँ से?
0: बीतुलबगहा पूर्वी चंपारण।
1: अच्छा,
0: और मौसम कैसा है उधर?
1: मौसम तो अभी धूप निकला हुआ है
0: जी, हमारे यहाँ तो बहुत अधिक गर्मी है, गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। आप भी इंद्र भगवान से प्रार्थना कीजिए ताकि बारिश हो जाए।
1: जी जी बिल्कुल, हमारे तरफ भी बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है, गर्मी भी बहुत है।
0: मौसम में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया, बहुत अधिक गर्मी पड़ गई जी। तो आज गाना सुना दी गम का नाम है गिरफ्तार, और गाने का बोले धूप में निकला ना करो रूप यानी कहीं गोरा रंग काला ना पड़ जाए।
1: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं
0: जी? सबसे पहले तो भारती जी आपको सुनाना चाहते, दूसरे हो गए संजय साजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, कंसराज यादव जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगला प्रसाद कुशवाहा जी, नंदन प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू कुमार, राजीव कुमार, आधार कुमार, बौद्ध प्रसाद कुशवाहा जी, जतुंदा प्रसाद कुशवाहा जी, नरेश स्वामी जी, और भोपाल में की जगह तंत्रा कुशवाहा जी, काजल जी, कुंडिया जी, नेहा जी, मुकान जी, गुप्ता गुप्ता जी, मोहन जी, नवीन सिंह जी, सिकंदर जश्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी भारती जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताबंधु को सुनना चाहता हूँ।
1: ओके, तो आप गाना प्ले करते हैं?
0: धन्यवाद
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494। जी हाँ, 80029494। तो चलिए

0: हेलो,
1: हेलो, सलाम, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
2: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
1: जी मैम, कैसे हैं?
0: जी मैं बढ़िया हूँ, अपना बताइए।
1: जी हम भी अच्छा है मैम। दो दो नंबर से लगा रहे थे कि अब लग जाए, 12 मिनट तो लगाए तो अब लगा। राइट, 11 बजे से लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा था, बिजी बिजी आ रहा था।
0: टाइम से सब कोई कॉल करने लग जाता है,
1: इसलिए बहुत मेहनत करके लगता है इसमें कॉल।
0: वो तो है।
1: चलिए, आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो गई। आपका मतलब आप चलाती हैं तो अच्छा लगता है, आप ही चलाइए ये वाला शो।
0: अच्छा जी।
1: अब आपका अंदाज मतलब पुराना जैसा हो गया है।
0: अच्छा।
1: भारती मैम को उस शो में रखिए और आप ही शो में रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी
1: मैम, तो अच्छा लगेगा, सभी लोगों को उम्मीद करते हैं।
0: तो ऐसे आपका नाम?
1: जी हम तो बहुत पुराने हैं, मतलब रोजाली बोल रहे हैं गोपालगंज से। दो दो कॉल किए हैं लेकिन एक ही बजा है मैम।
0: बहुत सारे कॉल अभी बाकी हैं तो कुछ आज बजेंगे।
1: जी मैम, वो मंडे वाला बाकी है अभी।
0: मंडे वाला भारती की रिकॉर्डिंग?
1: हाँ, भारती मैम का बाकी है।
0: जी जी, अभी कुछ बाकी है।
1: हमको मंडे का बात हुआ था लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है फरमाइश।
0: जी जी, तो वही ना, आज मतलब आज प्ले होगा, अभी बहुत सारे कॉल बाकी हैं।
1: हाँ मैम, तो आज मुझे वादा मूवी से गाना सुनना है। गाने का बोल बताए?
0: जी बिल्कुल।
1: गाने का बोल है, मैं दीवाना दीवाना ऐसे कुछ गाना है।
0: जी,
1: उदित नारायण का आवाज है। आप सभी के साथ ये गाना सुनना है, आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा गाना है।
0: और ये गाना डेडिकेट भी है?
1: डेडिकेट है सभी सुनने वालों को, हमारे तरफ से जितने भी दोस्त हैं और आपको, भारती मैम को।
0: ओके
1: जी मैम, तो कब बजेगा ये वाला?
0: ये गाना आपका कल बजेगा, मतलब
1: कल। आपका तो आज शो नहीं चलेगा?
0: नहीं, अभी तो बहुत सारे कॉल बाकी हैं तो अभी भारती जी वाला चलेगा।
1: चलिए, आपका शो का बहुत मतलब इंतजार रहेगा हमको।
0: जी जी बिल्कुल, लेकिन कोशिश रहेगा कि आज ही बज जाए।
1: जी मैम, और एडवांस में धन्यवाद।
0: तो रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बाय मैम।
0: बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।
0: और आपने सुनाई उसको?
1: जी सब बढ़िया है। बताइए आप कैसी हैं?
0: अच्छा,
1: क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, खाना पीना हो गया।
1: जी जी हो गया। और आपका?
0: हाँ हो गया।
1: ये बढ़िया। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: बोल बम का गाना सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: तो खेसारी के।
1: कोई भी?
0: हाँ कोई भी, बोल बम के।
1: अच्छा,
0: कब तक ये बजेगा मैम?
1: ये गाना कल बजेगा, मतलब कोशिश रहेगा कि आज ही बजे। अगर आज नहीं हुआ तो कल तो पक्का बजेगा।
0: ठीक है। और सब सुनाइए।
1: जी सब बढ़िया। आपके घर परिवार में सब कोई बढ़िया?
0: सब कोई बात
1: है। चलिए अच्छे की बात है। तो आप रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनते हैं?
0: हाँ मोबाइल के जरिए, मोबाइल सुनते दे रही हूँ। बहुत दिन से मैं सुनती हूँ, जब शादी नहीं हुआ तब से मैं रेडियो रिंगटोन सुनती हूँ।
1: अच्छा जी, कैसा लगा आपको रेडियो रिंगटोन का?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा अच्छा, कौन सा कार्यक्रम लगता है आपको इसमें?
0: तो सब कार्यक्रम अच्छा लगता है, सब हम सुबह से लेके रात तक।
1: जी
0: जी
1: बात है। ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: हाँ, सबसे पहले आपको। कितना रेट सबको? मेरे बच्चा लो है, तीनों मेरे हस्बैंड।
1: ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494। जी हाँ, 80029494। तो चलिए बढ़ते हैं।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
1: जी सर, मास्टर बोल रहे हैं से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: हम लोग बढ़िया से, अच्छे से हैं। आप लोग कैसे हैं बताइए?
0: जी जी, हम लोग भी बढ़िया हैं। लोग
1: बढ़िया हैं, रेडियो रिंकी परिवार सब लोग अच्छे से हैं।
0: जी जी, सब कोई बढ़िया।
1: आपकी तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है,
1: बड़ी धूप कड़ा निकल रहा है।
0: जी धूप तो है।
1: ये तो पहला कॉल लगा हुआ है।
0: जी जी, पहला ही कॉल है।
1: जी सर, गाना सुना दीजिए, गाना सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए,
1: आग और 16 मूवी का। आज सुबह जब मैं जगा, आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरी कसम ऐसा लगा, तूने मुझे याद किया है। ये वाला गाना मैडम।
0: ओके, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: जी, सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रेंजर सुनने वाले श्रोताओं है सभी को, और हम लोग थनाओ से रोशन ट्रेलर में सुनेंगे सभी लोग।
0: तो ये आप रेडियो रिंकी को कैसे सुनते हैं?
1: मोबाइल से सुनते हैं,
0: मोबाइल ऐप के जरिए।
1: ऐप के जरिए? हाँ, और रेडियो हम लोग का थोड़ी बजेगा, पकड़ भी नहीं करेगा रेडियो में।
0: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम धनाव थाना नासिकगंज, जिला रोहतास, बिहार से, जिला रोहतास हम लोग हैं।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
1: जी
0: जी, रेडियो रिंकी 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: जी इसलिए भी तो धन्यवाद, मैं संजय कुमार शाह ग्राम बोढ़ा मंगिया पूर्वी चंपारण बिहार से।
1: जी कैसे हैं संजय जी?
0: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ा गर्मी तो बहुत ज्यादा है, गर्मी थोड़ा नहीं कहा जाता है,
1: गर्मी तो बहुत।
0: जी जी बाकी हाल खबर ठीक है, बढ़िया है। और कहीं ना रूम में बैठे हैं, बता रहे हैं सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब घर पर जा रहे हैं, सब ठीक ठाक है। और सब उधर के मौसम बताइए, उधर इसे गर्मी क्या है, बरसात हुआ है कि नहीं, अगर होता है कि नहीं बरसात?
1: बहुत है, धूप भी निकला हुआ।
0: जी जी हमारे यहाँ 50 रोज पहले ही से बारिश भी रुका है, 4 रोज पहले बारिश हुआ था लेकिन 4 रोज से गर्मी चल रहा है। गर्मी तो उस समय था लेकिन फिर भी कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा पानी गिरला पर थोड़ा राहत हुआ है, थोड़ा राहत रहा लेकिन फिर भी पानी रुका रुका फिर भी गर्मी ज्यादा हो गया। खैर प्रकृति के नियम है, चलता रहता है। आज गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: तुझे प्यार दे देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, मेरा दिल तो है। इस टाइम सुना दीजिए।
1: आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
0: जी जी चलिए आप कहते हैं तो हम लोग थोड़ा गुनगुनाते हैं लेकिन हम लोग गाना नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी गुनगुना लेते हैं ताकि ट्रैक मिल जाए बढ़िया से, आप लोग उतने में सरल हो। सबसे पहले कुछ मित्र की याद करना चाहता है, तो पहले आपको आप

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97907065।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: जी। गाना सुनना चाह रहा हूँ
1: जी। गाना सुनवाएंगे, आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: कमलेश कुमार बलुआ टोला मनियारा फार्म से।
1: अच्छा,
0: गाना सुनना है बूढ़े राजा के बाबा धाम का गाना।
1: जी बता दीजिए।
0: बूढ़े राजा गाना बाबा धाम का नाम का
1: कौन सा, आवाज कट के आ रही है।
0: बाबा धाम के गाना,
1: गाने के बोल
0: देवघर बाबा के। बूढ़े राजा कौन गाना बजाई, नाव का गाना बजाई ना।
1: अच्छा ठीक है, मतलब भोजपुरी में या फिर हिंदी में।
0: बाबा धाम गाना बोलूंगा ना।
1: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में।
0: भोजपुरी में बजाइए।
1: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है
0: जी।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं
0: जी।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी थैंक यू, हम कैसे हैं?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: कोई अच्छी की बात है। वैसे आपका नाम?
0: नेहा।
1: कहाँ से बोल रही है नेहा जी?
0: काफा मुसाफिर।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है।
1: क्या हो रहा था अभी?
0: अभी आराम करेंगे।
1: खाना वाना हो गया आपका?
0: जी।
1: ये बढ़िया, तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: सावन मजा न देगी गाना,
1: चूड़ी मजा न देगी, कंगन न मजा देगी।
0: जी
1: ओके। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: आपको और जितने भी रेडियो रिंगटोन सुनती हूं सभी को।
1: ओके, वैसे नेहा जी आप ये रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनती हैं?
0: जी ऐप से सुनती हूं।
1: गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड की हैं?
0: जी।
1: ये बढ़िया, मतलब कब से सुनते आ गई आप ये कार्यक्रम?
0: 2000।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगटोन का कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: मतलब सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है रेडियो
0: रिंगटोन? और किस्मत फरमाइश।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। तो नेहा जी आपका गाना प्ले करते हैं। जी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: मैं बोल रहा हूँ हमारी प्रसाद
0: जी। जी, क्या हाल चाल बराबर?
1: हाल चाल तो ये भाई, धूप का लोभ हो रहे हैं, आयु भर अब यहाँ दही जोर के आगे हो जाए।
0: हाँ, धूप तो बहुत हुआ।
1: जाना सुने बा टिकट दोपहरी में गोया बाजरेला रा में गोया बाजरेला तनी हमके ले लो गोदिया उठाए मोरे मितवा। सुनाई रहो?
0: जी जी, एक बार गा के बता सको तनी।
1: टिकट दोपहरी में गोया बाजरेला रा में गोया बाजरेला तनी हमके ले लो गोदिया उठाए मोरे मितवा।
0: और ये गाना रुआ के सुनावे के विचार तनी?
1: सब कुछ सुने हम रउआ, रेडियो जितना लोग सुनता सब कुछ सुने। धना वाला भाई बड़ा उ सुनियन गाई पोले बड़ा याद
0: रेडियो
1: से
0: खाना
1: ना हो गए? खाना 8-9 बजे हो जाएगा।
0: ठीक बात कराओ, गाना प्ले करो तनी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो
0: जी। गाना सुनना चाहता हूँ
1: जी। गाना सुनाएंगे, आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: कमलेश कुमार बलुआ टोला मनियारा फार्म से।
1: अच्छा,
0: गाना सुना है बुलो राजा के बाबा धाम का गाना?
1: जी बता दीजिए।
0: बुलो राजा गाना बाबा धाम के नाम का?
1: कौन सा आवाज कट के आ रही है?
0: बाबा धाम के गाना,
1: गाने के बोल
0: देवघर बाबा के। बुलो राजा कौन गाना बजाई? नाव का गाना बजाई ना।
1: अच्छा ठीक है,
0: बाबा धाम गाना बोलूंगा ना।
1: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में?
0: भोजपुरी में बजाई।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
0: जी।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं?
0: जी
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का, तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974-34468 पे।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9451211001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
8: बोलबम, हर

श्रोता लोगी नमस्कार। रुवा सभे सुनत बानी अपना बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हम राउर दोस्त अफसर अली आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गई बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सराबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चली आज के ही कार्यक्रम के हमनी के आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ई बिरहा।

0: मैं गायिका उजाला यादव यूपी आजमगढ़ के धरती से।
1: वाह,
0: आप लोगों के सबसे पहले हम पांव छू के प्रणाम करत बानी जे भी ये हमार बिरहा सुनत बा। ए बिरहा में आप लोगों के एक चीज जरूर सुने के मिली कि जहां अहंकार तहां भगवान का वास कभी नहीं हो सकता। तो अहंकार क्या चीज है? अहंकार से हमेशा विनाश होता है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में बात बताने जा रही हूँ। बिरहा में चार लाइन भूमिका में भाव मास्टर साहब,

0: भैया जी हमार बिरहा सुनत बा, थोड़ा से ध्यान लगाई। भक्ति का फल बड़ा मीठा होला, लेकिन कोई भक्ति कयल ना चाहला। आपके पता बा भक्ति का मतलब मौसमी का रस होला। दारू पिए बा तुरंत फायदा कर दे।
1: यह सही हो।
0: ये तो तोहरे बदे सही हो, जो तोहरे मिजाज का वो करे बदे सही हो।
1: रोज बासी मुँह एक मारा ला।
0: अगर आप दारू पिएंगे तो आपको तुरंत वो असर कर देगा, लेकिन आप मौसमी का रस पिए तो एक महीना बाद वो आपके असर करी। वह तरीका भक्ति का बा। अगर भक्ति आप करी है तो भक्ति का फल तुरंत ना मिली, भक्ति का फल आज ना तो कल जरूर मिली। ए लिए मास्टर साहब बिरहा में हमारे एक लाइन कौवाली बड़े मजेदार लगल बा।

0: आप लोग जानीला कृष्ण भगवान और अर्जुन का बहुत गहरी मित्रता रहल। एक बार का बात बा, अर्जुन जी और कृष्ण भगवान निकल गए ना शहर पे, मतलब भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। तो कुछ दूरी तय कैलन, तो अर्जुन एक बार एगो बात कहलन भगवान कृष्ण से, कहले प्रभु जी आपको पता है कि नहीं, हमसे बड़ा भक्त प्रभु जी आपका इस धरती पर कोई दूसरा नहीं होगा। भगवान कृष्ण सोचे लगल मन मन मुस्कुरात हो, लगत बा कि अर्जुन के घमंड हो गया। अच्छा तो तनी से कुछ दूरी और गयलन, तबले अर्जुन के मन में एक सवाल और उठ गल, कहले प्रभु जी आपके आप तमाम भक्त देखले होबा, तमाम दानी देखले होबा, लेकिन हमारे बड़के भैया धर्मराज जैसन दानी ये धरती पर कोई न बा। काहे से धर्मराज एक बार यज्ञ करौले रहलन, इतना दान दक्षिणा ब्राह्मण लोगन के दहले कि जवन ब्राह्मण लोग ले गईलन, जवन ना ले जा पौले तवन छोड़ के चल गईलन। कहा इतना बड़े दानी हमारे बड़े भैया धर्मराज जी हैं।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ठक ठक।
6: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा तुम्हें एक

0: इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87894 18744। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: जब दानी की बात आ गई, अर्जुन बोले कि हमारे बड़े भैया धर्मराज जैसा कोई दानी नहीं है, तब भगवान कृष्ण बोल उठे, क्या है अर्जुन, क्या बात कर रहे हैं, आपके जैसा भक्त और धर्मराज के जैसा कोई दानी नहीं है, तब तो तुमको असलियत दिखाना पड़ेगा। अर्जुन जी कहना, हाँ प्रभु जी दिखा दे। बस कृष्ण भगवान एगो काम कैलन, करत कहूं मास्टर साहब तर्ज से बढ़िया भाव बा कि अर्जुन संहतिया के साम समझावल, अरे अर्जुन संहतिया के

रहिया भैया हो चाला मोरंग दरबार। भगवान कृष्ण एक माया रूपी शेर बनौल जौन एकदम बुढ़ा हालात में चाम झूलल बा दांत टूटल बा चले फिरे में बड़ा मुश्किल होत बा ओ शेरवा के आ अपने एक बुढ़ा स्वरूप बनौलन भिखारी के ब्राह्मण के और अर्जुन के भी ब्राह्मण बना दलन। अभी तीनों लोग भगवान कृष्ण बुढ़ा भिखारी अपने आप के बन गईलन और अर्जुन ब्राह्मण और जो माया रूपी शेर है उस शेर को लेकर के चल देते हैं कृष्ण भगवान राजा मोरंग के दरबार। जब राजा मोरंग के दरबार पर भगवान कृष्ण पहुंचते हैं तो वहां जा करके आवाज दरवाजे पर लगाते हैं भगवान कृष्ण भिक्षाम देई राजन। जब मोरंग ध्वज राजा अपने महल से बाहर आते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं महाराज की जय हो हमारा भाग्य ही खुल गया। आसन लगा देना कहें बैठिए देखिए मोरंग राजा का जो इतना अच्छा राजा थे कोई ऐसा दिन नहीं था कि वो अपने हाथ से बिना दान किए भोजन तक नहीं करते थे। किसी ब्राह्मण को अपने दरवाजे पर बुलाते थे उनका पैर धो करके बढ़िया से घर में आसन लगा करके उस ब्राह्मण को बिठा करके भोजन भी करवाते थे मुंह मांगा दान भी करते थे। जो ब्राह्मण खा लिया और जो कुछ भी इच्छा इरादा है घर द्वार खेत बारी सोना चांदी हाथी

घोड़ा जे जवन मांगे ओके राजा दान कर दे। लेकिन आज राजा बड़ा खुश हो, मोरन ध्वज राजा आज बड़ा ई खुश हुए कि बिना बलौले ब्राह्मण द्वारे पर आ गेलन। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेके अंदर गेल हुआ, बिस्तरा लगौले हुआ, पैर के धोवत हुआ, भोजन का तैयारी करत हुआ, तब ले कृष्ण भगवान भिखारी रूप में मोरन ध्वज से कहत कहुआ मास्टर गीत लगलवा।

भैया, अब साधु रूपी कृष्ण भगवान मोरन ध्वज राजा से कहलन कि पहले हम खाना ना खाई। तीन चार दिन का भुखायल हमार बहरे जोन शेर खड़ा बा, हमरे शेर के पहले भोजन करा दा तब हम भोजन करबे। तब बाबू मोरन ध्वज राजा ओ साधु से पूछे लगलन, का पूछे तुम्हें एक लाइन गीत लगल बा मास्टर साहब।

साधु बाबा कालन ऐसन बा, अगर भोजन ओ शेर के ना करेबा ना तो यही दुवरिये पे उस शेर हमार मर जाई, बड़ा तो के राजा पाप लग जाई। राजा का आत्मा एक बार कहाँ पुठी, मोरन ध्वज राजा हथवा जोड़ लल, हथवा जोड़ के साधु बाबा से पूछत हुआ, का पूछत हुआ, गीत बदल गई मास्टर।

0: अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा जो इस वर्ष आयोजित होने वाली SDT के लिए आवेदन करेंगे। राज्य सरकार ने भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया। उन्होंने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन में चर्चा नहीं होने देने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मॉनसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
2: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए बिहार के 5 समेत 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं।
3: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्यों की बड़ी व्यापक परिभाषा की। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: बिहार के 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अभिनेता सुरेश कुमार हच्चू, नाट्य निदेशक शिव नारायण झा और लोक कलाकार महेंद्र राम को राष्ट्रीय कला पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं युवा रंगकर्मी रोहित चंद्रा और लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव को उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। पटना के पापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की सलाह दी।
4: मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सरकारी नियुक्ति आपने कैरियर जरूर चुना है, लेकिन ये लोक सेवा का रास्ता है सर। क्या बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुलेगा, क्योंकि आप जितने ईमानदार होंगे उतने ही बिहार आगे प्रगति करेगा सर।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के चौथे चरण TRE4 में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा जो इस वर्ष आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि TRE4 का विज्ञापन जारी होने से पहले STET का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि TRE4 परीक्षा में बैठने के लिए STET पास करना अनिवार्य होगा।
5: इन दिनों बड़ी संख्या में STET के वैसे छात्र जो इसकी परीक्षा में शामिल होना चाहते थे और इसमें से उत्तीर्ण होने के बाद वो TRE4 में भी अपना भाग्य आजमाना चाहते थे, हमने आज ही निर्णय लिया कि 17 तारीख से STET के आवेदन लिए जाएंगे और उनके परीक्षा होंगे। और BPSC जब भी TRE4 की विज्ञापन जारी करेगी तो BPSC में उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो STET की इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त होगी जो पास होंगे उन्हें ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा।
0: भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है। सिवान में हुई पुलिस फायरिंग की घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के लोक भवन मार्च को जदयू ने राजनीतिक दिखावा बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजद राजनीतिक लाभ के लिए इस मार्च का आयोजन कर रहा है।
6: अभी राजभवन मार्च होता है, ये पॉलिटिकल इवेंट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा विधायक MLA लोग साथ में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी ओपोजिशन में रहे हैं तो हम लोगों ने भी किया है, अपनी बात को रखा है, ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल। ओपोजिशन का ये काम है, सरकार के बातों से जिस बात से सरकार से नहीं अवगत होते हैं उसको राजभवन जाके अपना ज्ञापन देते हैं।
0: मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि प्रदेश में जिस किसी भी कंपनी की शराब पकड़ी जाएगी उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हो चुकी है।
7: बिहार मॉडल है और बिहार मॉडल रहेगा। हम लोगों ने विभाग में निर्देश दिया है कि जो भी विदेशी शराब पकड़े जाते हैं उस कंपनी पर हम लोग FIR करेंगे और उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। 10 साल से जितना शराब पकड़े गए हैं उससे अधिक इस वर्ष पकड़े गए हैं और ये आगे भी हम लोग पकड़ेंगे।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि समारोह में होने वाले झंडोत्तोलन और परेड का आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इधर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा।
0: प्रदेश में स्कूलों, सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और सामूहिक वंदे मातरम गायन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सोनपुर रेल मंडल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें रेल कर्मियों के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। पटना और मुंगेर में डाक विभाग के कर्मियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। पटना में एक क्षेत्रीय केंद्र की ओर से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा सुपौल, सीतामढ़ी, अरवल, भोजपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्णिया और अररिया जिले में भी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रदेश के विभिन्न डाकघरों में तिरंगे की बिक्री की जा रही है। लोग 25 रुपए की दर से अपने नजदीकी डाकघर से तिरंगा खरीद सकते हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने औरंगाबाद के बारून स्थित राजकीयकृत केशव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक सह समन्वयक शशि भूषण को 10,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिक्षक NIOS के अंक पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्र देने के एवज में रिश्वत ले रहा था। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने से लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वाल्मीकिनगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं मधुबनी के झंझारपुर में सबसे अधिक 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है।
2: दिनांक 14 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
0: हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के तिक्खी नया टोला में अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने लगभग 10 राउंड फायरिंग की। शेखपुरा जिले के कुसुम्बा थाना क्षेत्र के काशीचक मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक एम्बुलेंस से 10 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के जीटी बाईपास ओवरब्रिज के पास यात्री बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 20 यात्री घायल हो गए। इनमें से 5 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने जुलाई महीने की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अररिया और सीतामढ़ी में आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर मेले का आयोजन किया गया। मेले में लोगों से अधिक संख्या में सोलर पैनल लगवाने की अपील की गई। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 में उन अभ्यर्थियों को

भी शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो इस वर्ष आयोजित होने वाली एसटीटी के लिए आवेदन करेंगे। और राज्य सरकार ने भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9797-14-86164।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
11: ए बाबू, साधु बाबा कले की सुना, हमार शेर दाल भात रोटी तरकारी घास खाए वाला ना बा, हमारे शेर के मांस चाहिए मांस। राजा को ले मांस, अब मांस के दरबार में कौन बात बा। लेकिन महाराज आप ये बताई कि कौना जानवर का कौना चीज का मांस आपका शेर खाई? कलो ना हाथी का मांस खाई, ना घोड़ा का मांस खाई, ना बकरा का मांस खाई, ना मीट मछली। काले ई जानवर का मांस कबो हमार शेर ना खाई। हमार शेर इंसान का मांस खाई।
12: अरे?
11: तो राजा कलन की कौन बात बा, जब इंसान का मांस खाई तो हम ऐसा दानी हेबे करीला, इंसान का मांस दान कर देबे तो राजा सोचत हुआ कि या तो दहिना पैर नहीं तो बाया पैर नहीं तो का कोनो अंग अपन काट के उस शेर के खिया देवे जो की हमार भी अंग इस दान में हो जाई। तो साधु बाबा कहला ना ना ना ना राजन, ए आपका मांस नहीं खाएगा हमारा शेर। शेर हमार बुढ़ा बा, आपका उम्र देखत हुआ कितनी बा, आपका मांस बड़ी टाइट हो गई बा, आपका मांस खाए में हमारे बूढ़ शेर के ना दांत बा ना उतनी शक्ति बा कि तोरे मांस के बढ़िया से चबाए के खा ले। हमारे शेर के नरम मांस चाहिए और वो लड़का का मांस चाहिए। राजा कला कौन बात, लड़का का मांस मिल जाए। साधु बाबा कला दूसरे के लड़का का मांस ना चाहिए, तोहार बेटा तामर ध्वज का मांस चाहिए। राजा तब थोड़ा से कोई का औलाद हो, राजा के एक बार दिल पर झटका आयल, लेकिन फिर भी राजा अपने दिल के मना लेलो कि नहीं मेरा धर्म बिगड़ जाएगा, मैं सत्यवादी राजा हूं, हमेशा दान किया हूं, आज भी दान कर दूंगा। लेकिन राजा सोचे लगे, क्या सोचे थो मास्टर साहब,

मातम छाया महल में भारी, मातम छाया महल में भारी, शोक सिंध में डूबे भुआल, अब भाव बंधन से मिलेगी मुक्ति, जीवन सफल हो जाई हर हाल। साधु बोले देर करो ना, साधु बोले देर करो ना, बेटा को चीरो तत्काल। साधु बाबा कहलन, ए राजा क्या सोच रहे हैं, जाइए एक बार अपने रानी से पूछ लीजिए, रानी का तो विचार होना चाहिए। राजा गैलन अंदर अपने रानी से कहले कि रानी आज हमरे सत्यता का परीक्षा बा, तोहार का विचार बा। जो भिखारी द्वारे बैठल बटन ओ साधु बाबा हमरे लड़िका के तामर ध्वज के मांस कहला है कि उनकर सिर खाई, तो रानी तोहार का विचार बा। बाप रे बाप, पूरे महल में मातम छा गया। राजा रानी सोचत हुए, रानी के आंख से झरझर झरझर आंसू बहे लगल। कैसे मास्टर साहब गीत बदल गई।

0: गए बाबू अंदर दरबार में लेकर के, रानी अपने तामर ध्वज बेटा के गोद में लेके बैठल है, आंख से आंसू चल रहा है। राजा कलन, रानी अब रोने की घड़ी नहीं है, ना सोचने की घड़ी है, ए मेरे परीक्षा की घड़ी है। औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है बाबू, फिर भी रानी का कलेजा ना मानता।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9474-34468 पे।
10: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: तब तक बाहर से साधु बाबा आवाज लगा दिए, ए राजन देरी हो रही है, देर हो जाएगा तो मेरा शेर नहीं भोजन करेगा, जल्दी करो। साधु की आवाज को सुन करके तामर ध्वज बेटवा के लेकर के राजा रानी बाहर एलन वही छप्पर के नीचे खड़ा हुआ। एक तरफ आरा के राजा पकड़ ले हुए, एक तरफ आरा के रानी पकड़ ले, बीच में बेटा बाबा तामर ध्वज। तब ले रानी एगो बात काली हो बाबू, जन कलेजा दहल गयल, का कहत है रानी। तर्ज के छोड़ी भाव पर गौर करी मास्टर साहब,

ए बाबू, राजा रानी उस छप्पर के नीचे तोम और ध्वज बेटा को बिठा देते हैं और ए बीचो बीच सर्प आरा रख करके और एक तरफ से राजा एक तरफ से रानी अपने बचवा के चीरे शुरू कैलर हो बाबू, जैसे कोई लकड़ी के काटे वही तरीके से बाबू अपने तोमर ध्वज बेटवा के काटे शुरू कैलर राजा रानी। यही से कहल जला कि आरा हिले बलिया हिले छपरा हिलेला आ जब लचकैले कमरिया सारा जिला हिलेला। बहुत बड़ा तत्व बा ये गाना में। आरा हिले मतलब राजा रानी जब इसे काटे अपने बेटवा तोमर ध्वज के तो अरवा हिले हो बाबू, आरा हिले ना कि आरा जिला। आरा हिले बलिया हिले, बलिया जिला का बात ना मास्टर साहब, कान में जो उन कुंडल पहले रहना बाली राजा रानी वो बलिया हिले ऐसे, तो आरा हिले बलिया हिले छपरा हिलेला, वो जो छप्पर के नीचे काटत ना वो छप्परवा इसे हिले लगल। आ जब आगे पीछे राजा रानी होए बाबू ने जब लचकई ले कमरिया मतलब आगे पीछे हो तो कमर ऐसे हिले, अब इस दृश्य को देख करके भगवान का सिंहासन हिल गया, धरती आसमान एक बार कांप गई। तब ने साधु बाहर से आवाज लगा दलन और राजन इस मांस को मेरा शेर नहीं खाएगा। राजा हथवा जोड़ लेने कहले महाराज आपका शेर मेरे बेटे का मांस नहीं खाएगा, आखिर क्यों? तब साधु बाबा कहत हो, क्या कहत हो मास्टर?

साधु बाबा बोले इस बच्चे का मांस मेरा सिर नहीं खाएगा। साधु बाबा बोले कि देखिए राजन, जब अपने बेटा को आप दोनों लोग काट रहे थे ना राजा रानी, तो आपके बेटे के बाई आंख से आंसू चल रहा था। अब मैं बोला था कि जब आप उस बेटा को काटेंगे तो ना बेटे के आंख से आंसू आना चाहिए, ना राजा के आंख से आंसू आना चाहिए, ना रानी के आंख से आंसू आना चाहिए। तो ये बच्चे की मांस तो व्यर्थ हो गई, नहीं खाएगा मेरा सिर। राजा हथवा जोड़ के राजा रानी रोवे लगे, कहले महाराज आप ये जानना चाहते हैं मेरे तामर ध्वज बेटवा के बाई आंख से क्यों आंसू आया। बाई आंख से आंसू इसलिए आया कि आप बोले थे ना कि मेरा शेर आपके बेटे का मांस खाएगा, दाहिनी अंग को खाएगा और बायां अंग व्यर्थ हो जाएगा। मेरे बेटे के आंख से इसीलिए आंसू आया, दाहिनी आंख से आंसू नहीं आया, क्योंकि दाहिना अंग वो काम में आ जाएगा, शेर खा जाएगा आपका, लेकिन बाई आंख से आंसू इसलिए आया कि बायां अंग मेरे बेटे का व्यर्थ हो जाएगा। तब साधु बाबा कहा वो ठीक है, बाएं अंग को फेंक दीजिए और दाहिनी अंग को मेरे शेर को खिला दीजिए। दाहिनी अंग के बाबू राजा रानी लेके गईलन हो, अपने बेटा तोमर ध्वज का दाहिनी अंग लेकर के शेर के आगे डाल देते हैं और शेर खा जाता है। लेकिन बताओ जला ये बाबू, कभी कभी भगवान बड़ी कड़ी परीक्षा ले लन। जरा गौर करिएगा, भयल का मास्टर साहब आल्हा का लाइन बाबू।

0: ए बाबू, जब उस तामर ध्वज बेटे का दाहिना अंग जब शेर खा जाता है।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
3: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
0: तब साधु बाबा बोलते हैं राजा से, राजन मेरा शेर तो खा लिया, लेकिन अब हम दोनों की व्यवस्था करिए। राजा सोचलन कि साधु बाबा तो मांसाहारी भोजन करी है ना, राजा शाकाहारी भोजन बनवा देलन। अब भोजन बनौले के बाद साधु बाबा के और साधु बाबा के साथ में जो दूसरा ब्राह्मण, मतलब अर्जुन जी, पैर धो करके राजा आसन लगाते हैं। जब दो थाली में भोजन लिया के राजा रखलन सामने, तब का भेल मास्टर साहब,

साधु बाबा कलन राजन दो थाली में भोजन आप लाए हैं। राजा कहना जी महाराज आप लोग दो हैं तो इसीलिए हम दो थाली में भोजन लेकर आए। कहना एक थाली में भोजन लगा करके जल्दी से लेकर के आइए। और जब अंदर राजा गैलन तीसरी थाली का भोजन लियो अवधे तब कहो था मास्टर साहब

ए बाबू, जब राजा गैलन तीसरी थाली में भोजन लेकर के साधु बाबा के सामने आते हैं तो ना वहां साधु, ना वहां दूसरा ब्राह्मण और ना वहां शेर, अखिल रहल के भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। ए भैया, अर्जुन जो ब्राह्मण बनल हो अपने असली रूप में अर्जुन आ गेलन, और जो साधु बनल रहलन कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आ गेलन, और जो माया का जो शेर था वो यमराज था, यमराज भी अपने असली रूप में आ गेलन। तुरंत भगवान कृष्ण यमराज से कहलन, जो तामर ध्वज बेटा का लाश मेरा शेर खाया है, तुरंत उस बेटा को जिंदा करो। अब भैया हो यार, भगवान कृष्ण अर्जुन बगल में तोमर ध्वज बेटा, उसके बगल में यमराज, जब चारों जने बैठल हुआ सामने, अर्जुन भगवान के तरफ ताकल करत हुआ हरदम। अरे भगवान के तरफ अर्जुन ताकत हो तब का भेल मास्टर साहब, अरे हसत भोजनवा साथे

चारों लोग भोजन करते हैं। जोन बार बार कृष्ण भगवान के ताकत लत कृष्ण भगवान कहला का हो अर्जुन अब बुझाई कि दुनिया में दानी के बा, अब समझ में आयल सबसे बड़ा भक्त के बा। अरे बाप रे बाप, अर्जुन का जोन घमंड रहल ना वही जगह घमंड वही टूट गया। जब अर्जुन का घमंड टूटल हथवा जोड़ के और कृष्ण भगवान के पैरवा पर गिर के कहले प्रभु जी अब समझ में आयल कि भैया धर्मराज से भी बड़ा केहो दानी बा और हमसे भी बड़ा केहो भक्त बा, ये हमार गलत फहमी रहल। अर्जुन का घमंड टूटा। यही लिए गांव में पुरनिया लोग कहल कि अर्जुन का घमंड टूट गल तोहरे में का बा। यही से हमारे बिरहा के सुने वाले भैया बाबू चाचा दादा लोग अपने अंदर आप लोग घमंड कभी मत लईहन। घमंड विनाश का जरिया बा। ये मैं वादा करती हूँ अगर आप घमंड करेंगे तो 100% आपका घमंड टूट कर रहेगा। कहा जला कि जो झुकना नहीं सीखा वो टूट गया। आप चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो आप झुक जाइए, आप नहीं झुकेंगे तो टूट जाएंगे। बिरहा का हमारा आखिरी लाइन बा मास्टर साहब, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुरकारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी अरे सुगनावा कैसे सूली पर चढ़ी

श्रोता लोग रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के ई बिरहा रउआ सभे के बहुते अच्छा लागल होई। अगर रउआ सभे चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेजे के तो हमनी के एसएमएस नंबर बा 7277165696। हमनी के ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोड़ गोपालगंज पिन कोड 84-14-28। रउआ कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। चली अब आज खातिर अपन दोस्त अफसर अली के दी जाए के इजाजत। नमस्कार और इस सुनत रही अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अपना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए। पोजीशन

0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में।

0: लगाएं। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
5: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो काडर श्रेणी में ग्रेड 3 के सहायकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे विवरण और अपडेट के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट देखें, जिस पर आपको राज्यवार रिक्तियों की जानकारी के अलावा शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आरक्षण, तैनाती के स्थान आदि के बारे में भी सभी जरूरी जानकारियां मिल जाएंगी। वेबसाइट है nationalinsurance.nic.in। असम विश्वविद्यालय के मुख्यालय सिलचर में इन गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद हैं वित्त अधिकारी, निदेशक कंप्यूटर केंद्र, परीक्षा नियंत्रक, अधिशासी अभियंता, आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, उप कुल सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, उच्च श्रेणी लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, इलेक्ट्रीशियन, अवर श्रेणी लिपिक, प्रयोगशाला परिचर, पुस्तकालय परिचर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.aus.ac.in। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी का एक पद रिक्त है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख है 24 अगस्त 2026। अन्य विवरण आवश्यक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.try.gov.in। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय नई दिल्ली में संविदा आधार पर सलाहकार विधि के एक पद को प्रारंभिक रूप से एक साल की अवधि के लिए और आवश्यकता के आधार पर आगे बढ़ाए जाने योग्य 60,000 रुपये प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्ति का विस्तृत विवरण और आवेदन पत्र का प्रारूप देखिए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट www.nccc.ac.in। NMDC स्टील लिमिटेड आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कार्यकारी प्रशिक्षु सिरेमिक्स, कार्यकारी प्रशिक्षु केमिकल, कार्यकारी प्रशिक्षु सिविल, कार्यकारी प्रशिक्षु कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कार्यकारी प्रशिक्षु इलेक्ट्रिकल, कार्यकारी प्रशिक्षु फाइनेंस, कार्यकारी प्रशिक्षु ह्यूमन रिसोर्सेज, कार्यकारी प्रशिक्षु इंस्ट्रूमेंटेशन, कार्यकारी प्रशिक्षु मैकेनिकल तथा कार्यकारी प्रशिक्षु मेटलर्जी। कुल 102 रिक्तियां उपलब्ध हैं। पदवार रिक्तियां इस प्रकार हैं: सिरेमिक्स 3 रिक्तियां, केमिकल 4, सिविल 3, कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4, कार्यकारी प्रशिक्षु इलेक्ट्रिकल 22, फाइनेंस 7, ह्यूमन रिसोर्सेज 3, इंस्ट्रूमेंटेशन 2 और मैकेनिकल 51 तथा मेटलर्जी 3। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए NMDC स्टील लिमिटेड की वेबसाइट www.nsltd.in/en/ करियर्स। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
12: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
11: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
12: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
11: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
12: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
13: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
11: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
15: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
16: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
15: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
17: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
18: All right.

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जी. शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे.जी. शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 6500547-67666।
10: ओम नमः शिवाय।
11: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
10: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
11: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
10: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
11: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
11: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
10: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
11: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
10: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
11: बोलबम हर हर महादेव।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
14: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
15: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
14: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
16: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
14: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
17: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
14: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
18: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
14: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
19: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल से स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
14: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
20: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
14: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
21: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसके भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
14: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांग जनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांग जन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
0: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
14: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
1: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
14: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
22: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
23: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939491551 पे।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
23: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
23: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656569536 या 9656579002।
24: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
25: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
24: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
25: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 9939966999।
26: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
27: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 7070-7563600 या 7070-7542400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
28: ठक ठक।
29: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
30: अच्छा मिला ही नहीं।
29: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
30: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
29: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
30: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
31: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल।
6: महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। देह व्यापार में शामिल दो आरोपियों को भेजा गया जेल। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, हत्या का लगा आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चल रही है जोर शोर से तैयारी। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चयनित रितेश को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिले में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने मीरगंज बाईपास एवं गोपालगंज बाईपास निर्माण कार्यों के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। इस क्रम में कार्यों में अपेक्षित तेजी नहीं होने तथा विभिन्न स्तरों पर हो रही देरी को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार गोपालगंज बाईपास परियोजना की कुल लंबाई 12.60 किलोमीटर है। परियोजना का कार्य 3 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ किया गया था तथा इसके पूर्ण होने की संभावित तिथि 2 अप्रैल 2027 निर्धारित है। परियोजना में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया तथा वन स्वीकृति की कार्रवाई भी दर्ज है। वहीं मीरगंज बाईपास निर्माण परियोजना के संबंध में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार 13 अगस्त 2026 को जन सुनवाई निर्धारित किए जाने का उल्लेख भी परियोजना प्रतिवेदन में किया गया है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि भूमि अधिग्रहण स्वीकृति एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन करें। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सड़क एवं बाईपास परियोजना में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीरगंज के खाना खजाना में देह व्यापार का एक भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने 2 दिन पहले यहां छापेमारी की थी, जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस अनैतिक देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर खाना खजाना रेस्टोरेंट के पास छापेमारी की गई थी। इस दौरान रेस्टोरेंट की तलाशी ली गई तो इसमें रेस्टोरेंट का संचालक मौके पर उपस्थित नहीं मिला और रेस्टोरेंट के 2 स्टाफ विशाल कुमार गुप्ता, जो महैचा थाना हथुआ का निवासी है, और मुकेश कुमार, यह सिवान के बसंतपुर थाना के तेलिया गांव का रहने वाला है, इसको पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू किया और रेस्टोरेंट के केबिन इत्यादि की जब तलाशी ली गई तो केबिन से 2 महिला और 1 पुरुष सहित कुल 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। तलाशी के दौरान केबिन से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने 2 महिला और 1 पुरुष को बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया और इस रेस्टोरेंट संचालकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें विशाल और मुकेश कुमार को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही रेस्टोरेंट में हो रहे अनैतिक देह व्यापार में शामिल अन्य लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का अंदेशा जताते हुए पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोग पुलिस के आने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इसमें आवश्यक जाँच पड़ताल कर रही है। व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर आज बैठक की गई। बताया जा रहा है कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निष्पादित करने के लिए लगातार बैठकें करते हुए रणनीति बनाई जा रही है। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनूप कुमार उपाध्याय ने MACT वादों के चिन्हित करने एवं पक्षकारों के बीच प्री सीटिंग संबंधित अग्रतर कार्रवाई को लेकर बीमा कंपनी के अधिवक्ता और दावाकर्ता के अधिवक्ता गणों के साथ बैठक की और इसमें उपस्थित प्रतिभागियों से न्यायालयों में लंबित MACT के निष्पादन योग्य संभावित वादों पर चर्चा की गई और इसकी एक सूची तैयार की गई तथा अगली बैठक में उक्त वादों पर पक्षकारों एवं बीमा कंपनी से वार्ता कर वादों को तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय टीम में शामिल होने वाले रितेश कुमार को आज जिला पदाधिकारी ने सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि रितेश कुमार प्रभात का 60 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार की टीम में चयन हुआ है। ये बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बेहतर प्रदर्शन के बाद राज्य टीम में इनका चयन हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अपने कार्यालय में बुलाकर रितेश को सम्मानित किया और बधाई दी। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए रितेश की उपलब्धि से जिले में हर्ष की बात बताई। साथ ही उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया और उन्होंने कहा कि रितेश की उपलब्धि से नए खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और सभी लोग मिलकर जिला और राज्य का नाम रोशन करेंगे। सासामुसा चीनी मिल के मामले में कोलकाता के NCLT में सुनवाई पूरी हो गई है। पीठ ने सभी पक्षों की बात को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। चीनी मिल को दोबारा चलाने और किसानों के बकाये तथा मिल के पुराने मालिकों की हिस्सेदारी से जुड़े मामलों में यहां पक्ष रखा गया है। गन्ना उद्योग विभाग की ओर से भी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी BTL ग्रुप को चीनी मिल चलाने के लिए सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के आधार पर NCLT में पक्ष रखा गया। इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर देवव्रत कुमार और BTL कंपनी के प्रतिनिधि SP मिश्रा ने NCLT में चीनी मिल को चलाने के लिए अपनी बात रखी और मिल को दोबारा संचालित करने की अनुमति देने की भी अपील की। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद और मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी राम मिलन साह को पुलिस ने आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह आरोपी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मठिया गाँव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 बच्चों की मां ने थाने में आवेदन देकर ससुर समेत 4 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि नशीला पदार्थ सुंघाकर 3 दिनों से महिला के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुड़ी है। पीड़ित महिला को इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 1 महीनों के अंदर 850 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 569 लोग जेल भी भेजे गए। हत्याकांड में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो वहीं हत्या के प्रयास में 11 लोग पकड़े गए। इसी तरह लूट के मामले में 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो वहीं डकैती के मामले में 1 लोग और पॉक्सो एक्ट में तथा अनुसूचित जाति जनजाति में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नगर थाना की पुलिस ने 35 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी नया टोला रजोखर बांध पर गिरफ्तार हुआ। इसके पास से 36 लीटर शराब मिली। आरोपी का नाम मिंटू कुमार सिंह है, जो रजोखर नवादा के ही विनोद सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके शराब और वाहन को जब्त किया गया है। हरियाली अमावस्या वर्षा ऋतु का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो हरियाली समृद्धि और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा मुख्यालय पटना के साथ साथ कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र बक्सर में भी वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देखा। इस अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए लोगों को सतत भविष्य के लिए हरित संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। देह व्यापार में शामिल 2 आरोपियों को भेजा गया जेल। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, हत्या का लगा आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चल रही है जोर शोर से तैयारी। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चयनित रितेश को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
12: सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
15: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
13: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
16: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
17: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
16: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
17: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
16: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
17: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
18: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
16: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
19: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू, सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो झेम 90.4 FM पे। समय 9:22 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। तो यदि आप अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो अभी आप टेक्स्ट मैसेज करें। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय, कैसे हैं, ठीक है ना। मुझे एक गाना सुनना है और शम का बोल है बस इतना करी राम जी दिल लागे ना अब केहू और से। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस मैसेज को करने वाले अपना नाम नहीं बताए हुए हैं, तो अपना नाम ज़रूर बताएं। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप जब भी मैसेज करें तो आप नाम पता के साथ मैसेज करें ताकि आपकी पहचान हो सके और पहचान के साथ साथ आपकी फरमाइश भी पूरी हो सके। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू सर, मुझे गाना सुनना है, गाने का नाम है कौन कहते हैं भगवान होते नहीं। मेरा नाम सत्यम है, श्यामपुर से, और कल मेरा गाना नहीं बजाए थे, कृपया गाना बजा दीजिएगा। तो चलिए आज आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज कुछ पहुँचे हुए तो मैसेज देख ले, फिर आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सुनो भैया नमस्ते, अमली नवसाद दरभंगा भाजीतपुर से, और आज मुझे सॉन्ग सुनना है कवाली। तो कवाली आपसे क्षमा चाहेंगे, आप कवाली की फरमाइश ना करें क्योंकि कवाली बहुत लंबे समय का होता है और कवाली हम पूरी नहीं कर पाएंगे। और यह कार्यक्रम बहुत कम समय का है तो हम कहते हैं कि साधारणतः गाने की फरमाइश करें तो बेहतर रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, हमें गाना सुना दीजिए, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। शुभम कुशवाहा बंजारी से जुड़े हुए हैं, यदि पुराने गाने होंगे तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि जीना पाइप अगर साथ छूट जाई हो, पवन सिंह का, लेकिन आप कौन, तो अपना तो नाम बताएं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे पहले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सत्यम जी की, श्यामपुर से मैसेज किए।

चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। और आप लोगों से विनती है कि आप लोग पुराने गाने की फरमाइश करें और साधारणतः गाने की फरमाइश करें और कवाली नात शरीफ और भजन निर्गुण की फरमाइश ना करें, क्योंकि यह बहुत कम समय का कार्यक्रम बना हुआ है। आप लोग थोड़ा सा समझें। और देखिए, अभी गाने जो हम सभी सुन रहे थे वो करीब 8:30 मिनट का है, तो इस गाने को हम आधे ही सुना पाएंगे और आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, तो अगले गाने भी हम सभी सुनेंगे। आगे गाने के फरमाइश करती हैं रेखा जी और कहती हैं, सोनू जी मैं कल से लाइन में हूं और मैं रेखा पांडे और सरिया वार्ड नंबर 5 से, तो आज मेरा गाना बिल्कुल प्ले कीजिएगा। गाना है रेखा जी का, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। बिल्कुल आपके गाने हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी धन्यवाद है सत्यम जी। और आगे से ध्यान रखिएगा कि साधारणतः गाने की फरमाइश करिएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि हेलो प्रणाम सलाम मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज उजवलिया मस्का गांव प्रखंड से, और मुझे सॉन्ग सुनना है, आज पहली बार दिल की बात की है। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि आधा ही सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू बाबू आपके व्हाट्सएप पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं पहली बार मैसेज किया हूं, तो बिल्कुल यदि आपका मैसेज पहुंचा हुआ है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं रेखा जी की, और रेखा जी वाली गाने।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजी 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हमारा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल बजाएंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं? और मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। और मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ और आप सभी के बीच कोशिश करते हुए उपस्थित हूँ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे। सर जी तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करने वाले अपना नाम तो नहीं बताए हुए हैं, और सुजीत कुमार बस्तरा, राजा लालगंज, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज और लिखा गया है कि हमारा गाना नहीं बजाएंगे क्या? तो आप कौन, अपना नाम तो बताएं, तभी तो आपके गाने हम बजाएं। आगे मैसेज और लिखा गया है कि सर हम भी हैं, तो बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं

0: more entertainment, log on and subscribe to W.
1: टुडे रेम जी 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और चलिए, बेवफा नहीं होना चाहिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि धन्यवाद सर जी आपको, भगवान जी आपको पूरी दुनिया की सारी खुशी दे। ओ चलिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू जी, मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, और गाना सुना दीजिए। गाने का बोल है, जब से देखा तुझको हम तो खोए खोए रहते हैं। और इस मैसेज को करती हैं भारती। तो चलिए, आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और थोड़ा सा सब्र करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुजीत कुमार प्रेम नगर बस्तरा राजा लालगंज मिर्जापुर से। तो सुजीत जी, आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है, और आपकी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, वाओ सुपर सॉन्ग, मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज लिखा गया है कि मैंने तो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करने की दुआ मांगी है, मैंने तो सिर्फ हर खुशी दुआ में तेरी ही वफा मांगी है। ये दुनिया लाख जले हमारी मोहब्बत से, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करने की सजा मांगी है। सुनो भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, जुड़ गए हैं तो बिल्कुल बन रहे हमारे साथ। और कहते हैं कि प्यार में नहीं की बेवफा, सुपर सॉन्ग। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मत करो गुरूर अपनी मोहब्बत पर, ना जाने कब वो अपना रंग दिखाएगा। जिसके खातिर तुम लड़ोगे अपने से, वही एक दिन तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा। सुपर सैड सॉन्ग। और मैसेज करती हैं निशा भारती, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे MD 97 दरभंगा भजीतपुर से किए हुए हैं, और गाने का बोल देते हैं, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग, अमेजिंग सॉन्ग हो। अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, और इस मैसेज को करती हैं निशा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि आखिरी बार पूछ रही हूं, बजाइएगा कि नहीं। यदि आप परिचय देती हैं तो बिल्कुल बजाने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सोने भैया मुझे मेरा गाना सुनाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए नौसाद जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू कैसे हैं, आज मेरे लड़के विकास गुप्ता का सालगिरह है, तो आज हमारे ऑल फैमिली और सभी साथियों के द्वारा घर पर ही आशीर्वाद देने के लिए और गॉड से इनके हर कामनाएं की दुआ मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं एक बर्थडे का सॉन्ग सुना दे मैडम जी के फरमाइश पर। और फिल्म आप आए बाहर आए गीत गीत तारे तारे नील गगन पे तारे डेडिकेट हमारे सभी सखियों सहेलियों को और सभी सुंदर सभी श्रोताओं को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम ले करेंगे लवली गुप्ता एंड वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से, आप दोनों की फरमाइश से तो पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हमारा गाना कब बजेगा। बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा, फिलहाल गाने को इंजॉय करें।

टुडे रिम छीम 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी। और आगे मिसेस पहुंचा हुआ है, और आगे लिखा गया है कि तोहफे में चांद दूं या सितारे, जन्मदिन पर ऐसा क्या दूं ये मुझसे पूछे सारे, अगर जिंदगी तुम्हारे नाम करूं तो वो भी कम है तुम्हारी, झोली में भर दूं हर पल खुशियों में तुम्हारे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि शुक्रिया सोनम बाबू बर्थडे सॉन्ग सुनाने के लिए, पर लेट है। चलिए क्या करें, कई मैसेज पहुंचे हुए रहते हैं। चलिए हमारे तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग। आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे करती हैं भारती, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि जब से देखा तुमको हम तो खोए खोए रहते हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94 FM पे, डेडिकेट पूरे ऑल लिसनर को।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश कब से लाइन में लगा हुआ है और इन्होंने पर्चे नहीं दे रही थी जिसके कारण इनकी फरमाइश हम रुक के रखे हुए थे। सोनाली बिरवा से जुड़ी हैं और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। गाने का बोल दिया गया है, बस इतने करी ये राम जी दिल लागे ना आपके हुगौर से। इसलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सॉन्ग प्ले किए इसके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दर्द को दर्द अब होने लगा है, दर्द अपने गम पे खुद रोने लगा है, अब हमें दर्द से दर्द नहीं लगेगा क्योंकि दर्द हमको छूकर खुद सोने लगा है। सुनो भाई नमस्कार, खोए खोए रहता हूँ सुपर सॉन्ग और आप सभी को गुड नाइट। मैसेज करते हैं दिलीप राम जी, बिल्कुल अभी एक और दो गाने सुनेंगे हम सभी, अभी बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि ओए होए ये बात है, खोए खोए जागे जागे सोए सोए रहते हैं, सुपर लाजवाब सॉन्ग। मैसेज करती हैं निशा भारती और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने को हम प्ले करते हैं।

बिल्कुल नहीं लगेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि, और इस मैसेज को करती हैं भारती और लिखती हैं कि क्या पेश करूं तुमको, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नई हवाओं की शोभा बिगड़ देती है, नई हवाओं की शोभा बिगाड़ देती है, बहुत तारों को खुली चाहत बिगाड़ देती है, बचा कर रखना मोहब्बत को, बचा कर रखना मोहब्बत को, खैर से खुद को ये अच्छे अच्छों की हालात बिगाड़ देती है। सुपर लाजवाब भोजपुरी माई बेस्ट सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं निशा भारती, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है और इनके तरफ से गाने के फरमाइश दिया गया है तड़ी पार मूवी से। आज पहली बार दिल की बात की है तो इनके गाने हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हमारा भी, तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करेंगे इसके बाद हो सके तो, और नहीं नहीं आज तो नहीं प्ले कर पाएंगे क्योंकि यहाँ देखे तो समय 10:17 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में, तो अंतिम गाना इन्हीं का रहेगा। और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, और आप सब जो भी श्रोतागण छोड़ जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, समय की कमी है और हमारा जितना समय था उतना पूरा हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही, रहने दीजिए और आप सब सुनते रहें रेडियो 96.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांते के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांते को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधे हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
4: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
3: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business. But continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. President Draupadi Murmu will address the nation on the eve of the 80th Independence Day tomorrow. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Country's exports, including merchandise and services, registered a robust growth of 13.3% in July this year by reaching to $80.14 billion. The country's exports were $70.72 billion in the same month last year. According to the provisional data released by the Commerce Ministry, the export performance was led by merchandise shipments, which jumped over 19.6% to over $44 billion last month from $36.98 billion in the same month last year. A terrorism monitoring team of the United Nations Security Council UNSC has declared the deadly Red Fort suicide car bombing in Delhi that killed 11 people the work of Al-Qaeda in the Indian subcontinent, AQIS. The report by the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team on Terrorism to the Security Council said the attack in last November was officially attributed to AQIS. India emerged as the overall champions at the Commonwealth Fencing Championship by winning an impressive 35 medals after 4 days of competition held at Lagos in Nigeria. Indian contingent secured 13 gold, 8 silver and 14 bronze medals at the event across the under-23 and senior competitions. The performance also helped India win the Wilkinson Sword Trophy, awarded by the Commonwealth Fencing Federation to the country with the best overall results. And that is the end of this news bulletin.

0: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
3: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया हेलो माय चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 80 29 94 911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
4: मनोरमा है।
5: जी जी,
4: गाना सुनना है।
5: जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
4: मेरा नाम कुशवाहा पड़ेगा, कानपुर से बोल रहे हैं।
5: अच्छा, कैसे हैं आप?
4: बहुत अच्छे मैम, गर्मी तो बहुत है मैम, आज बहुत दिन खराब हो गया।
5: गर्मी तो है, तो वैसे क्या हो रहा है अभी?
4: अभी बैठे हैं।
5: खाना बना दिया आपका?
4: खाना आपका? खाना
5: जी जी आपकी फरमाइश बता दीजिए।
4: गाना सुनवाइए मैम, जनरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
5: सर गाना लिख देती है
4: अभी रेडियो रोता को।
5: तो वैसे आप ये रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनते हैं?
4: मोबाइल से सुनते हैं, रेडियो है हमारे घर, रेडियो से भी सुनते हैं।
5: अच्छा, मतलब मोबाइल ऐप के जरिए?
4: नहीं नहीं, रेडियो जो पर मोबाइल पर, जो मोबाइल में रेडियो होता है ना।
5: हाँ,
4: इससे सुनते हैं।
5: चलिए बहुत अच्छी की बात है। मतलब कितने समय से सुन रहे हैं?
4: उसी समय से चालू हुआ।
5: अच्छा,
4: 2009 5 जनवरी को जो समय से सुनते हैं।
5: ये बहुत अच्छी की बात है। कैसा लगता है आपको कार्यक्रम?
4: बहुत बढ़िया, हर प्रोग्राम अच्छा लगता है। हर समय समय से, पहले तो 12 बजे बंद हो जाता था ना, 5 बजे खुलता था, तो अब तो चालू हो गया 24 दिन में, और रात में 11 बजे तक सुनते हैं।
5: मतलब आप ऑल प्रोग्राम सुनते हैं ना?
4: सब प्रोग्राम सुनते हैं, कहीं कोई काम में चले, कोई बात नहीं, समय रहता है तो जो प्रोग्राम आता है वो सुनता है।
5: बढ़िया, और गाना डेडिकेट भी है?
4: बोले हैं सभी को।
5: ओके, तो ले करते हैं गाना आपका।
4: जी मैम।
5: रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद मैम।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिम 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा आ रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम। तो अभी इंतजार खत्म हो गया मैम, फोन तो लग गया अभी तो।

0: वो फरमाइश का इंतजार रहेगा मैम, तब बजेगा आज तो कल
1: कोशिश रहेगा कि
0: तो जी। तो आज फरमाइश है कुमार सानू का आवाज में है, गाने के बोल है मारे कटारी मैं मर जाऊं, और सुनवाएंगे कि मैं रेडियो रिम जिम दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
1: ठीक है तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: धन्यवाद मैम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, नमस्कार।
6: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
7: जी अरुणा जी, क्या हाल चाल है?
6: जी बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
7: हम जी बढ़िया, और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से
6: जी जी, कैसे हैं आप?
7: यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी से परेशान है
6: जी। यहाँ पे भी बहुत गर्मी,
7: लेकिन आप लोग ऐसी है बैठे रहना, हम लोग को धूप में चलना पड़ता है, दिन पूरे दिन रोड पे चलना पड़ता है, गाड़ी चलाना पड़ता है।
6: ऐसे क्या करते हैं?
7: मैं गाड़ी चलाता हूँ यहाँ पे, और आपके रेडियो से गाना भी सुना रहे हैं। बहुत गाना, बहुत गाना भी सुना रहे हैं। हमारे इतने आर्जे लोग आए और हम लोग यहीं पे आर्जे लोग आए थे, आज भी हम लोग से प्यार मोहब्बत है और सभी लोग अच्छे जानते हैं। लिखना भी सुनाने भी इतने सारे अभी तो आप लोग भी अभी आई है।
6: वैसे आज की फरमाइश बता दीजिए।
7: हेलो
6: जी जी, फरमाइश बता दीजिए अपनी।
7: आवाज का वीक जा रहा है थोड़ा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। गाना है तेरा पता मालूम, ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा
6: जी जी, बता दीजिए।
7: आपको सुनने वाले हैं, तमाम सुनने वाले रेडियो है।
6: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं
7: जी।
6: सबके साथ जी।
7: और कितने मंगलमय हो।
6: नमस्कार।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते
0: अनिल बात कर रहा हूँ छोटू से।
1: जी जी कैसे हैं अनिल जी?
0: बस बढ़िया, आप बताइए और आपकी टीम के बारे में बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ और हमारे यहाँ की टीम भी सभी बढ़िया है।
0: आप भारती जी बोल रही हैं ना?
1: नहीं
0: मनोरमा जी बोल रही हैं?
1: जी जी
0: जी, अभी मेरा कॉल लगा था, अभी आवाज में डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि कॉल लगा और फिर कट गया, आधा अधूरा बात हुआ था।
1: जी जी वो नेटवर्क इश्यू की वजह से कट गया।
0: हाँ,
1: तो
0: तो आज का फरमाइश है हमारा कुमार सानू का सॉन्ग है, बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार।
1: हाँ वैसे आप दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
0: गाना तो बहुत कम गाते हैं लेकिन आप कहिएगा तो थोड़ा सा गुनगुना देंगे।
1: जी
0: बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे आजा, याद नहीं है उतना अच्छा से, खराब हो गया गाना ही, खराब हो गया पूरा।
1: कोई बात नहीं आप
0: थोड़ा सा सुने हुए ज्यादा दिन भी हो गया ना, इसलिए तो सोचे कि आज रेडियो पे ही फरमाइश करते हैं इस गाने का।
1: जी जी बिल्कुल
0: अब आप गवा दी हमको, अब भारती जी से जब बात होगी वो भी गवाएंगी, सोनी जी आएंगी तो वो भी गवाएंगी।
1: तो कोई ना, आप बहुत अच्छा गाते हैं इसीलिए बोले।
0: नहीं, गाना बहुत कम गाते हैं वैसे, कभी प्रयास कर लेंगे घर से ही, मतलब उसको रिपीट कर लेंगे फिर उसके बाद उस दिन हम गा के सुना देंगे बढ़िया से गाना।
1: जी जी बिल्कुल। तो
0: वैसे आप लोगों का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है रेडियो रिमझिम पे, और आपसे एक बार बात हुई थी तो वो कॉल बजा नहीं था, और बाकी सब ठीक है।
1: जी वैसे तो मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं की थी, आज बहुत दिन के बाद कर रही हूँ।
0: आप स्टार्टिंग में जब आई थी, जब आप लोग शुरुआत में जब आप आई थी और भारती जी को भी उसमें योर वॉइस योर चॉइस में लाया गया,
1: जी
0: उसी टाइम के बाद बता रहे हैं।
1: जी अच्छा, हाँ तो कोई मेरी कहीं मिस्टेक हुई होगी। तो वैसे तो मैं सारा गाना प्ले की थी,
0: हाँ,
1: अगर आप कहीं नहीं सुने होंगे भी हो सकता है।
0: नहीं रेडियो ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि हम नहीं सुने होंगे, मतलब रेडियो तो मतलब एक सोशल मीडिया का युग होने से मतलब नहीं है, वो सब तो बकवास की चीजें हैं, वो अपनी अपनी जो सरकार आ रही है तरह तरह की स्कीमें ला रही है। रेडियो जो है वो किसी का नहीं है, वो भारत सरकार का ही है, लेकिन उसका और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का ये जवाब नहीं हो सकता, वो अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया।
1: जी
0: इसमें पारदर्शिता होती है, जो भी चीजें आती है अच्छी ही आती है।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: ठीक है अनिल जी, तो अगर गाना उस दिन नहीं बजा होगा उसके लिए सॉरी। और ये
0: अरे
1: कॉन्सर्ट
0: ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इसका कोई मतलब दिल पे नहीं लेते हैं हम, अपना ही ना परिवार है, परिवार में सबको रहना है, गलती सही सबसे होता है।
1: जी,
0: जी
1: तो अनिल जी गाना प्ले करते हैं।
0: जी
1: जी
0: थैंक यू।
1: वेलकम, सुनते रहे।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जब कर रहे थे 90.4 FM।
5: नमस्कार मैम।
6: नमस्कार,
5: कैसी हैं मैम
6: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
5: हम भी ठीक है, नाश्ता पानी हो गया है?
6: हो गया। और आपका?
5: मेरा भी हो गया है।
6: तो ये बहुत अच्छी सी बात है। वैसे आपका नाम?
5: सुनीता देवी।
6: हम तो आवाज सुन के ही पहचान गए, लेकिन क्या करे, अगला आदमी को भी तो पता चले।
5: जी जी जी
6: जी मैम। वैसे कहाँ से?
5: हाजीपुर से।
6: अब क्या हो रहा है अभी?
5: अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी बैठे हैं, तो इसीलिए सोचे की तो आज बुधवार है, आज लगाएं कॉल करें। सोमवार को तो नहीं लगाएं, तबीयत खराब था। तबीयत खराब था, उपवास से तो सो गए थे।
6: वैसे मौसम भी चेंजिंग हुआ है, इसकी वजह से भी तो।
5: जी जी मैम, दो दिन से तो धूप बहुत ज्यादा तेज हो रहा है।
6: बहुत ज्यादा। क्या कर रहा है?
5: और सब बोलिए।
6: जी सब बढ़िया। आज की फरमाइश बता रही है?
5: जी मैम, गाना तो भूल गए हैं, मगर एक गाना याद आ रहा है, खेसारी लाल का नहीं है, शंकर भगवान का गाना है, रात दिन रावनी है, रात दिन राउर बायला लाला, वही बजा दीजिएगा मैम।
6: और सुनवाना भी है?
5: जी मैम, आपको, भारती मैम को, सभी भाई और बहनों को सुनाना है।
6: तो आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
5: जी मैम, सब कोई ठीक है। आपकी?
6: जी मेरे यहाँ भी सब कोई ठीक है।
5: चलिए ठीक है,
6: ठीक है। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
5: थैंक यू मैम।
6: रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू मैम।
6: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, अरे वार्ड नंबर 2 से गोपालगंज।
1: जी, क्या हाल चाल है अरुण जी?
0: बस बहुत बढ़िया है जी। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
1: जी जी, हम लोग भी बढ़िया हैं।
0: जी, आप लोग आपका तो ये रेडियो का जो आदमी सुन करके बिल्कुल हमेशा टाइम का इंतजार करता रहता है कि हाँ अभी टाइम होगा, अभी कॉल करेगा, ये प्रोग्राम अभी सुनेगा, बहुत अच्छा है। सुबह का प्रोग्राम भी तो जो है वो आदमी को जिंदगी के लिए एक नया ढाल बन गया है, जो प्रवचन आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, हमको गाना सुनना है, अए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है।
1: ओके,
0: हेलो
1: जी जी, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: जी, सबसे पहले तो आप आए और जितने भी ये फैन का दोस्त साथी हैं, जितने भी आदमी सुनते हैं, उन सबको सुनाना। ठीक है
1: जी। तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम तो बस सही है, मौसम जो है मौसम बना हुआ है, बारिश का ऐसे संभावना लग रहा है कि शाम तक बारिश होएगा, क्योंकि ये भादो के जैसा नहीं लग रहा है, एक वार का जैसा लग रहा है। घाम में काफी मतलब वो है, थोड़ा सा भी धूप लगता है ना तो लगता है कि बस कमरा सूख गया। सही मौसम नहीं है,
1: ऐसा लग नहीं रहा है जैसे कि सावन का महीना चल रहा है।
0: आप ही देखिए ना, बाहर निकलकर देखेंगे तो आप उसके अंदर का अपना बता देगा कि सावन भादो के जैसा नहीं लग रहा है, ये वार के जैसा लग रहा है। वार में जैसा धूप निकलता है ना, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं किया था कि कमरा कब सूखता है, तो बताने वाला बताया कि कुवार में। आंसर सही हो गया, यही बात है कि दुमास लग गया था ना। दुमास लग गया, अगर सीधा सीधा महीना जोड़ा जाए ना तो ये कुवारी है। ठीक है, मैं रंजी गाना सुना दीजिए, आज सुनाएंगे कि कल?
1: कोशिश रहेगा कि आज ही चले। ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधु सुधनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
6: जी कैसे हैं सुनील जी?
5: बढ़िया है मैडम जी, और बरसात हो रही है और आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
6: अच्छा जी, ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
5: मधु सुधनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
6: अच्छा, तो बारिश हो रही है अभी उधर?
5: जी जी जी, बारिश रात का ही पानी गिरता है, अभी पानी गिर रहा है।
6: अच्छा, हमारे तरफ तो बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है।
5: जी हम आपके इधर गिर रहे हैं क्या पानी?
6: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है, धूप निकला हुआ है बहुत तेज।
5: अच्छा, उधर धूप निकल रही है उधर?
6: जी।
5: अरे वाह, हमारे यहाँ तो कल से आप तो ठंडा ही हो गई, हमने पंखा कूलर सब बंद कर दिए हैं, अब तो नॉर्मल है।
6: अच्छा, तो कहीं लोग बारिश से परेशान है, कोई कहीं गर्मी से?
5: जी,
6: तब खाना वाना हो गया आपका?
5: जी अभी नहीं हुआ है।
6: अच्छा,
5: कौन भारती जी बोल रही है कि सोनी जी?
6: नहीं,
5: मनोरमा जी।
6: जी जी
5: जी, बहुत दिनों में बात हुई है मेरी आपसे आज।
6: जी और क्या है ना, भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी बीच में।
5: तो मैडम जी, पिक्चर का नाम है आज दीवाना मुझका नहीं कोई।
6: ओके, और गाने के बोल?
5: गाने के बोल है सारे लड़कियों को कर दो शादी, बस एक को कुंवारा रखना।
6: ओके, और गाना डेडिकेट किया?
5: जी जी मैडम जी, सबसे पहले आपको है, भारती मैम को है, सोनी मैम को है, और अपने गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ती है, इन सभी को ये गाना डेडिकेट है, जितने भी ये रेडियो सुन रहे हैं उनको। और ये प्ले कब होगा मैडम जी?
6: पूरा कोशिश रहेगा कि गाना आपका आज ही प्ले हो।
5: जी जी धन्यवाद।
6: तो गाना प्ले करते हैं सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिम 90.4 FM में।
1: रेशमा कौन सी से?
0: जी क्या हाल चल रहा रेशमा जी?
1: ठीक बा, आप बताए?
0: जी हमारो बढ़िया बा।
1: तो कक कल बनी नु?
0: हेलो भाई ना।
1: हां ये हो गल बा, तबे तो ठीक बा।
0: बिल्कुल बढ़िया बा।
1: मुनावा में
0: जी
1: सुन बनी?
0: जी बढ़िया बानी। रुवा ठीक बनी नु?
1: हां ठीक बनी।
0: चले बढ़िया की बात है।
1: आज गाना सुना दे।
0: बता दी।
1: हारे हारे हम तो दिल से हारे।
0: काई दो लाइन रुवा गा के बता सकता नहीं?
1: बता दे।
0: बिल्कुल
1: ज्यादा याद नहीं गया, थोड़ा सा याद रहा।
0: हाँ हाँ उतने गई ना।
1: हरे हरे हरे हम तो दिल से हारे। इतने याद है मैडम जी?
0: एक कोनो बात नहीं के। और ये गाना रहो क्योंकि सुनवाई के भी चाहता नहीं।
1: और सुन ले, मैं जितना सुनता सब कोई सुनिए।
0: चलिए बढ़िया बात।
1: अच्छा मैडम जी, अगले
0: शुक्रवार के हम रिकॉर्ड कर।
1: शुक्रवार? अच्छा।

0: ମୁଇଁ ତ ଗାନା ତ ସବ ପ୍ଲେ କଲି ରହି ମତେ କହି ରହିବ ନା ଶୁଣି ପାଇଲ
1: ଚାଲୁ କରୁନି କମ୍ ସେ ଚାଲୁ କରେ ସବୁ ଜାଗା ଶିଖିବେ ନବେ ଚାଲୁ କରନି ଦଶ ମିନିଟ ଆଗେ ପିଛେ ହୋଇଗଲେ କାମେ ରହେନି ତ ଯଦି ୟା କରି ଯା କାମ ତ ହଉ ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁ କରେ ଚାଲୁ କରେ
0: घर परिवार में सब कुछ ठीक बा नो
1: जी मैडम जी सब ठीक बा अपन बताए
0: जी जी यहाँ पे भी सब ठीक बा
1: और अगर सब कुछ ठीक बा
0: सब के बढ़िया बा
1: हम तो सब कुछ ठीक बा
0: बढ़िया बा
1: पार्टी में आ गई बनी
0: चलिए ठीक बा तो और गाना प्ले कर पानी
1: जी मैडम जी बजा दे आज तक बजा दे तो ठीक है
0: जी जी पूरा कोशिश रही
1: ठीक बा
0: सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: जी मैडम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: आज तो बड़ी खुशी की बात है कि एक ही बार कॉल लगाया लोग के।
6: जी जी
5: हाँ, और नहा करके आए थे। जानते हैं कि आज पट्टी खुला है, एक महीना के बाद आज नहाए है। सोचे कि अब तो टाइम नहीं है, लगा कर देखे के लगता है लग गया। बोलिए समाचार, बोलिए अपना।
6: जी सब बढ़िया है,
5: ठीक है ना।
6: जी जी।
5: आज तो घाम हुआ है।
6: गर्मी तो बहुत है।
5: गर्मी है आज। गर्मी है आज। गर्मी में गर्म पानी से गोसल किए।
6: अब क्या करिएगा, जब व्यवस्था दी तो नहाना।
5: और सब सुनाइए।
6: जी सब बढ़िया। आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
5: हमारा नाम है मैनुद्दीन अहमद। पहचानते नहीं है, बराबर करते हैं।
6: जी जी पहचानते हैं, लेकिन हमारे श्रोता लोग तो जाने।
5: हाँ हाँ, मैनुद्दीन अहमद, घर जुमरिया, उसका गाँव थाना में पड़ता है।
6: और सब बढ़िया है ना।
5: हाँ हाँ,
6: खाना वाना हो गया ना।
5: हाँ अभी तो खाना खाए।
6: ये बढ़िया,
5: अभी खाना खाए है, सेब खाए।
6: तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
5: हमारा फरमाइश ले लीजिए, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पूरी फिल्म का।
6: और ये आप सुनवाना भी चाहते हैं किसी को।
5: कब सुनाइएगा।
6: पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे आपका गाना।
5: अच्छा ठीक, वो उसने तो हमें को बज गया, सुन ली। सुबह भी बज गया, सुन ली, दो बार आ गया। ठीक है,
6: वालेकुम अस्सलाम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: जी बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: थैंक यू। मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से बोल रहा हूँ। जी मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भारती जी?
0: नहीं जी, मैं मनोरमा।
1: अच्छा, मनोरमा जी को।
0: जी
1: अच्छे से कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, सुनते हैं हम। तो गाना हमको सुनना है,
0: बता दीजिए।
1: लास्ट कॉल है मेरा अब शायद,
0: नहीं
1: अभी है कॉल इसके।
0: हाँ, कॉल है
1: और गाना है, और थोड़ा गुनगुना कर बता देते हैं।

0: यही गाना है।
1: ओके, वैसे आप अपना नाम क्या बताया?
0: निसार अहमद, लकड़ी दरगाह, जिला सिवान।
1: ओके, तो ये आप गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: पहले तो आपको, भारती जी को, आज सोनी मैडम जहाँ भी हैं, ये गाना उनके लिए भी है, और जितने भी रेडियो इंजिन सुन रहे हैं उन सभी भाई बहनों के लिए, और अपने फैमिली के साथ ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
0: थैंक यू
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।
0: थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, नमस्कार।
5: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी, शायद मास्टर बोल रहे हैं।
5: जी जी, कैसे हैं आप?
6: हम लोग बढ़िया से, अच्छे से हैं। आप लोग कैसे हैं बताइए?
5: जी जी, हम लोग भी बढ़िया हैं। लोग
6: बढ़िया हैं, रेडियो रिमझिम परिवार सब लोग अच्छे से हैं।
5: जी जी, सब कोई बढ़िया।
6: आपकी तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं?
5: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
6: बड़ी धूप कड़ा निकल रहा है। जी
5: जी, धूप है।
6: ये तो पहला कॉल लगा हुआ है।
5: जी जी, पहला ही कॉल है।
6: जी, तो गाना सुना दीजिए। गाना सुनवा दीजिए।
5: बता दीजिए।
6: 8 और 16 मूवी का। आज सुबह जब मैं जगा, आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरी कसम ऐसा लगा, तूने मुझे याद किया है। ये वाला गाना मैडम।
5: ओके, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
6: जी, सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रेंजर सुनने वाले श्रोताओं हैं सभी को, और हम लोग थनाओं से रोशन ट्रेलर में सुनेंगे सभी लोग।
5: तो ये आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं?
6: मोबाइल से सुनते हैं।
5: मोबाइल ऐप के जरिए?
6: ऐप के जरिए, हाँ। और रेडियो हम लोग का तो थोड़ी बजेगा, पकड़ भी नहीं करेगा रेडियो में।
5: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: हम धनाव थाना नासिक, जिला रोहतास, बिहार से। जिला रोहतास हम लोग हैं।
5: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
6: जी
5: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
0: जी इसलिए भी तो धन्यवाद, मैं संजय कुमार शाह ग्राम बढ़ा मंडिया पूर्वी चंपारण बिहार से।
1: जी कैसे हैं संजय जी?
0: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ा तो गर्मी तो बहुत ज्यादा है, गर्मी थोड़ा नहीं कहा जाता है, लोग गर्म छो रहे हैं।
1: जी जी गर्मी तो बहुत।
0: जी जी बाकी हाल खबर ठीक है, बढ़िया है। और कहीं ना रूम में बैठे हैं, बता रहे हैं सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब घर पर जा रहे हैं, सब ठीक ठाक है। और सब उधर का मौसम बताइए, उधर इसे गर्मी क्या है, बरसात हुआ है कि नहीं, अगल होता है कि नहीं बरसात?
1: तो बहुत है, धूप भी निकला हुआ।
0: जी जी हमारे यहाँ 50 रोज पहले ही से बारिश रुका है, 4 रोज पहले बारिश हुआ था लेकिन 4 रोज से गर्मी चल रहा है। गर्मी तो उस समय था लेकिन फिर भी कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा पानी गिरला पर थोड़ा राहत हुआ है, थोड़ा राहत रहा लेकिन फिर भी पानी रुका रुका फिर भी गर्मी ज्यादा हो गया। खैर प्रकृति के नियम है, चलता जा रहा है। आज गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: तो जी

0: ये आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
1: जी जी चलिए आप कहती है तो हम लोग थोड़ा गुनगुनाते हैं, लेकिन हम लोग तो गाते हैं नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी गुनगुना लेते हैं ताकि ट्रैक मिल जाए बढ़िया से आप लोग उसने में सरल हो सबसे। तो पहले कुछ मित्र की याद करना चाहता है, सबसे पहले आपको रेडियो इंजन संपन्न परिवार को और दोस्त में हो गया सिकाना से मामा साबित जी, कुशवाहा जी, अलीमा बैकुल नरेश सोहनी, दीपक दास, उदय बहन ठाकरे, जीना साहब, धर्मेंद्र यादव उर्फ मिथुन, धनराज प्रसाद कुशवाहा, मदन राम भैरवंशी, भैरवंशी, राजेंद्र यादव भाटी, सतलाल गौतम, उत्तर प्रदेश मऊ से, सलार अंसारी, मोहम्मद सलार अंसारी बजवलिया का विशेष उनको, संजीका शाहोक, हरिंद्र प्रसाद यादव मिगुप्ता, कौशल किशोर प्रसाद, जितेंद्र समर्थ, नीरज गुप्ता, सुरक्षा हमारे नाम से देने पर चले तमाम आते हुए अभी आपसे चलेंगे। नमस्कार
0: नमस्कार। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
5: जी गाना सुनना चाहता हूँ।
6: जी गाना सुनवाएंगे, आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
5: कमलेश कुमार बलुआ टोला मनियारा फार्म से।
6: अच्छा,
5: गाना सुना है बूढ़े राजा के बाबा धाम का गाना।
6: जी बता दीजिए।
5: बूढ़े राजा गाना बाबा धाम के नाम का।
6: कौन सा, आवाज कट के आ रही है।
5: बाबा धाम के गाना।
6: गाने के बोल
5: देवघर बाबा के। बूढ़े राजा कौन गाना बजा रही, नाव का गाना बजाई ना।
6: अच्छा ठीक है, मतलब भोजपुरी में या फिर हिंदी में।
5: अरे बाबा धाम गाना बोलूंगा ना।
6: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में।
5: भोजपुरी में बजाइए।
6: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है।
5: जी।

0: हेलो नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम में।
1: जी थैंक यू। हम कैसे हैं?
0: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
0: कोई अच्छी की बात है। वैसे आपका नाम?
1: नेहा।
0: कहाँ से बोल रही है नेहा जी?
1: कासा मुसाफिर।
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है।
0: क्या हो रहा था अभी?
1: अभी आराम करेंगे।
0: खाना वाना हो गया आपका?
1: जी।
0: ये बढ़िया। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: सावन मजा न देगी कहीं गाना,
0: चूड़ी मजा न देगी कंगन न मजा देगी वाला।
1: जी
0: ओके। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
1: आपको और जितने भी रेडियो रिंगटोन कभी को।
0: ओके। वैसे नेहा जी, आप ये रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनती हैं?
1: जी ऐसे सुनती हूँ,
0: गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड की हैं।
1: जी
0: ये बढ़िया। मतलब कब से सुनते आ गई आप ये कार्यक्रम?
1: 2000।
0: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगटोन का कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: मतलब सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है रेडियो
1: रिंगटोन? और क्रिसमस फरमाइश।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। तो नेहा जी आपका गाना प्ले करते हैं। जी रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार।
7: हेलो
6: मैम, आप बोल रहे हैं ना?
7: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: अपना सुनाइए।
7: जी मेरा भी बढ़िया।
6: अरे हमारे से कोई गलती हो गया है क्या? कितने कॉल किया, 312 कॉल किया, दो बार लगा उसके बाद ही काट दिया गया।
7: नहीं, कॉल कटा नहीं हो क्या? ना नेटवर्क इश्यू की वजह से कट जाता है कभी कभी।
6: हो सकते कोई भारी गलती

0: नहीं आज मेरा रिकॉर्डिंग है।
1: मनोज कुमार मिश्रा दिल्ली नहीं रहे क्या? तो मैं ऐसे भी सोचा की आज लता मनोरमा मैम है, इसीलिए बात करने का अलग तरीका है, इसलिए थोड़ी लगता है बिजी ऐसा जा रहा था ना, लग रहा था कि मनोरमा में नहीं है आज। क्योंकि आप लंबा बात हो रहे ना। चलिए आप पहले का भी रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ एक ही हुई है, आज भी एक ड्रेस ले लीजिए, भोजपुरी ही है। मैं ज्यादा करके भोजपुरी देता हूँ लेकिन बढ़िया देता हूँ, कोई अश्लील गाना नहीं। तो आज भी एक है गोटू राजा के है, गाने का बोल है खाली तीर्थ कर और ही काम बा माई बाबू के चरण में चारों धाम बा।
0: ये आप गाना एक बार गा के बता सकते?
1: खाली तीरथ कर और काम बा माई बाबू के चरण में चारों धाम बा। बस इतना ही।
0: बहुत अच्छा गा लेते हैं
1: मैम। मैं तो बहुत अच्छा गाता ही था, थोड़ी टेंशन में आजकल जी रहे हैं साल डेढ़ साल से, इसलिए थोड़ी वो, नहीं तो मैं तो गांव में एग्जाम जो होता है ना 24 घंटा का, उसमें मैं गाता था, मेन में मैं गाता, परेशानी की वजह से थोड़ी टेंशन में। तो हम तो गा तो बहुत अच्छा लेते हैं, संगीत हमें बहुत प्रेरणा, संगीत बहुत प्रेम है, इतना मूवी से मुझे प्रेम नहीं है ना, संगीत प्रेम, संगीत सुनकर मैं रातों भर जगा रह जाऊंगा, इतनी प्रेम है। हाँ इसलिए थोड़ी सी हमारी बातों पर गौर करना, बहुत परेशानी हो आप लोगों से बात करने के लिए।
0: जी जी।
1: आज गाने सुनने का माध्यम तो बहुत है, सुन सकते हैं जैसे मर्जी, लेकिन एक आप लोगों के द्वारा जो गाना बजता है उसका एक अलग ही है। तो ये कब तक बज जाएगा
0: ये गाना आपका? कल बजेगा, मतलब रहेगा कि आज ही बजे?
1: नहीं पिछला भी आपका एक बाकी है, गाना मेरा सुना दीजिए।
0: गाना
1: फिर करते हैं आपसे करके बहुत अच्छा लगा।
0: चल गाना भी करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या खैरियत है?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी अच्छा। आपकी तरफ के मौसम कैसा हुआ है?
1: धूप से निकला हुआ
0: जी, गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: आज गर्मी है। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: हाँ, माझा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, और आपका नाम?
0: मेरा नाम साईं पलक है।
1: साईं पलक
0: जी,
1: बहुत प्यारा नाम है
0: जी।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी आपके पास कॉल कर रहे थे, एकदम बिजी बता रहा था लाइन, तो क्या कि अभी लगा है कॉल।
1: चलिए, अब कॉल लग गया तो अपनी फरमाइश बता दीजिए।
0: क्या मौसम आया है?
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं?
0: नहीं, ये मतलब इतना ही याद है क्या मौसम आया है? सुना दीजिए गाना, सर आपको भी डेडिकेट करना चाहते हैं, सभी डिजिटल को डेडिकेट करना चाहते हैं।
2: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है। क्या

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
4: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: बाय लुट

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि दिनांक 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:32 तथा सूर्यास्त शाम 6:28 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। श्रोताओं, उगते सूरज की सुनहरी किरणों ने प्रकृति को जगाना शुरू कर दिया है और हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5 का संदेश दे रही है। नई उमंग, नई ऊर्जा और सकारात्मक विचारों के साथ आइए आरंभ करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा एक मधुर और भक्तिमय गीत के साथ।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।